FM 102.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने को हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रथम सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। सुबह 6:10 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समय रहेगा 6:15 पर। 6:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीत बहार। सुबह 7:20 पर आपके लिए लेकर आएंगे श्री रामचरित मानस गान उत्तरकांड से संकलित एपिसोड 404 नमस्कार चोरू। ये कार्यक्रम होगा दिन में 7:30 पर। सुबह 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात 8:15 का समय रहेगा मॉर्निंग न्यूज का। सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संगम समय रहेगा 8:30 पर। 9:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। दिन में 9:10 पर आपके लिए लेकर आएंगे देश गान धारा की पुकार। ये कार्यक्रम होगा 9:15 पर। इसमें वार्ता सुनिएगा चिंता का सबब बने पिघलते ग्लेशियर वार्ताकार होंगी प्रीति सोनी। ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद समय रहेगा दिन में 9:30 पर। दिन में 10:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। कार्यक्रम संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा दिन में 11:00। 11:05 का समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग समय होगा दिन में 12:00। 12:30 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर कलाकार होंगे सुजान सिंह खींची और साथी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे दिन में 1:00। दिन में 1:05 का समय रहेगा कार्यक्रम महिला जगत का। इसमें चर्चा होगी सोशल मीडिया से दूरी क्यों है जरूरी। एक और जानकारी हफ्ते में करें एक दिन का डिजिटल उपवास। जिंदगी को जी भर के जिए इस विषय पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे दिन में 2:00। दिन में 2:15 का समय रहेगा दोपहर समाचार। दिन में 2:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। दूसरी सभा में 5:00 सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। इसमें चर्चा होगी बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस पर। कार्यक्रम संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा 5:55 से। 6:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन होंगे 6:05 पर। 6:10 पर आनंद लीजिएगा देशभक्ति गीतों का। संस्कृत में समाचार बुलेटिन होंगे 6:20 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे 6:40 पर। खेती और गृहस्थी ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 7:00। इसमें चर्चा होगी पशुपालन से आय बढ़ाने के तरीके। एक और जानकारी दी जाएगी मौसम आधारित कृषि सलाह। एक और चर्चा बाजरे के विभिन्न व्यंजन। रात्रि 8:00 आप आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 8:45 पर। रात 9:00 आप सुन पाएंगे न्यूज एट 9 बाता ही चाल है ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:15 पर। रात 10:00 सुनिएगा ईमेल आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंध। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा रात 10:30 से।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

हमारी संस्कृति का मूल मंत्र यही रहता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और इसीलिए जो अधिकार अगर हमें प्राप्त होते हैं तो वो तभी प्राप्त होंगे जब हम अपने कर्तव्यों को करते चले जाएंगे। जब हम अपना कर्म करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, तो हमें जीवन में प्रबंधन, सफलता, नैतिकता और ज्ञान से संबंधित न जाने कितने ही गुण हमारे अंदर उस कर्तव्य के माध्यम से विकसित होंगे। और यही कर्तव्य का पालन हमें चरित्रवान बनाता है। हमारे चरित्र की पहचान हमारे कर्मों से ही होती है। कहा भी गया है, कर्मण्यधिकारस्तु मा फलेषु कदाचिन, मा कर्म फल हेतुर्भूते संग अस्तोह कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसको फल में कि कभी नहीं आपको इच्छा करनी चाहिए। इसीलिए तुम कर्म फल के हेतु भी मत बनो, तुम्हारे कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हम फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो हमें कर्मों में भी आसक्ति नहीं होगी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनासक्त भाव से अपने कर्मों की ओर उद्यत रहना चाहिए।

और यही कर्तव्य पालन हमारे जीवन की सच्ची नींव है। सीधे तौर पर मनुष्य के चरित्र का जो निर्माण करता है, जो व्यक्ति बिना किसी लालच डर के अपने दायित्वों को पूरा करता है, वही समाज में सम्मान और अनुशासित इंसान बनता है। व्यक्तित्व का विकास होता है इससे, और समाज में प्रतिष्ठा बनती है और आत्मसम्मान। कर्तव्य का पालन हम करते रहेंगे तो हमें आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी, और नैतिक तथा कानूनी जिसका पालन कोई भी व्यक्ति किसी भी आदर्श नागरिक के रूप में बन करके नैतिक दृष्टिकोण से है वो दिखाई पड़ता है। तो कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही चरित्रवान बनता है। अपना आपका जो चरित्र का निर्माण आपके हर पल किए गए कार्यों से ही हो।

चरित्र कोई बनाकर गढ़ दी गई मूर्ति नहीं है, ये प्रतिपल हर दिन के किए गए कर्मों से ही बनता है। तो वो कर्म हमें सद करने चाहिए, सकारात्मक भाव के साथ सबके सहयोग की भावना रखते हुए अनुशासित जीवन जीते हुए अपने कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए।

अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह की 6:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सोनू निगम और साथियों की आवाज में अभी आपने भक्ति रचनाएं सुनी। कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: दो रास्ते, लीजिए इस फिल्म का नगमा सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

आकाशवाणी चुरू से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बहार। कल्याण जी आनंद जी की बनाई तर्ज पर इंदिवर के बोल, लीजिए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में डूम फिल्म का।

दोस्ताना। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल।

0: बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब समाप्त होता है।
1: मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
0: अभी आप गीत बहार कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान उत्तरकांड से संकलित एपिसोड 404। कलाकार ए हरिहरन और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
2: एपिसोड नंबर 404 404।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज करुड़, सभी जीव हर्ष, विषाद, भय, प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में ये रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं तो मिट जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मनह रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

श्री रामचरितमानस गान उत्तरकांड से संकलित एपिसोड 404 कलाकार ए हरिहरन और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार। चूरू कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। एक और नए अंक के साथ हाजिर हो गए हैं। आज है 12 जून यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा वर्ष 2002 में की गई और इसका उद्देश्य ये रहा कि बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाने और इसे जड़ से खत्म करना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लाखों बाल श्रमिकों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें उनके बचपन में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक संवाद, शिक्षा की उपलब्धता और कानूनी सुधारों पर जोर दिया जाता है। ये बाल श्रम के कई कारण हम देख सकते हैं। गरीबी है, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, इसके कारण बाल श्रम की ओर है लोग झुक जाते हैं। लेकिन अब हमें इस समस्या से निजात पाने के लिए और आज के इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कि हम बाल श्रमिकों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित कर उनके बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी अधिकारों को उनको दिलाने में और समाज में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने और बाल श्रम जैसी जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करना है।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

हर किसी की बात को समझना और उसी के कहे अनुसार उसके उत्तर को देना, और यह तब आता है जब हम उसकी समझ में शिक्षा को जोड़ देते हैं, यानी शिक्षा से हमें उसकी समझ आती है। शिक्षा समाज का आधार है जो व्यक्ति को सशक्त बनाकर के एक प्रगतिशील, न्यायसंगत और समृद्ध समाज का निर्माण करती है। वह न केवल सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादिता को दूर करती है, बल्कि आर्थिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमारी समझ को भी विकसित करती है।

और हमारी समझ और अधिक विकसित होती है जब हम शिक्षित होते हैं। शिक्षा का समाज पर बेहद ही बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। वह शिक्षा जो लैंगिक, जातिगत और व्यक्तिगत भेदभाव को कम करती है और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करके उनको सशक्त बनाती है, समानता का अधिकार देती है। सुशिक्षित नागरिक बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकता है, जिससे उसकी आर्थिक गतिशीलता बढ़ती है और समाज से गरीबी भी दूर होती है, यानी समाज का आर्थिक विकास भी होता है और गरीबी का उन्मूलन भी होता है। शिक्षा अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और कुरूतियां, बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ है, वो जागरूकता पैदा करती है। सामाजिक बुराइयों का अंत करने में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये नागरिकों में मानवीय मूल्य, अनुशासन, सहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। नैतिक और चारित्रिक विकास भी हमारा शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षित समाज अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है, जिससे एक जिम्मेदार और उत्तर

दायी जो राजनीति व्यवस्था का निर्माण भी वह करता है, यह दायित्व जो है नागरिक जागरूकता को भी बढ़ाता है, शिक्षा अनुसंधान और तकनीकी को बढ़ावा देती है जो समाज की आधुनिकता और नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है, वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करती है और शिक्षा के माध्यम से ही हम नवाचार कर सकते हैं और समय के साथ चल सकते हैं, क्योंकि समय बदलते हुए देर नहीं लगती है। हमें समय के साथ चलना तभी आ पाएगा जब हम अपनी शिक्षा उसी के अनुरूप लेकर के और अपने रोजगार को उस रूप में लेंगे और उसको व्यवहार में, शिक्षा को केवल सैद्धांतिक रूप से न लेकर के उसको व्यवहार में ही डालेंगे, तो हम है वो जो दौड़ते भागते हुए समय है उसके साथ चल पाएंगे और अपनी एक विशिष्ट है वो प्रतिष्ठा हम बना पाएंगे, क्योंकि समय बड़ा बलवान है।

0: समय बड़ा बलवान।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम नमस्कार चूरू। कार्यक्रम में बात करते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की, जो भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा कि देश को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाया जाए और 2030 तक सालाना 50 टन से अधिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन

लक्ष्य निर्धारित किया गया और जिससे नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि हो गई। और इसमें जो साइट कार्यक्रम है, हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइट कार्यक्रम और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हर साल 5 करोड़ टन की कमी लाना और पर्यावरण और आत्मनिर्भरता को प्रभाव के में इसको देखा गया है। और जीवाश्म ईंधन और महंगे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य रहा है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
3: तो श्रोताओं, ये था आज का नमस्कार चूरू कार्यक्रम। कार्यक्रम से हमें दे अनुमति, नमस्कार। अभी आप नमस्कार चूरू कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात।
4: गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी।

0: दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीपफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ

0: मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026,

0: भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma.

आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे, तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: सुर संगम कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन।

0: मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी।
1: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। मंत्रालय ने बताया कि किसान 9140249818180 नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में आगामी 1 और 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहलों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जन कल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में चल रहे विशेष यातायात अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल 9703 वाहनों के खिलाफ एक ही दिन में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बी एल मीणा ने बताया कि सबसे ज्यादा 3638 मामले वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के दर्ज किए गए। इसके अलावा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर अनधिकृत लेखन, मॉडिफिकेशन और अवैध हूटर बत्ती तथा प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम

0: माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। इधर राजस्थान पुलिस ने भी आम जन से जल्दी मुनाफे के लालच में बिना जांच पड़ताल के किसी अनजान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। कई जिलों में आंधी चलने और बारिश होने के समाचार हैं। डीग, धौलपुर और भरतपुर में तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं कोटपुतली बहरोड के कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। वहां तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: बहरोड क्षेत्र में देर शाम मौसम में बदलाव के कारण तेज हवा और तूफान के कारण दर्जनों पेड़, 80 से अधिक बिजली के पोल और 50 से अधिक ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई, जिसे सुधारने के लिए बड़ी संख्या में बिजली विभाग की टीमें देर रात तक विद्युत व्यवस्था बहाल करने में जुटी रही। बहरोड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं पारा भी लुढ़क कर नीचे आ गया। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली, बहरोड।
0: दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अब भी गर्मी और उमस का असर बरकरार है। कल जैसलमेर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। इस मौसमी बदलाव से आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। प्रदेश की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का कल निधन हो गया। वे 98 वर्ष की थीं। गौरी देवी का जन्म बाड़मेर के कोरण गांव में लोक कलाकार परिवार में हुआ। करीब 8 दशक तक वे मांड गायन के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। गौरी देवी ने देश भर में मांड गायन की प्रस्तुतियां देकर प्रदेश की लोक संस्कृति को एक नई पहचान दिलाई। वे भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके चर्चित गानों में बागा चालो केसरिया, सौ कोसों दूर बसे महारा साजन, आई आई सावणियरी तीज और केसरिया बालम पधारो शामिल है। उनके कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार प्रसारित होते थे। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। पाली के गवरी में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वरों में देशगान।

0: समूह स्वरों में अभी आप देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। धारा की पुकार लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनते हैं वार्ता। चिंता का सबब बने पिघलते ग्लेशियर, इस विषय पर वार्ताकार हैं प्रीति सोनी।
1: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे चिंता का सबब बने पिघलते ग्लेशियर के बारे में। दुनिया भर में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आज वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि यदि उनके पिघलने की यही रफ्तार रही तो वह दिन दूर नहीं जब 21वीं सदी के अंत तक एशिया

एशिया और 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे। ऐसा होने के परिणाम बहुत बुरे होंगे। समय आ चुका है कि अब समूची दुनिया पिघलते ग्लेशियर की समस्या को गंभीरता से समझे। ग्लेशियर का मतलब आम तौर पर बर्फ का पहाड़ होता है, जहां 12 महीने बर्फ जमी रहती है। लेकिन अब ग्लेशियर की परिभाषा बदलने लगी है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के हिमालयन क्षेत्र में इस वक्त 88 प्रमुख ग्लेशियर हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सभी ग्लेशियर बढ़ते तापमान की वजह से बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। यही नहीं, वर्षों की रिसर्च बताती है कि इन ग्लेशियरों पर अब बर्फ भी कम पड़ रही है, यानी कि ग्लेशियर की सतह पतली होती जा रही है और ये अपने ऊपर पड़ने वाली ज्यादा बर्फ का बोझ नहीं सह पा रहे हैं। इसी वजह से इनका टूटना और फटना जारी है। ग्लेशियरों के समाप्त होने पर हमें जल संकट और सूखे का सामना करना पड़ेगा। एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि ग्लेशियरों के पिघलने से बनी झीलों के प्राकृतिक बांधों के टूटने की वजह से लगभग 1.5 करोड़ लोगों पर अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से उनके आसपास मौजूद झीलों में भारी मात्रा में बर्फीला पानी पहुंचता है, जिससे झीलों पर दबाव बढ़ जाता है। अत्यधिक दबाव की वजह से झीलों के प्राकृतिक बांध टूट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अचानक आने वाली भयावह बाढ़ों का जन्म होता है। ग्लेशियर पृथ्वी पर ताजे पानी यानी अलवणीय जल के सबसे बड़े स्रोत हैं। पृथ्वी के कुल ताजे पानी का 77.4% हिस्सा ग्लेशियरों में सुरक्षित है। नदियां और जल धाराएं पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुंचाती हैं और इन जल धाराओं और नदियों को जिंदगी मिलती है ग्लेशियरों से। पृथ्वी पर जल चक्र के परिचालन तथा पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में ग्लेशियरों की अहम भूमिका होती है। ग्लेशियरों की एक अहम भूमिका यह भी है कि इनमें अत्यधिक मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। जितनी बर्फ पिघलती है उतनी ही दोबारा जम जाती है। इसकी मात्रा एक निर्धारित सीमा तक बनी रहती है, यही संतुलित अवस्था है। लेकिन अगर किसी वजह से यह असंतुलित हो जाए और बर्फ तेजी से पिघलने लगे तो अत्यधिक मात्रा में पानी बहकर समुद्रों, झीलों और नदियों में आ जाएगा, जिससे उनका जल स्तर ऊपर उठ जाएगा और जल प्रवाह बढ़ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ें आएंगी। इसके साथ साथ इससे कई नई झीलें भी बनेगी और वे झीलें भी भयावह बाढ़ों को जन्म दे सकती हैं। आज दुनिया के तमाम ग्लेशियरों पर खात्मे का खतरा मंडरा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन, जिसके चलते बढ़ रहे तापमान का दुष्प्रभाव ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप वे लगातार पिघल रहे हैं। वर्ष 1975 से 2000 और 2000 से 2016 के बीच हिमालय क्षेत्र के तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ गई। हालांकि सभी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार एक समान नहीं है। कम ऊंचाई वाले ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। कुछ ग्लेशियर तो 5 मीटर सालाना दर की रफ्तार से भी पिघल रहे हैं। गौरतलब है कि हिमालय के कुल 650 ग्लेशियरों में करीब 60 करोड़ टन बर्फ जमी हुई है। हिमालय के इस ग्लेशियर क्षेत्र को तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद यह तीसरा बड़ा इलाका है जहां इतनी बर्फ जमी है। इन ग्लेशियरों से निकली नदियों से भारत, चीन, नेपाल और भूटान की कुल मिलाकर तकरीबन 80 करोड़ आबादी का जीवन निर्भर है। इन नदियों की पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इन ग्लेशियरों का वजूद खत्म हो गया तो 80 करोड़ आबादी का जीना दूभर हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी अंटार्कटिका का हिस्सा थ्वेट्स ग्लेशियर भविष्य में समुद्र के बढ़ते जल स्तर के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। नासा के सैनिक उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि अगर यह टूटकर समुद्र में बहता है तो समुद्री जल स्तर में 50 सेंटीमीटर का इजाफा हो सकता है। हालात की गंभीरता का पता इससे चल जाता है कि समूची दुनिया में वह चाहे आर्कटिक हो, आइसलैंड हो, हिमालय हो, तिब्बत हो, भूटान हो या नेपाल हो या फिर कहीं और, हर जगह ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ग्लेशियर पिघलने से हर साल 8 अरब टन पानी बर्बाद हो रहा है।
उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में

बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। मौजूदा साल की शुरुआत में साइंस जनरल में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार ग्लेशियर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रफ्तार से पिघल रहे हैं। इस शोध के तहत वैज्ञानिकों ने विश्व के 2,15,000 जमीन आधारित ग्लेशियरों का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि दुनिया अब पूर्व औद्योगिक युग के बाद से 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की दिशा में अग्रसर है, जिससे साल 2100 तक दुनिया के 83% ग्लेशियर विलुप्त हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही होता रहा तो दुनिया की लगभग आधे से ज्यादा ग्लेशियर साल 2100 तक अपना वजूद खो देंगे। पिघलते ग्लेशियर न सिर्फ बाढ़, अनियमित मौसम चक्र, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूखमरी, सुनामी, जल संकट जैसी विपदाएं लाएंगे, बल्कि उनके लगातार पिघलने से उनमें हजारों सालों से दफन घातक बैक्टीरिया और वायरस भी बाहर आ सकते हैं। उनसे निकली बैक्टीरिया और वायरस की फौज धरती पर महामारियों का रूप इख्तियार कर भारी तबाही मचा सकते हैं। अक्टूबर 2022 में अपने एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चेताते हुए कहा था कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का ऐसे ही लगातार उत्सर्जन होता रहा और ग्लेशियर इसी तरह से पिघलते रहे तो इनके भीतर दफन बैक्टीरिया और वायरसों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इन बैक्टीरिया और वायरसों से सबसे पहले समुद्री जीव संक्रमित होंगे और फिर पक्षी व अन्य स्थानीय वन्य जीव। इसके बाद इनसे मनुष्य भी संक्रमित हो सकते हैं। ग्लेशियरों के नीचे दफन वायरसों के जोखिम को ढंग से समझने के लिए कनाडा के आणविक जीव विज्ञानी और उनके सहयोगियों ने आर्कटिक सर्किल के उत्तर में मौजूद लेक हेजेन झील, जहां पर स्थानीय ग्लेशियरों से पिघला हुआ पानी बहता है, से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए। उन्होंने इन नमूनों से डीएनए और आरएनए निकालकर उनकी सीक्वेंसिंग की ताकि वातावरण में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के समूहों की पहचान की जा सके। इसके बाद शोधकर्ताओं ने एक कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए वायरस को जानवरों, पेड़ पौधों और फफूंदों के संदर्भ में जोड़ने का प्रयास किया। आखिर में वायरस और उनका प्रसार करने वाले जीवों के विकास क्रम के पथ का तुलनात्मक विश्लेषण के बाद उन्हें यह पता चला कि यहाँ से वायरस के जरिए महामारी फैलने का खतरा काफी ज्यादा है। इस अध्ययन का लबोलुआब यही है कि पिघलते ग्लेशियर न केवल समुद्री जल स्तर ऊंचा उठा रहे हैं बल्कि वायरस और बैक्टीरिया के रूप में मौत के दूतों को हम तक पहुंचाने का भी इंतजाम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियरों के नीचे दफने ये वायरस और बैक्टीरिया इबोला, हेजा, इन्फ्लुएंजा और मौजूदा कोविड-19 से भी कहीं ज्यादा घातक महामारियों की वजह बन सकती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ग्लेशियरों का माइक्रोबायोस्फीयर बदलेगा, जिससे वायरस और बैक्टीरिया बाहर निकलकर अपने लिए नए मेजबान या होस्ट खोजेंगे। नए होस्ट यानी वे जीव जिनको संक्रमित करके ये जीवित रह सकेंगे और प्रजनन कर अपने वंश को आगे बढ़ा पाएंगे। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम कई साल पहले तिब्बत में यह जानने पहुंची थी कि आखिर ग्लेशियर के नीचे क्या हो सकता है। जब पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। ग्लेशियर के नीचे 15,000 साल पुराने 28 प्रकार के जीवित वायरस दफन थे, जो अगर बाहर आ जाए तो दुनिया में भयंकर बीमारियां फैला दे। अमेरिकी वैज्ञानिकों की यह टीम उत्तर पश्चिम तिब्बत पठार के विशाल ग्लेशियर पर शोध के लिए पहुंची थी। यह अध्ययन कोल्ड स्प्रिंग हार्बर प्रयोगशाला से संचालित बायो आर्काइव डेटाबेस में प्रकाशित हुआ था। भले ही इस अध्ययन को लोग भूल चुके हों, लेकिन इससे खतरा कम नहीं होता और अज्ञानता किसी का भी रक्षा कवच नहीं बन सकती, क्योंकि दुनिया भर में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समय आ चुका है कि अब समूची दुनिया पिघलते ग्लेशियर की समस्या की गंभीरता को समझे। अब यह साफ हो गया है कि अब बहुत हो गया और यदि अब मामले में देर कर दी तो निकट भविष्य में हमारे अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। लू के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्लेशियर तीव्र गति से पिघल रहे हैं और उच्च तापमान की वजह से ग्लेशियर वाले इलाकों में बारिश का अनुपात बहुत कम हो गया है। दुनिया भर में साल दर साल भीषण लू या हीटवेव की घटनाएं बढ़ रही हैं और लू की बढ़ती इन घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। दुनिया भर में ग्लेशियरों के पिघलने के पीछे लू या हीटवेव की घटनाएं

0: काफी हद तक जिम्मेदार मानी जा रही हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि लू के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्लेशियर तीव्र गति से पिघल रहे हैं और उच्च तापमान के कारण ग्लेशियर वाले इलाकों में बारिश का अनुपात कम हो गया है। इसके अलावा ग्लेशियर की सतह के निचले अल्बेडो के कारण ग्लेशियर अधिक शॉर्ट वेव सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लेशियर के पिघलने की गति तेज हो जाती है। वैज्ञानिकों को अब चिंता सता रही है कि अगर ग्लेशियरों का इसी तेजी से पिघलना और बर्फ का कम पड़ना तथा उसकी सतह का पतला होना जारी रहा तो मैदानी इलाकों में तबाही आना तय है। दुनिया के प्रमुख साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित हुए शोध में तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियरों पर चिंता जताई गई है। शोध के मुताबिक हर साल तकरीबन आधा मीटर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमालयन इलाके के हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। मनाली और लद्दाख के चांगला स्थित लेप से हो रही लगातार निगरानी से इस बात का पता चलता है। प्रोफेसर गंजू कहते हैं कि यह क्लाइमेट चेंज का ही असर है कि बढ़ते तापमान से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमनदों की ऊपरी परत कमजोर होती जा रही है। ऐसे में अगर कभी भी ज्यादा बर्फबारी हुई तो बर्फ के ज्यादा दबाव से हिमनदों का टूटना और फिर तबाही मचाना स्वाभाविक होगा। जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं वह आने वाले वक्त में न सिर्फ बड़ी तबाही मचाएंगे बल्कि पर्यावरण पर संकट भी पैदा करेंगे। शोध के मुताबिक पता चला है कि पिछले 40 सालों में हिमालयन रीजन के जितने भी ग्लेशियर हैं वह सभी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इस शोध में 40 साल के दौरान सैटेलाइट इमेज से बहुत बारीकी से न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी राष्ट्रों के हिमालयन रीजन को भी देखा गया। शोध में सामने आया है कि 1975 से लेकर 1990 तक हर साल औसतन तकरीबन 0.25 मीटर ग्लेशियर पिघलते रहे। 1990 से लेकर सन 2000 तक तो यह भी पता चला है कि ग्लेशियरों का पिघलना इतनी तेजी से हुआ है कि यह आंकड़ा हर साल आधा मीटर तक पहुंच गया है। इस शोध के आंकड़ों के अनुसार ग्लेशियरों का पिघलना बढ़ते हुए तापमान का नतीजा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस तरीके से पिघलती हुई बर्फ और कम पड़ने वाली बर्फ से ग्लेशियर की ऊपरी सतह पतली हो रही है वह बड़ी चिंता की बात है। आज वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि यदि उनके पिघलने की यही रफ्तार रही तो वह दिन दूर नहीं जब 21वीं सदी के अंत तक एशिया और 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे। उनका नाम केवल किताबों में ही शेष रह जाएगा। आज ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की वजह से नदियों में प्रवाहित जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, भूस्खलन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी के तल में मलबे के जमाव और नदियों में क्षमता से ज्यादा पानी आने की वजह से बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यह समूची दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इसके अलावा ग्लेशियरों का वजूद समाप्त होने की वजह से हमें भविष्य में जल संकट और सूखे जैसी स्थितियों से भी दोचार होना पड़ेगा।
1: चिंता का सबब बने पिघलते ग्लेशियर, इस विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे थे प्रीति सोनी से। धारा की पुकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। नमस्कार श्रोताओं, सुबह के 9:30 हो चुके हैं, आपका इंतजार भी समाप्त कर देते हैं और हाजिर हो गए हैं ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम लेकर के आपकी पसंद के नगमे इस कार्यक्रम में। और ये पहला नगमा हमने लिया है दो रास्ते फिल्म से, और इसे सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता आरती, सोनल बेबी, और जालान शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष और चंदन। गगनदीप थापे लिखते हैं हमें इसी गाने की फरमाइश के लिए। अनारकली बाजार जगहों से सुनील पाठक, कमल दीपिका गवैया, सुच्चा सिंह पाठक। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, प्रवीण, सहनाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरनाज, अब्बास और इनका सारा अब्बासी परिवार। राज प्लेस महुनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। हकीकत पूरी मऊ से ही पिंकी, मुन्ना स्वर्णकार, आर्यन और कृष्णा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्रव्या। और चंडीगढ़ से लिखते हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं दो रास्ते फिल्म का ये नगमा। मोहम्मद रफी की आवाज में दो रास्ते फिल्म का नगमा आप सुन रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने ली है गोविंदपुरा सीकर से। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिक्की शेखावत और इनके समस्त परिवार के सदस्यों की। ग्राम खोकावरी से श्री गंगानगर से लिखते हैं विनोद, विशाल, विकास, रोशनी और सगुन। इसी गाने के लिए हमें ये फरमाइश लिख भेजी है पार्डर कवड़ा से अनिल बुराड़े, उषा, अनुश्री, धनुश्री और इनके सभी परिवार वालों ने। छोटी बलिया फूलपट्टी मुंबई से अहमद और इमरान ने। कृष्णा मेहरा लिखते हैं इनके साथी कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, दादरी गेट भिहानी से। पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका। लीजिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये नगमा। तीसरी कसम फिल्म का नगमा आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। बोल शैलेंद्र के और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम आपके पसंद। कार्यक्रम में अगली पसंद शामिल करते हैं साधु सहल राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की। आप सुनना चाहते हैं वो कौन थी फिल्म का नगमा। इसी नगमे के लिए हमें लिख भेजा है भवानी सिंह राठौड़ गांव हाड़ा सुजानगढ़ से, राजकुमार शर्मा गांव चारटिया सुजानगढ़ से, भगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और सौर्य ग्राम लसूड़िया तहसील नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कीर्तिका और रमेश चंद्र डांगी मोहाली पंजाब से, ओम प्रकाश और बब्बल मल्होत्रा जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। इसी गाने के लिए हमें ये फरमाइश लिख भेजी है मलिहान सरधना मेरठ से अनिल जैन संजय जैन और मुस्कान ने, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार ने, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राशि और सीतल, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा, निमित विशाल प्रियासी और प्रिया और दिशानी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से खुशी लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना और हर्षिता, अनिल वी घोट के लिखते हैं सनावद से और इनके साथ है शेख भूसा मोहसिन और अशोक वर्मा, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनते हैं वो कौन थी फिल्म का ये गीत।

0: शाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलवीर, राजदीप, गुन्नू, गुरलाल और अविराज।
1: अपनी आंखों की रोशनी रख दूं, तू अगर खुश हो।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
3: दिलवाले फिल्म की इस गाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विन और

आप सुन रहे हैं दिलवाले फिल्म का ये नगमा, कुमार सानू की आवाज़, समीर के बोल, नदीम सरवन का संगीत। और इस गाने के लिए हमें लिख भेजा नातेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल, गणेशलाल, शुभम, प्रयास और दुर्गेश्वरी।

दिलवाले फिल्म के इसी नगमे को सुनना चाहते थे डाब की रोड अंकोला से सुशीला देवी, सदानंद और कुमार गौरव। मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, सवन्या, अन्नू लिखते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। इसी गाने के लिए धनवंतरी नगर जबालपुर मध्य प्रदेश से अशोक, सुनीता, अंकिता, रितु, प्रीति, संकल्प और वेदा। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल और काजल। कुडवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश और राकेश। नाथना पंजाब से हरिजिंदर छिंदरा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। आप सभी की पसंद पर हमने आपको सुनवाया कुमार सानू की आवाज में दिलवाले फिल्म का ये नगमा। कार्यक्रम का अगला नगमा मस्ताना फिल्म से और इसको सुनना चाहते हैं सौराष्ट्र राजकोट से जुली, जगदीश गुजराती, कंचन, कुसुम, प्राची और प्रवीण पुजारी।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे हैं मस्ताना फिल्म का ये नगमा, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मस्ताना फिल्म के इस गाने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी मारहरा दरवाजा एटा से नब्बी हसन अब्बासी, नवेदा हसन, सुलेह रासीद और शहनाज, साहजी नगर देगलूर जिला नातेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता।

किशोर कुमार की आवाज में डोन फिल्म का नगमा आप सुन रहे हैं और इस गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिकलानी बबीता सुभाष योगी और डब्बू ने। इसी गाने को सुनना चाहते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा और पूजा परिहार। मुरादाबाद दुल्हा उत्तर प्रदेश से इसरार नरगिस इरफान और सलमान। नगर निगम वार्ड 28 से सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस और इसरारत।

0: बरस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला।
1: खरी अढ़नी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर बिजानिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा और आरजू, आप सभी की पसंद पर हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार की आवाज में डोन फिल्म का ये नगमा, अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: अभी आप आपकी पसंद कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं?

0: क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेट में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी, इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम
1: जी। नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में, फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है मारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: अरे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: मिनट ज्यादा ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था, वो तो खैर क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर पता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गई, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा।

0: बोल रहे हैं
1: जी? मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब
1: जी। और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है
1: जी, जी,
0: पसीना आता है
1: जी,
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूतरंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज का सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, देखें बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गवाह फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ। मैडम
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाइट ऊंची थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था जब जॉब लग गया था, मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जेब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाने जैसा था। पहली से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इश्क में आया
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे, आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी,
0: क्यों
1: लड़की थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए, अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर बारसी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है, आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, गीत का और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी है आगे, बहुत पत्र लिखता हूँ।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैम हम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोल रहा हूँ। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करता हूँ, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ,
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता नहीं।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुँच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा इसे करते रहता हूँ, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ, दुकान और दूसरा है।
0: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हूँ, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया। मैम
0: कैसा महसूस कर रहे हो?

0: सुनते रहते हो, अच्छा लगता है सुन के मैम।
1: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
0: जी मैम, आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सिमट करके रह गए हैं बच्चे। लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमटारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है। आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे। आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना। आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय। कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है। काश आपके पास होते तो आपके खेत में ही बैठ कर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है। तो बताइए, चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जादव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपके?
1: मैं खेती की सारी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है मेरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के प्रोग्राम FM 100.7 MHz पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू का प्रसारण। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही पलों बाद दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे दिन में 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार होंगे सुजान सिंह खींची और उनके साथी। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे दिन में 1:00। 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी दिल्ली से मिडडे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2:00 और दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ। शाम 6 बजे हिंदी में, 6:05 पर अंग्रेजी में और 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। प्रादेशिक समाचारों में शाम 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थान

कहानी में प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी जयपुर से। आकाशवाणी जयपुर से जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर। खेती और गृहस्थी, ये कार्यक्रम होगा शाम 7:00।

रात 8 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम गुलदस्ता। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक रिले किया जाएगा रात 8:45 पर और रात 9 बजे News@9। बाता ही चाले ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 9:15 पर। ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी राजस्थानी गीतों का प्रोग्राम गोरबंद होगा रात्रि 10 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

एक चादर मैली सी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा था सरदार पंछी ने और संगीतबद्ध किया था अन्नू मल्लिक ने।

कभी अजनबी थे। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीत लिखा है रविंद्र पीपट ने और संगीत है विजय सिंह का।

कभी अजनबी थे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में, एक ही भूल। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत एसपी बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शुरू से श्रोता सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। इस वक्त आपके रेडियो सेट पर है मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक का गाया सपने साजन के फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने और ये संगीत है नदीम श्रवण का।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

0: what's happening here?
1: धीरे से जाना नजरें मिलाना क्या कहूं बातों बातों।
2: एक से बढ़कर एक इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा था देव कोहले ने और संगीतबद्ध किया आनंद राज आनंद ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत FM 110.7 MHz पर।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना आनंद मिलिंद की धुन पर, पहला पहला प्यार। फिल्म के इस गीत को आवाज दी थी सुरेश वाडकर और अलका याग्निक ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से चित्रपट संगीत।

सनम तेरी कसम, फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। शब्दकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही

विचार। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे नूर कश्कर की रचना महबूब मेरे महबूब। फिल्म के इस गीत को गाया अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक को आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है 15 अगस्त। गीत लिखा है रानी मल्लिक ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

चित्रपट संगीत के अंत में आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम का गाया जुर्म फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्व

0: पूर्वी एशिया में सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
1: जी।
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
1: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है। ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया। प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
1: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: तुम भी गाओ।
1: आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कलाकार हैं सुजान सिंह खींची और साथी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

सुजान सिंह खींची और साथियों को अभी आप सुन रहे थे, कार्यक्रम था माटी के स्वर। ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास एजेंडा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और देश लगातार प्रगति कर रहा है। श्री अठावले ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी बढ़ी है और मेक इन इंडिया अभियान ने तेज गति पकड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय भी समाज कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। जनगणना 2027 पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग की जानकारी मिलेगी, जिससे केंद्र सरकार को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में और मदद होगी।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। तब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, एससी एसटी को, ओबीसी को फायदा मिला है और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: केंद्र सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश एक अस्थायी उपाय है, जिससे इस संकट के समय में जमाखोरी को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से विशेष प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। 12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के विषय पर आधारित इन प्रदर्शनियों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया जा रहा है। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जिला सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बाड़मेर में ये प्रदर्शनी भगवान महावीर टाउन हॉल में और 12 के जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई है। आमजन के अवलोकन के लिए ये प्रदर्शनी 14 जून तक खुली रहेगी।

0: भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप से भारतीय दल की वापसी के दौरान बीमार पड़ने के बाद राणा का हाल ही में चिकित्सा उपचार किया गया था। उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें स्टंट डाला गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में सक्रिय एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके असर से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पिछले 24 घंटों राज्य के कई हिस्सों में बरसात हुई, जिससे श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 52 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अब भी जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दिन का 1:05 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम में। और आज उनका साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, उनकी सखी रेखा खंडेलवाल। तो स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार। बहनों, गर्मी का मौसम चल रहा है, साथ ही ये जो हिंदू पंचांग है इसके अनुसार अधिक मास या पुरुषोत्तम का महीना या कुछ भी कहें वो भी चल रहा है। और हम बात करें वैदिक धर्म के अनुसार तो इसका महत्व अलग हो जाता है, और इस महत्व के अनुसार कुछ लोग व्रत भी करते हैं। पूरे माह के व्रत किए जाएं या ना किए जाएं, लेकिन व्रत करते हैं तो व्रत करने से होता क्या है? आयुर्वेद कहता है कि अगर हम पूरे हफ्ते भर पेट अच्छा खासा तेल से घी से तर खाना खाते हैं तो हमें हफ्ते में एक दिन या दो दिन का व्रत जो है जरूर करना चाहिए। व्रत हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर की अंदर से क्लीनिंग हम खुद नहीं कर सकते, हमारी बॉडी अपने आप करती है। और उसके लिए हमारे खाने में पर्याप्त समय की अवधि का अंतराल होना जरूरी है। मतलब एक से दूसरे खाना जब हम खाते हैं उसके दौरान 16 घंटे कम से कम अंतर होना जरूरी है, ताकि जो भी खाना हमने खाया है वो पच जाए और जो पचा हुआ है वो शरीर के काम आए, फैट इकट्ठा ना हो, हमारी जो डाइट है वो भी बैलेंस बनाकर हमें चलनी चाहिए। ये तो रही व्रत की बात कि व्रत हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, लेकिन एक चीज और है बहनों जो हम सुबह उठते ही अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं। आजकल तो वो चीज ऐसी है कि हमारी टाइम, हमारी घड़ी, हमारे सारे रात ये जो रिश्ते नाते हैं सब कुछ उस एक चीज में समा गया है। जी हाँ, आपका जो अंदाजा है वो बिल्कुल सही है, मैं बात कर रही हूँ स्मार्टफोन की। हमारे सारे रिश्ते नाते उसमें समाये हुए हैं, हमारा समय सबसे ज्यादा उसी में तो खपता है, हमारा जो अलार्म है उसी से शुरू होता है, और सुबह उठते ही सबसे पहले हमारी नजर उसी पे जाती है कि कहीं रात को कोई नोटिफिकेशन

नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, और खुदा ना खास्ता रात को अगर नींद खुल जाए तो सबसे पहले हम फ़ोन ही स्क्रॉल करते हैं। ये चीज़ जितनी ज़्यादा सुविधाजनक है उतनी ही ज़्यादा नुकसानदेह भी है। बात करेंगे इसके बारे में और ज़्यादा, पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस बहुत ही खूबसूरत से गाने का एक मतलब तो समझ में आता है बहनों कि जिंदगी दो चार दिन की है। दो चार दिन की जब हमारी जिंदगी है, मतलब हमें नहीं पता कि हम इस धरती पर कितने समय तक रहने वाले हैं। अपना अंत किसी को नहीं पता होता, कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो जब हमें ये पता है कि हमें नहीं पता हमारा अगला स्टेप सही रहेगा, हम कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो अपनों के साथ वक्त बिताने के बजाय फोन के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड करना। एक ऐसी चीज जो हमारी सुविधा के लिए बनी है, जिसने हमारी कैलकुलेशन को सही किया है, ठीक है, एग्री करते हैं हम लोग, बच्चों के लिए, कार्यस्थल पर, बड़ों के लिए, यहाँ तक कि बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन इसके फायदे से ज्यादा नुकसान आजकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों ना हफ्ते में एक दिन या दो दिन का डिजिटल उपवास किया जाए। उपवास का मतलब वही है कि अगर डिटॉक्स होना है तो हमें उस चीज से दूरी बनानी पड़ेगी। मतलब अगर हम ऐसा कुछ खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को हानिकारक दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं, तो हमें उससे कुछ समय के लिए दूर हो जाना चाहिए। हमारी बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेती है, उसके दुष्प्रभाव अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम इन स्मार्ट गैजेट्स से कुछ समय के लिए दूर रहें हर हफ्ते, जितना भी इसका दुष्प्रभाव हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे अपनों के साथ, हमारे बोलचाल और व्यवहार पर पड़ता है, धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा। और इसका दूर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हमारी जो युवा होती पीढ़ी है वो रील, शॉर्ट्स, वीडियो बनाने, स्क्रॉल करने की या पोस्ट करने की जो लत है वो पागलपन की हद तक लगाए हुए बैठी है। किसी भी चीज पर रील अगर देखी तो उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। 10 मिनट से शुरू होता हुआ उनका ये जो बचपन है, उनकी जो आदत है, घंटों में बदल जाती है और उन्हें पता तक नहीं चलता कि जहां वो अपना कीमती समय एक फालतू सी चीज पर नष्ट कर रहे हैं, उस समय को वो सार्थक और सदुपयोग काम में लगाकर अपने काम को ज्यादा बेहतरीन, ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मतलब कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नई तकनीक सीख सकते हैं, किसी नई भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। अगर अपनी भाषा में कहीं कमांड छूट रही है तो उसको फिर से अचीव कर सकते हैं। कहीं किसी सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट पिछड़ रहा है तो उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें पीछे छूट रही है सिर्फ और सिर्फ इन स्मार्ट गैजेट्स की, जो पीछे दौड़ने की हमारी जो आदत है इसकी वजह से। तो ये डिजिटल उपवास इसलिए भी जरूरी है ताकि हम फिर से अपनी जड़ों से जुड़ सकें, अपने परिवार के साथ जुड़ सकें, अपनों के साथ जुड़ सकें। तो एक बार इस डिजिटल उपवास को किया जाना भी जरूरी है, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी और हमारे बुजुर्गों के लिए भी ये चीज जरूरी है, जिन्हें हमने उनकी सुविधा के लिए फोन तो दे दिया पर उन्हें यह नहीं बताया कि इसके नुकसान कितने होते हैं। मसलन अगर वो लगातार फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिन्हें मोतियाबिंद की बीमारी नहीं है उन्हें मोतियाबिंद होने का भी खतरा रहता है। भले ही वो समय कम बिताएं लेकिन एक उम्र के अनुसार ये चीजें जल्दी प्रभावित होती हैं। तो इस चीज का भी हमें खास ध्यान रखना है कि डिजिटल उपवास सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, बुजुर्गों के लिए भी है। खास ध्यान रखा जाना चाहिए इस चीज का। बात हम और करेंगे इस चीज पर, पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: जी हाँ बहनों, याद तो हमें तब सताएगी ना जब हम हमारे स्मार्ट गैजेट्स से दूरी बनाए रखेंगे। टेक्नोलॉजी और स्मार्ट गैजेट्स वाली आज की दुनिया में जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं ने हमें अपनों से ही दूर कर दिया है। मतलब हम आभासी दुनिया में ज़्यादा विचरण करने लगे हैं। एक ऐसी दुनिया जो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है, जहां हमें सब कुछ सही लगता है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वो इस तरीके से हमारे मन को मैनिपुलेट करते हैं कि हमें चाहे ना चाहे जो भी उसमें हो रहा है सब सही लगता है। एक ऐसी आभासी दुनिया जहां हम मान सकते हैं कि वो दूर संचार की क्रांति का जो एक नया आगाज बनकर हमारे सामने आई है। हमारे काम, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों के स्वास्थ्य, सब कुछ एक क्लिक पर ही हमसे दूर होता है। मतलब हम अपनी शॉपिंग से लेके ग्रोसरी स्टोर तक जाने तक का भी जो है झंझट नहीं पालते। सारा कुछ हम अपने स्मार्ट गैजेट्स की वजह

से घर पर आसानी से करने लगे हैं, लेकिन ये जो आसानी है ये कुछ मिनटों से शुरू होकर घंटों में कब तब्दील हो गई हमें पता तक नहीं चला। कुछ ऐप्स जो हमें 5-10 मिनट रोक के रखने के लिए बने थे, अब हमारे घंटों के घंटों उन पर खर्च होने लगे हैं। और इसकी वजह से ये जो हमारी युवा होती पीढ़ी है, इनमें आत्मसम्मान की कमी, अकेलापन, अवसाद, चिंता की भावना हर उस व्यक्ति के मन में ज्यादा से ज्यादा ये देखने को मिलने लगी है जो स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। स्मार्ट होना बुरी बात नहीं है, स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इनके अधीन हो जाना बुरी बात है। वो कहते हैं ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, और अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। तो जब अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े कह रहे हैं, तो अति इसकी कैसे अच्छी हो सकती है? हालांकि हम अभी जो देख रहे हैं धूप है, बहुत तेज है, अति हमें उसकी भी अच्छी नहीं लग रही है, तो अति स्मार्ट गैजेट्स की उपयोगिता की कैसे हो सकती है? हालांकि सुविधा है, पर इसे एक सुविधा मानकर इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा दूर जरिए सही रहेगा। और इसीलिए एक चीज और है बहनों, कि ये जो इतने भी स्मार्ट गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, इन पर फोन करने और टाइम देखने के अलावा एक चीज और है जो हम देखते हैं, और वो है सोशल मीडिया। बहुत सारे ऐप हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कम से कम हमें बार बार स्क्रॉल करने की जो हमारी जो आंतरिक प्रेरणा है उसको उकसाते हैं, हमें मजबूर करते हैं कि हम नोटिफिकेशन देखें, बार बार रील स्क्रॉल करें, शॉर्ट वीडियोस जो आ रहे हैं उन पर कमेंट करें, या कोई और भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट आ रही है उनको देखें, उनको फैलाएं, उनको वायरल करें। ये हमारे मन में चीजें कौन डालता है? सोशल मीडिया डालती है। हम सोशल हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, हम मानते हैं हम, लेकिन हम सोशल तब हैं जब हम परिवार के साथ होते हैं, सोशल तब है जब हम समाज में दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलते जुलते हैं, अपना हर जो सुख दुख है उनके साथ साझा करते हैं, हम तब सोशल हैं। लेकिन अगर सोशल होना मीडिया के जरिए हो रहा है, एप्स के जरिए हो रहा है, तो हम सोशल नहीं है, हम बंध चुके हैं, हम पाबंद हो गए हैं, हम अधीन हो गए हैं, या यूं कहें कि एक तरीके से बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे मजदूर जहां पैसा भी हमारा ही लग रहा है और हमें मजबूरी में, मतलब हमारा मन जो है हमें मजबूर कर रहा है इन चीजों को देखने के लिए। तो ये जो एक बंधुआ मजदूर की नई श्रेणी है, ये सोशल मीडिया के जरिए ही विकसित हो रही है, जहां हम हो या आप हो या हमारी युवा होती हुई पीढ़ी या हमारे अनुभवों से भरे हुए बुजुर्ग, हर कोई सोशल मीडिया के अधीन हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाने अनजाने हम अपने व्यक्तित्व का वो हिस्सा खो देते हैं जो हमें हमारे अपनों से जोड़ता है, जो हमें व्यावहारिकता की और तर्क की कसौटी पर खरी उतरने वाली बातें समझाने के लिए बनता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया के जितने भी एप्स हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, 5 मिनट 10 मिनट समझ लिया, अगर आप फ्री हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन अपना काम छोड़कर सोशल मीडिया को अगर आप लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया से दूरी बहुत ज़्यादा है ज़रूरी।

0: everybody.
1: Hi!
2: Smashing! Groovy! Wow!
3: Terrific! Fantastic!
4: What a beaut!
5: ये तो टाइम टाइम की बात है जॉनी, टाइम टाइम की बात।

0: या राइट
1: राइट
0: राइट एंड गुड नाइट।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बहनों, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया से दूरी हमें क्यों ज़रूरी है। अगर हम सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी गतिविधियों को, खुशियों को, तकलीफ़ों को व्यक्त करने लगते हैं, तो मान लीजिए कि हमें सोशल डिटॉक्स होने की ज़रूरत है। मतलब हमें ये उपवास करना ही करना चाहिए। ये तो शुक्र है कि स्कूल में टीचर्स को जब बुलाया जाता है, जब स्कूल में जाते हैं टीचर्स, तो उन्हें फ़ोन जमा करवाने के लिए कह दिया जाता है। मतलब वो कुछ पर्टिकुलर 6 से 7 या 8 घंटे जब तक वो क्लासेस अटेंड करते हैं या जब तक वो पूरी तरीके से फ्री नहीं हो जाते

स्कूल से छुट्टी का टाइम नहीं हो जाता वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, बच्चों के लिए भी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर को देखकर ही सीखेंगे कि अगर टीचर फोन को स्क्रॉल कर रहा है पढ़ाते समय तो बच्चा भी तो वही सीखेगा, पर अगर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है तो बच्चा वही सीखेगा। और अगर हमारी जो बुजुर्ग माताएं बहनें जो हैं प्रवचन से संबंधित कोई कार्यक्रम सुन रही हैं या देख रही हैं स्मार्ट गैजेट से, तो ये भी एक तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही है। आप इस चीज को भी अवॉइड कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप उस पर टकटकी लगा के देखें ही देखें। ठीक है, अगर आपको भजन चलाने हैं तो भजन चला के अलग कहीं ऊंचे स्थान पर अपने स्मार्ट गैजेट को छोड़ दीजिए, भजन बजते रहेंगे, आप सुनते रहिए। लेकिन अगर आप उसको बंद करके आराम से अपने जगह पर किसी साफ स्थान पर बैठकर ओम का उच्चारण करती हैं या ध्यान लगा के ने की कोशिश करती हैं, ध्यान लगाती हैं, वो भी आपकी मानसिक शांति के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। अगर आपको सोशल मीडिया से ब्रेक लेना है तो हफ्ते के 2 दिन जरूर लीजिए। सोशल मीडिया से ब्रेक एक ऐसा उपवास है जो आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अवसाद है, तनाव है या चिंता है जो कि सोशल मीडिया की जो फेक न्यूज है, डीप फेक न्यूज जो है, इनकी भरमार की वजह से हमारे दिमाग में घर कर जाती है, उनसे दूर रखता है। इस समय का उपयोग करके आप नई रुचि विकसित कर सकती हैं, अपनी मनपसंद किताबें पढ़ सकते हैं, व्यायाम और योग के द्वारा अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर अफवाहें और गलत जानकारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, और खुदा ना खास्ता कभी आपने कहीं किसी जानकारी पर गलत कमेंट कर दिया तो सरकारी जो एजेंसियां हैं वो उतनी ही जल्दी एक्टिव होकर आपको भी एक बार समन दे सकती है। तो इन चीजों से भी बचने के लिए हमें सोशल मीडिया से दूरी रखनी जरूरी है। अगर हम इनसे दूर रहेंगे तो भ्रम में भी नहीं पड़ेंगे। एक चीज और बहनों, भले ही हमें आभासी दुनिया में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, उन्हें बहुत सारा ज्ञान भी होता है, ज्ञान की भरमार है वहां पर वो ज्ञान कितना सही है ये कोई नहीं बता सकता सिवाय किताबों के। इसलिए किताबों से दोस्ती कीजिए, ये ऐसे दोस्त बनती हैं जो सही ज्ञान देकर आपकी सफलता का रास्ता आसान बनाती हैं। तो अगर आपको सफल होना है अपने जीवन में तो सोशल मीडिया से डिटॉक्स होइए, उपवास कीजिए सोशल मीडिया से, डिजिटल दुनिया से, डिजिटल मीडिया से, और किताबों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि ये वो दोस्त बनती हैं जो आपको सफलता के चरम शिखर पर पहुंचाने की हिम्मत रखती हैं।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस अंतराल के बाद बहनों, फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम महिला जगत में। ये तो थी फिटनेस फ्राइडे के अंतर्गत वो बात जो हमने आपको बताई कि एक शारीरिक बीमारियों के जो हम दवा उपचार करवाते हैं, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनसे हमें दूर रहने की, डिटॉक्स करने की जरूरत है, और वह है सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म्स या फिर हमारे स्मार्ट गैजेट्स जो भी हमारे पास घर पर उपलब्ध होते हैं, मतलब हम अधीन हो गए हैं उनके। और इस अधीनता का जो खामियाजा है वो हमें अलग अलग तरीकों से भुगतना पड़ता है। पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, हमारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, हम कई बार सोते हैं तो सोते हुए ही समय निकल जाता है, और आंख खुलने पर हमारी आंखों में जलन तेज होती है, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जैसी समस्या होने लगती है। तो इस, ये जो बहुत सारी और भी अन्य समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमें सोशल मीडिया से एक निश्चित दूरी बनाए रखनी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी जिंदगी के हर एक मोमेंट को सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो ही होगा, नहीं, वहां लोग अप्रिशिएट करने वाले आपके अपने नहीं होते हैं। आपके अपने जो आपको अप्रिशिएट करेंगे वो आपके आसपास ही मिलेंगे, आपके नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके सोसाइटी वाले वो आपके आसपास ही होंगे। सबसे पहले जो आपके पास आपकी किसी समस्या में दौड़ कर आएगा वो होगा आपका पड़ोसी। तो उनसे रिश्ते बनाइए, आभासी दुनिया से दूर रहिए, और अगर आप आभासी दुनिया से दूर रहेंगे तो ही अपनी जिंदगी को जी भर कर जी पाएंगे, और जिंदगी को जी

भरकर जीने का मतलब है अपनी जिंदगी के हर एक पल को भरपूर इंजॉय करना, हर पल में खुश रहना या खुश रहने की कोशिश करना और अपने सपने पूरे करने की दिशा में

जी हाँ, हंसकर हमें जीना है और हमें किसी भी पल में रोना आए तो रोना भी ज़रूरी नहीं है। और रही बात हमारी खुशियों की, ज़िंदगी को जी भर कर जीने की, तो वो हमारे भीतर ही छुपी हुई है। अगर वो हमारे भीतर नहीं है तो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको पहले अपने अंतर्मन को टटोलना होगा कि आपको क्या करके खुशी मिलती है। ज़रूरी है कि आप कहीं दूर पहाड़ों पर ट्रेवल करने जाएं तो ही आपको खुशी मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठें, गप्पे लड़ाएं तो आपको खुशी मिले, चुगली करें तो आपको खुशी मिले, या फिर अपने बेतरतीब घर को सजाएं तो खुशी मिले। मतलब सुकून पाने के, खुशी पाने के हर एक के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अलग अलग तरीका अपनाने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि आप अपने मन में वो खुशी चाहती हैं जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। और बाहर न मिलने का एक कारण हो सकता है, और भी हो सकता है, कि आप अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं अपने मन के भीतर। एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन के भीतर, इसलिए ताकि हम कहीं बाहर अगर खुशी, सुकून या किसी और चीज़ की तलाश में भटक रहे हैं, उससे पहले अपने खुद के अंदर, अपने आसपास, अपने घर परिवार में देखें कि क्या सच में हमें बाहर भटकने की ज़रूरत है। अगर हाँ, तो चॉइस इज़ योर्स कि आप पार्टियां कर सकती हैं, आप ये जितने भी सामाजिक समारोह हैं उनमें हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन वहाँ जाकर अगर आपको अकेलापन महसूस हो, आपको टेंशन हो, आपका मन ना लगे, तो यकीन मानिए कि जिस चीज़ की खोज में आप बाहर जा रही हैं वो आपके भीतर, आपके आसपास है, बाहर कहीं नहीं।

आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो अपने अतीत के पछतावे को भूलकर भविष्य की चिंताओं को छोड़कर अपने आज में जीना होगा। हर एक पल को अनुभव करना सीखना होगा। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। खुद को अपनी खूबियों और कमियों के साथ पहले खुद स्वीकार करें, तभी कोई और आप पर ध्यान देगा। जिंदगी के अंत का पता तो किसी को भी नहीं होता, इसलिए अंत में काश जैसा शब्द जोड़ने के बजाय अपने मन में सकारात्मक सोच रखें और आगे बढ़ें। कुछ नया सीखें, यात्रा करें, अपने शौक पूरे करें, मतलब अपने लिए समय जरूर निकालें। अगर आपको खुशी मिलती है किताबें पढ़ने से

तो किताबें पढ़िए, डांस करने से खुशी मिलती है तो डांस कीजिए, म्यूजिक सुनने से, गाने सुनने से या जो भी काम करने से आपके मन को खुशी मिलती है वो जरूर कीजिए। अंत समय के लिए काश जैसा शब्द अपनी डिक्शनरी में मत जोड़िए। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पास है वैसा जीवन कई लोगों का सपना हो सकता है, तो जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, प्रकृति से, अपने आप से, क्योंकि यह जीवन आपका अपना बनाया हुआ होगा, अपनों से क्योंकि उन्होंने आपका हमेशा साथ दिया है, दोस्तों से क्योंकि उन्होंने आपसे आपकी भावनाएं जाहिर की है। आभार मानना हमारे व्यक्तित्व को एक संवेदनशील इंसान बनाता है जो कि हम पहले से हैं, हमें बेहतरीन बनाने की दिशा में एक और कदम होता है आभार मानना। तो प्रकृति जो कि हम सबकी माँ है उससे शुरुआत कीजिए और अपने बच्चों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सभी का आभार व्यक्त जरूर कीजिए ताकि जिंदगी में आभार व्यक्त करने की जो कमी हम रखते हैं वो भी पूरी हो जाए। और कुछ इस तरीके से जिंदगी को जिए कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएं। और अंत में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी बहनों कि काश कहने से पहले आप अपने आज को खुश होकर जिंदा दिली से भरपूर खुशी के साथ जिए ताकि अंत समय में काश मैंने ये पहले कर लिया होता कहने की आस बाकी ना रहे।

0: June as the first stop of his two-nation European tour covering France and Slovakia. The visit carries special significance as it will be his first bilateral summit with President Emmanuel Macron since the two nations elevated their ties to a special global strategic partnership in February this year. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Meanwhile, Secretary General of IMO has underscored the need to protect seafarers, civilian shipping and the freedom of navigation at all times.
1: We also know that there's been some ships that have been hit, notably the Citadello tanker that was hit, and a number of Indian seafarers were killed, and that is an attack that was clearly condemned by the Secretary General of the International Maritime Organization, and we fully support and second that language.
0: The two-day BRICS Agriculture Ministers Conference began today in Indore, Madhya Pradesh. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan welcomed all delegates and stressed on carrying forward the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, the idea that the whole world is one family. He said under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India's approach is built on peace over war and cooperation over conflict. The minister said the country's total food production has risen to nearly 376 million tons. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people have been killed and 37 others wounded as the Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground. Although the demonstration started peacefully yesterday, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. The demonstrators were demanding justice for the 30 people who were killed and 200 injured in clashes between protesters and security forces in POK on Tuesday. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Palikesh Narayan Singh Deo, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. A report.
2: Born in Uttarkashi, Uttarakhand, Rana leaves behind a legacy that spans more than three decades as a shooting legend and national coach. He won multiple medals at the Asian Games and Commonwealth Games. Rana won a gold medal at the 1994 Milan World Championship in the junior category with a world record score, announcing his arrival on the global stage at the age of just 18. Jaspal has been widely credited as the man behind ace shooter Manu Bhakar's rise in the sport. Apart from Bhakar, Rana worked closely with several leading pistol shooters including Saurabh Chaudhary, Anish Bhanwala and Chinki Yadav. He was awarded the Arjuna Award in 1994, the Padma Shri in 1997 and the Dronacharya Award in 2020. Indian shooting has lost one of its finest ambassadors, athlete, mentor and sports journalism has lost a knowledgeable guide. Sayukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
0: President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and other leaders have expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash today, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. South Korea will next take on co-hosts Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. Today, co-hosts Canada will be up against Bosnia-Herzegovina in a Group B clash of Toronto Stadium. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6, 21-9 in a one-sided quarterfinal clash. The Inter-Meteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
5: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम

0: सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने

0: ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं तराने नए पुराने।
3: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
4: किया।
3: कभी किसी का

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और पेरी जी की। फिल्म का नाम है बागी 2।

आदतें सोचे के बाद में बाकी है जो भी बचा हम दोनों को चढ़ा नशा और मुझे पता तेरे दिल में बैठे हथेली है सारी जगह आजा साथ में गायब लेके बसा टिंग टॉक टिंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने। इस वक्त आपके रेडियो सेट पर है अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में बोस फिल्म का गीत।

श्रोताओं, अंतराल से पहले आपने सुना बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म का गीत, और इस वक्त आपके रेडियो सेट पर है अरिजीत सिंह और समीरा कोप्पिकर की आवाज में हेट स्टोरी 2 का ये गीत।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

राहत फतेह अली खान, असिस कौर और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे सिम्बा फिल्म का गीत। आकाशवाणी चूरू से श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने FM 100.7 MHz पर।

आप सुन रहे थे नेहा कक्कड़ और ध्वनि भानुशालु की आवाज में सत्यमेव जयते फिल्म का गीत। तराने नए पुराने इस प्रोग्राम के आखिर में सुनिए 40-84 फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने नए पुराने एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी प्रथम सभा अब यहीं संपन्न होती है। द्वितीय सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा अब आरंभ होती है। आइए सुनते हैं हमारी युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

दस बहाने करके ले गए दिल। श्रोताओं, पूरा दिन जब गुजरता है, दिन ऐसे गुजरता है कि बहाने जो है वो एक साइड में हो जाते हैं और काम करने की फुर्सत यानी कि इतनी रहती है कि काम ही काम करते जाओ। और इसका नतीजा ये होता है कि जब हमारे पर्सनल काम होते हैं तो उन बहानों को दरकिनार करते हुए हमें जब टाइम मिलता है उन काम को करने में हम लग जाते हैं, और एक पैटर्न हमारा एक ऐसा बन जाता है जिस पैटर्न में हम घुस जाते हैं। सोशल मीडिया की हम आज सबसे पहले बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया में इतने घुस जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता है और लेट नाइट तक जागते रहते हैं। बहाने बहुत सारे होते हैं, दस क्यों, बहुत सारे बहाने होते हैं। बातें उनके बारे में ही करेंगे आज। फिलहाल आज के इस युवाणी कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त लक्ष्मीकांत ओझा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

सुन रहे हैं आप युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से, और कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने बातचीत शुरू की है कि एक ऐसा लाइफस्टाइल आजकल बन गया है कि जिसमें हमें बहाने बहुत सारे बनाने पड़ते हैं। अब बहाने कहें या रियल टाइम रियल लाइफ में जो हमारे साथ में घटित हो रहा है उसके हम बातों को बयां करते हों, हो सकता है कईयों को लगता हो कि हम बहाने बना रहे हो सकता है कभी कभी हमें भी खुद को भी लगता है। काफी कंफ्यूजिव सा दिन जो है

ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सा हो रहा है अभी हम बात कर रहे हैं। अब जैसे जिस समय हम बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता भी है कि जब अमुक व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या बता रहे हैं, कभी कभी खुद के दिमाग में भी ऐसी उलझने चलती रहती है, होता है ना कभी कभी कि बात एक बोल रहे हैं और दिमाग में बातें चार चल रही है कि कहाँ से क्या चीज होनी है। ऐसे में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है और ऐसा लगातार करते करते जो लाइफस्टाइल है वो भी कंफ्यूजिव हो जाती है। अमूमन हम पाते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है वो एक शिकायत हमसे जरूर करते हैं कि अरे भैया बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक क्यों जागते रहते हो, कभी कभी तो हम तुम्हें देखते हैं 1:30 बजे तक 2 बजे तक जो है तुम जागते रहते हो, सुबह लेट उठते हो, इससे अच्छा तो रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठा करो, ये है, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें सुनने को मिलती है। और उनकी बातों को हम, क्योंकि हम यूथ है और सुनते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता भी है मन में कि भाई ये हमें लगातार बोल रहे हैं पर क्या बताएं इनको कि हमारी जो क्या मजबूरियां हैं, हमारी क्या बातें हैं। जब भी हम उनको वो बताने बैठेंगे तो हो सकता है कि वो बहाने प्रतीत हो, पर अमूमन पेरेंट्स की यही एक शिकायत रहती है कि भाई आप जो है वो अपना लाइफस्टाइल सुधारिए और जो जीवन शैली है अच्छी करोगे तो आप में या आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होगा। फिर भी लेट नाइट जो है, आज के यूथ की लेट नाइट तक जागने की जो है ये एक समस्या, यूं कहें कि एक आदत सी बन गई है यूथ में। क्यों होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। दिन भर अगर सबसे पहली बात हम करें तो दिन भर हम काम में लगे हुए रहते हैं और पूरे दिन जो है जॉब का जो पूरा समय है वो निकालने के बाद में जब हम शाम को थोड़ा फ्री होते हैं या रात को जब हम फ्री होते हैं तो वहां पर एक मी टाइम, यानी मेरा समय, मेरा कौन सा टाइम है, क्योंकि मैं तो पूरे दिन जो है वो लगा हुआ हूं कहीं ना कहीं किसी की सक्सेस के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन में मेरा टाइम कहां पर है? वहां पर हम मी टाइम खोजने की कोशिश करते हैं और वो जो मी टाइम होता है वो कभी कभी एक ऐसा समय हमें पूरा लगा देता है कि हम उसमें खो से जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप की जो लाइफस्टाइल है उसको सोचने के लिए, कुछ भी हम उसके बारे में बात कहें, ऐसा करने के लिए हम एक मी टाइम का और उसमें बिताते हैं। इसमें एक देर रात तक जगने का भी समय होता है जिसमें सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं और सोशल मीडिया पर जो हमारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं उन ग्रुप्स में भी अक्सर वो जो हमारे साथी होते हैं वो भी लेट नाइट तक जागते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम भी उनसे जो है वो गॉसिप करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि कितनी लेट हो गई है। और ये जो लेट है वो हमारे जो पेरेंट्स है उनकी शिकायतों की लिस्ट में ये वाली लेट जो है वो जुड़ जाती है और इसीलिए वो हमसे शिकायत करते हैं कि भैया थोड़ा सुधरो और जो समय है उस समय की वैल्यू पहचानो और अपने आप को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करो। बट कोशिश हमारी यही होती है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। अब देर रात तक की जो ये जागने की आदत है वो जागने की आदत का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि हम अपने आप में मी टाइम ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। बातें और भी करेंगे आज के इस कार्यक्रम युववाणी में, फिलहाल लिए चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

माइंड ब्लोइंग गाने के साथ ही अब बढ़ चलते हैं युवाणी के आगे के सफर में, और सफर जो हमारा चल रहा है उस सफर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो आज का जो यूथ है, आज हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि रीज़न क्या है कि देर रात तक हम जागते रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके कारण से रात को नींद आती नहीं। सबसे पहले डिजिटल उपकरणों का प्रभाव, यानी कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, ये बहुत सारी ऐसे जो हम स्क्रीन टाइम बिताते हैं, और इनके प्रभाव से भी हमें रात को लेट तक नींद आती है। जो ये स्क्रीन की रोशनी होती है, यानी फ़ोन और लैपटॉप से निकलने वाली जो ये ब्लू लाइट है, ये नींद लाने वाले जो हार्मोन्स है मेलाटोनिन, इनको रोकती है, और जिससे कि हमें नींद कम आती है। क्योंकि अक्सर हम अंधेरा पूरा करके भी हम मोबाइल देखते रहते हैं और कंटिन्यूम समय का पता भी नहीं लगा पाते, और वो कंटिन्यूटी रहती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम 11:30 बजे बैठे थे और कब के 2 हो गए हैं, यानी कि 2 बज चुके हैं, और लगता है कि अरे थोड़ा सा 1-2 रील और रह गई है, इनको और देख लिया जाए। ऐसा करते करते जो कभी कभी हमें सुनने को भी मिलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको 4-5 सुबह के बज जाते हैं, और फिर वो नींद कहाँ, वो जो नींद आती है वो आधी अधूरी आती है, और वो जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसान करती है। साथ साथ में हमारा जो लाइफस्टाइल है, अब लाइफस्टाइल धीरे धीरे हमारा चेंज हो रहा है, भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है वो हमारी शुरू हो गई है, और थोड़े दिन पहले तक हम पढ़ाई कर रहे थे, एक टाइम टेबल हमारा एक अलग था कि हाँ भाई हमें ये निश्चित रूप से हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद में हमें एग्ज़ाम देना है, रिजल्ट का वेट करना है, रिजल्ट आ गया उसके बाद में नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है। अब जो है हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे अब हम जो है वर्किंग सेक्टर में आ गए हैं, जॉब में लग गए हैं, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि टाइम लिमिट बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पर आप काम करते जाइए जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन भी हमारी लाइफस्टाइल को एकदम चेंज कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस टाइम में सुबह हमारा 10 o'clock टाइम है, बट हमें 8 o'clock तक ही निकलना ज़रूरी होता है, और जाने के बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि हम 8 o'clock इवनिंग वापसी कर ही लेंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो काम का, ऐसी कंडीशन में 10 o'clock 11 o'clock भी हो सकते हैं। तो

यहां पर भी जो है वो लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो निश्चित है वो हमारा टाइम नहीं मिल पाता है, और यही रीजन होता है कि धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य की जो नुकसान है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं. साथ साथ में जो है वो जो प्रेशर है, प्रेशर को कई बार क्या होता है कि हम झेल जाते हैं, पर कई बार मनोस्थिति हमारी ऐसी हो जाती है जिसके कारण से हम जो है वो एकदम टेंशन में आ जाते हैं, कि खुद पर दबाव महसूस करते हैं कि ये जो काम है ये होगा कैसे. एंग्जाइटी फीलिंग हो जाती है कि हाँ भाई ये आज का तो मैंने इतने ये फाइल्स कंप्लीट कर दी, या जो भी हमारा टास्क है ये मैंने कंप्लीट कर दिया, बट जो नेक्स्ट डे है ये कैसे करूँगा. डर मन में रहता है, दिल धड़कता रहता है कि अरे कल क्या होगा, जोर जोर से धड़कता है. ऐसी कंडीशन में लेट नाइट्स हो जाती है. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि लेट नाइट की हमारी आदत में शुमार हो जाती है. पहले पहले हमें लगता है कि हाँ भाई ठीक है 11-12 बजे तक हम जाग रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसके बाद में ये हमारी आदतों में शुमार हो जाती है. और ये अगर आदतों में शुमार हो जाती है तो यकीन मानिए कि इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हमारे लिए उत्पन्न हो सकते हैं. हो सकता है हमारी बॉडी जो है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, झेल जाए, बट कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि हमारी बॉडी उस चीज को झेल ना पाए. क्योंकि देखिए नींद जो है, हमें सभी कहते हैं कि नींद का जो प्रॉपर टाइम है वो बॉडी को कंप्लीट होना ही चाहिए, यानी कि हमें नींद एक प्रॉपर टाइम की लेनी ही चाहिए. अगर उससे हम कम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो टूट फूट हो रही है, जो भी उसको स्वस्थ होने के लिए, हीलिंग होने के लिए टाइम चाहिए, वो हम उसे नहीं दे रहे हैं. और अगर टूट फूट लगातार जारी रही और वो बनी रही तो स्वाभाविक है कि शरीर में नुकसान होगा, और वो शरीर के अंदर का जो नुकसान है वो बाहर भी कुछ दिनों बाद में हमें दिखाई देगा. बातें और बहुत सारी करेंगे आज के युववाणी के कार्यक्रम में. फिलहाल चलते हैं गीत संगीत की दुनिया की ओर.

जी हाँ साथियों, तो युवाणी का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। और इस गीत के बाद शुरुआत करते हैं फिर से उन्हीं बातों की, यानी कि जो हमारा टाइम, जो डेली का जो हमारा टाइम टेबल चल रहा है और उसमें भी हम लेट नाइट तक अगर जाग रहे हैं तो वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमने कुछ कारण जानने की कोशिश की थी इसके, जो गाना हमने सुना इसके पहले। अच्छा, उन कारणों के बाद में अगर हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो परिणाम है उनकी बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा असर हमारा होता है मानसिक स्वास्थ्य पर असर, यानी कि लगातार जो नींद है उसकी कमी से हमें एंग्जाइटी और चिड़चिड़ापन हमारे अंदर रहता है। आप देखिए, 4.5 घंटे 5 घंटे की अगर नींद होती है और कंटिन्यूटी अगर हमारी यही चलती रहती है कि हम 4.5 घंटे सो रहे हैं या 5 घंटे सो रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा अकेले में बैठकर अगर सोचेंगे तो बहुत छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देते हैं। आप या हम कोई भी, हम कह सकते हैं कि एक नियत समय, 7 आवर्स का प्रॉपर टाइम होता है, 6, 7, 8 आवर्स भी कई लोगों को सोने का समय जो है मांगता है, तो वहां पर उससे यदि हम डाउनशिप में जाते हैं, कम सोते हैं, तो डेफिनेटली चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आता है। उसी के साथ साथ हमारी जो एकाग्रता है उसमें भी कमी आती है। याद कीजिए कि बचपन के जो दिन थे वहाँ पर क्लास के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेसन जो आते थे वो बहुत जल्दी याद करके सुना देते, और टीचर जब हमें कहते थे कि हाँ भैया ये लेसन 1 है, लेसन 1 के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का लर्न करके आने, और जो नेक्स्ट डे हम जाते थे क्लास के अंदर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी क्योंकि वहाँ पर हमें सब कुछ लर्निंग, स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग करके जाते थे। इवन अगर बीच में से भी कुछ पूछ लेते तो हम तैयार थे उस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेस्टिंग पीरियड था और था वो बहुत एकदम प्रॉपरली सेट किया हुआ टाइम था, जिसके कारण से हमें कोई दिक्कतें नहीं आती थी। कभी कभी अगर आज जब हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं तो वहाँ पर हमें महसूस होता है कि जिस दिन या लंबे समय तक हम अपने जो टाइम टेबल का, हमारे जो शेड्यूल है डेली, उससे थोड़े से इधर उधर होते हैं तो हमारी एकाग्रता में कमी रहती है। और अगर ये लंबी चलती है तो निश्चय ही हम बहुत सारे काम जो कर रहे हैं उनके अंदर हमें असफलताएं मिलती रहती है, तो ये एकाग्रता की कमी भी रहती है। और फिर उसके बाद में इम्यूनिटी जो है वो भी हमारी कमजोर रहती है। इससे पहले हमने बातचीत की थी कि अगर हम प्रॉपरली पूरा टाइम सोने को नहीं देंगे तो हमारी जो बॉडी है, हमारे रेस्टिंग पीरियड के दौरान बॉडी हीलिंग करती है अपने आप को, वो हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो जब उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी पावर है, वो कमजोर हो जाएगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी कमजोर हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से हम बीमारियों का घर बनने में समय नहीं लगाएंगे। इसलिए

लेट नाइट तक जागना, ये भी हमारे लिए बहुत बुरा है। इसके बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है कई हमारे साथियों के, यूथ के क्वेश्चन आ रहा है, भाई लेट नाइट तक जागते हैं, ठीक है, जागने से क्या होता है, हम दिन में भी तो सो लेते हैं, 10 बजे उठते हैं तो 10 बजे तक सो लेते हैं, हमारी तो नींद रिकवर हो ही गई, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई लेट नाइट तक जागने की। बट इसमें दिक्कत आती है, दिक्कत क्या आएगी थोड़ी सी देर में हम बात करेंगे इसमें, पर इसके साथ साथ में एक जो परिणाम आता है, कमी आती है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या वजन बढ़ना, जो पाचन जैसी समस्या है, एक वो भी उठकर आती है, क्योंकि आजकल मोटापे की समस्या भी सर चढ़कर बोल रही है। और कुछ व्यक्तियों में तो हम अमूमन कहते हुए सुनते हैं कि पानी भी हमारे घी का काम करता है, अगर हम घी को सूंघ भी लेते हैं तो मोटापा हमारे बढ़ जाता है, 1-2 किलो तो अगर घी के पास में से भी निकल जाते हैं तो बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट ऐसा कहते हैं। हाँ, अगर हम हमारा शेड्यूल बिगाड़ कर रखते हैं तो बिगड़े हुए शेड्यूल में भी वजन एक बढ़ने का कारण हो सकता है। हालांकि वजन बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट अगर हम लेट नाइट तक सोते हैं और उसके बाद में जो हमारी समय है, सोने का समय है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, तो हमारे वजन बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि खाना भी पचने के लिए थोड़ा सा हमें रेस्ट करने की जरूरत होती है, शरीर जो है वो शांत होना, यानी कि 4-5-6-7 घंटे तक हम आराम से लेटे रहें, तो ऐसी कंडीशन में हमारा खाना आसानी से पच जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पाचन जैसी समस्याएं भी आती है, और ये जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारे लिए तकलीफदायक होता है। अब इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि भाई हम जो है वो अपनी नींद जो है वो कभी भी पूरी करें, इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम एक होती है साथियों कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमारा जो सोने का जो सिस्टम होता है, सोने के सिस्टम में एक जो हमारा हार्मोन होता है, नींद लाने वाला जो हार्मोन है, मेल्टोनिन हार्मोन जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिर डिस्टर्बिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो मेल्टोनिन हार्मोन है ये प्राकृतिक हार्मोन है, और जो मस्तिष्क हमारा है उसमें पीनियल ग्रंथि द्वारा ये निर्मित होता है, और ये जो हार्मोन है जिसके हम बात कर रहे हैं मेल्टोनिन की, ये एक स्लीप हार्मोन है, यानी कि नींद का हार्मोन कहा जाता है, और यह सोने जागने के जो हमारा चक्र है उसको नियंत्रित करता है, और प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमें नींद लाने में ये भूमिका निभाता है मेल्टोनिन। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ठीक है, मेल्टोनिन तो बनता ही है, तो इसमें सोने की या हमारे जो शेड्यूल है उससे क्या प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये होती है कि ये अंधेरे और रोशनी का चक्र होता है, यानी कि जब आसपास अंधेरा होता है या नेचुरली अगर अंधेरा होता है तो पीनियल ग्रंथि जो है वो अधिक मेल्टोनिन बनाती है, जिससे कि हमें थकान और नींद महसूस होती है। एक तो बहुत सारा हम काम कर लेते हैं तब की बात है, या फिर आपने ऐसा देखा होगा कि रात के 10-10:30 बजते ही और धीरे धीरे उबासी आनी शुरू हो जाती है, अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ भाई अब हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। ये मेल्टोनिन हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में नींद की महसूस करवाता है। अब उसके बाद में जैसे ही उजाले की कमी होती है, यानी कि आंखों को रोशनी मिलनी स्टार्ट हो जाती है या फिर रोशनी आती है, तो इस समय शरीर में जो ये हार्मोन है इसका उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है, और जिससे कि हम जाग जाते हैं, नींद खुल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर लेट नाइट पीनियल ग्रंथि है, ये मेल्टोनिन हार्मोन तो बना रही है, बट हम क्या कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में मोबाइल को हमने आंखों के सामने रखा हुआ है और रील पे रील हम चलाए जा रहे हैं, नींद जरूर आ रही है, कई बार हमने देखते भी है कि मोबाइल जो गिर जाता है साइड में, इधर उधर गिर जाता है, ये हो जाता है, बट फिर भी हम वापस कोशिश करते नहीं, आज तो हम अगली रील को देखकर ही रहेंगे, आंखें बंद होती रहती है, पर फिर भी हम अपने शेड्यूल को बिगाड़ने रखते हैं, लगातार उसमें कोशिश करते हैं कि क्यों ना हमारा शेड्यूल बिगड़ जाए। ये मेल्टोनिन हार्मोन जो है वो हमें नींद दिलवाता है, इसके प्रोडक्शन में भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ये इसके काम अगर हम बात करें मेल्टोनिन के, तो 24 घंटे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक चक्र को ये संतुलित रखता है, और यकीन मानिए रात में बेहतरीन और गहरी नींद लेने में ये मदद करता है। गहरी नींद का अर्थ समझिए कि हम जब सो जाते हैं, 2 घंटे बाद में उठ गए, 1.5 घंटे बाद में फिर उठ गए रात को, फिर वापस सो गए, फिर 1.5 घंटे बाद में उठ गए, ये गहरी नींद की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप एक बार सोए और 5-6 घंटे कंटिन्यू आप सोते रहे, ये गहरी नींद है। अगर ये आती है आपको, ये तो यकीन मानिए कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में अगर ये इसका जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन कब ज़्यादा या कम की अगर बात करें, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ में प्राकृतिक मेल्टोनिन का उत्पादन जो है, मेलाटोनिन का, ये कम हो जाता है।

और यही हम देखते हैं भी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी नींद में कमी आती है, क्योंकि वो थोड़ा कम सोना शुरू कर देते हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ में। उसका रीजन ये जो हार्मोन है वो कम प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ में अब कब प्रोडक्शन इसका कम होता है कि रात को सोने से पहले अगर हम मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी की तेज रोशनी यानी कि जो नीली रोशनी है उसके संपर्क में अगर हम आते हैं तो इससे भी मेलाटोनिन का जो स्तर है वो बहुत हद तक प्रभावित होता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि भी सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या अपनी सुधारिए, और अगर मेलाटोनिन हार्मोन यानी आपको अगर नींद की ऐसी लग रहा है तो मेलाटोनिन का स्तर भी हम बढ़ा सकते हैं। खट्टे फल, चेरी, अखरोट, बादाम, केला, ओट्स, चावल, ये बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, ऐसे खाना है जिनको कि आप जो है लेकर अपने इस हार्मोन का लेवल बढ़ा सकते हैं। और फिर भी अगर है तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं उनसे लेकर भी, और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर भी हम इस हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। बट जरूरी ये है कि हम अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएं, और अच्छी दिनचर्या यदि हमारी बनी रहेगी तो निश्चित ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
6: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: इन संदेशों के बाद युवाणी कार्यक्रम में आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। युवाणी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं, अब बात करते हैं एक थोड़ा सा, हम सोचते हैं एक ऐसी सिचुएशन को कि एक छोटा बच्चा है और जो छोटा बच्चा, उसके हाथ में हम क्या चीज़ सोच सकते हैं। छोटे बच्चे की जो लाइफस्टाइल है उसमें खेलना, कूदना, हंसी मजाक करना, स्कूल टाइमिंग बिताना, जिसके हाथ में पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, कलर्स हैं, जो कि अपनी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे जो सपने हैं उनको पन्नों पर उकेरता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखता है, आगे उसके लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें काम आने वाली है उनके वो एक एक बारीकी को सीखने का प्रयास करता है। एक बच्चे को जब हम अमूमन सोचते हैं, बच्चे के बारे में जब हम सोचते हैं, तो ये बातें बरबस ही हमारे दिमाग में आती है। पर कभी कभी ये जो चित्र है हमारे दिमाग में उभर के आता है, ये चित्र, ये कभी कभी बहुत ही दूषित दिखाई देता है। और कब दिखाई देता है? जब हम वास्तविक जीवन में उन बच्चों को देखते हैं जो कि इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए दैनिक मजदूरी के कार्यों में लगे रहते हैं।

हैं, कहीं फैक्ट्रीज में, कहीं ऐसे जो जटिल स्थान है या रिस्की एरियाज है वहां पर वो हमें काम करते हुए दिखाई देंगे, शॉप्स पे हमें काम करते हुए दिखाई देंगे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चाय की दुकानों पर हम देखेंगे, वो चाय बांटते हुए घूमते हुए दिखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में लगता है, मन बड़ा व्यथित हो जाता है कि इनका भी एक, इनकी भी एक रंगीन दुनिया है, इनके भी कुछ सपने हैं, इनके भी ऐसे भविष्य की कल्पनाएं दिमाग में है कि वो क्या बनेंगे, क्या सोचते होंगे। बट हम अमूमन कई जगहों पर देख पाते हैं कि वो बच्चे हमें दिख जाते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ काम करते हुए। अब ऐसी कंडीशन में जो है ये हम पाते हैं कि हमारे सोसाइटी में हम यदि इन सब चीज़ों को देखते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लेकर आए, मुख्य धारा यानी कि उनका जीवन जो है वो बेहतरी बनाने की कोशिश करें। अब ये जो काम कर रहे हैं बच्चे, यही एक्चुअल में बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर, यानी कि छोटी उम्र में ही मजदूरी या कोई काम करवाना, और काम करवाते हुए उनकी या उनके द्वारा जो अर्निंग होती है उससे परिवार में हेल्प लेने की कोशिश करना। पर जरूरी यह है कि हम इस चीज को दिमाग में रखें कि छोटी उम्र में यदि काम करना हम स्टार्ट करवा देते हैं बच्चों से, तो इसके बहुत सारे हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ते हैं। एक नियत समय बांध रखा है, सरकार ने भी बांध रखा है कि इतनी उम्र तक आप बच्चों से इस तरह के काम जो कि उसके मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको नुकसान पहुंचाते हो, इसको अवॉइड करें। अब अगर ऐसा होता है तो स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। कई ऐसे जगहों पर बच्चे जो हैं, जैसे खतरनाक कारखाने हैं, पटाखों की फैक्ट्रीज है, होटल्स है, ऐसी कई जगहों पर जो बच्चे काम करते हुए पाए जाते हैं तो कुपोषण का शिकार होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, इवन शोषण का भी वो शिकार होते हैं, क्योंकि उनको जो एक बड़े व्यक्ति को जो सैलरी मिलती है वो उनको सैलरी नहीं मिलती है, सभी को पता है, क्योंकि ये कम कम उम्र है और वहां पर कम सैलरी में वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं या उनको काम करने के लिए तैयार करवा दिया जाता है। तो ऐसे में उनका शोषण होता है और वहां पर भी प्रॉपरली उनको खाना मिलता है, या जो सारे दिन में एक बच्चे को डेवलप होने के लिए चीजों की जरूरत होती है वो तो भूल ही जाइए कि उसको वहां पर मिलती भी होगी क्या। तो इससे वो कुपोषण का भी शिकार हो जाते हैं, और भविष्य के जो सपने बुनने का समय होता है उस समय वो काम में लग जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में समय से पहले अगर उन्होंने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है तो समय से पहले उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, और एक टाइम के बाद वो कभी स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। यानी बचपन में जो छोटा बच्चा होता है उसके अपने सपने होते हैं। हम भी अगर इस बारे में भी सोच रहे हैं तो हम भी जब छोटे थे तो हमारे कुछ सपने थे कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे ये एजुकेशन लेनी है। सभी के अपने अपने एक सपने होते हैं, पर जब इस प्रक्रिया में, इस दौर में जब गुजर जाते हैं या इस दौर में चले जाते हैं तो वो सपने बने के बने रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन कार्यों में अगर हम अपने आसपास किसी को देखते हैं तो हम सबकी एक अच्छा नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी बन जाती है कि उस बच्चे को पढ़ाई की, शैक्षणिक व्यवस्था की मुख्य धारा में लेकर आए। दोस्तों आज 12 जून है और आज 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया जाता है, और इसका भी प्रमुख उद्देश्य यही है कि बाल श्रम की जो वैश्विक समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करना और इसे समाप्त करने के लिए दुनिया भर में इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी होता है। क्योंकि जानते सभी हैं कि भाई बच्चों से इस तरह से काम करवाना, यानी एक बड़ा व्यक्ति जो है वो सुबह 8 बजे जा रहा है और शाम को 8 बजे तक काम से करके आ रहा है, 12 घंटे तक काम कर रहा है, और वहीं उस छोटे बच्चे से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो 8 वर्ष का, 7 का, 9 का, 10 का वो बच्चा है उसी से भी वही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी उसी समय पे पहुंचे और उसी तरह से वो पूरे दिन काम करता रहे, वो भी 1/4 सैलरी और हाफ सैलरी उसके अंदर वो काम करता रहे। होता भी है, करते हैं वो, पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अगर देखते हैं तो उसको रोके।
अब इसकी शुरुआत की अगर बात करें, यानी कि जो आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर,

तो इसकी शुरुआत जो है वो 2002 में की गई आईएलओ। आईएलओ का मतलब यहाँ पर है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके द्वारा ये शुरुआत की गई। और इसके जो उद्देश्य हैं, ये प्रमुख उद्देश्यों में बात की जाए तो 5 से 17 वर्ष के उन बच्चों की

0: कि शाम को 5 बजे या 4 बजे या जब भी एक समय है वो ग्राउंड पे जाकर अपने दोस्तों के साथ में खेले, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या जो भी गेम्स हैं, उनके साथ खेले, गॉसिप करे, उनके साथ बैठे, उनके साथ चाय चिप्स के लिए वहाँ पर बैठ के आराम से बातचीत करे। किस बच्चे की इच्छा नहीं होती होगी? पर आप इमेजिन करके देखिए, वो बच्चा जो कि सुबह 8 बजे काम पे गया हुआ है और रात को 8 बजे वापस काम से लौट रहा है, तो वहां तो उसके सारे के सारे जो सपने हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, एक भी सपना उसका पूरा नहीं हो पाता है। ऐसी चीजों को रोकने के लिए ये बाल श्रम जो कानून है इसको बनाया गया है। हाँ, एक बात हो रही कि अब ये होता क्यों है, बाल श्रम की ये कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कुछ मजबूरियां होती है पेरेंट्स की। आप अगर बात करें तो पेरेंट्स में ही ये कुछ मजबूरियां हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि गरीबी, यानी कि गरीब परिवार जो है इनकी वित्तीय मजबूरी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, उनके कारण से भी बच्चों को काम पे भेजा जाता है। ये एक जरिया मान लेते हैं वो परिवार कि बच्चा जो है वो काम करने का एक जरिया है, पैसा कमाने का एक जरिया है, वो एक मशीन है, और धीरे धीरे उसको साधन मानते हुए कामों में झोंक देते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा रिलैक्सेशन है और घर का जो है वो वित्तीय व्यवस्था सुधर रही है, पर सुधरने के बजाय ये मानकर चलिए कि भविष्य के लिए वो फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ रही है। हाँ, इसका एक और कारण होता है कि अशिक्षा और जागरूकता की कमी होती है, यानी कि अगर शिक्षित नहीं है पेरेंट्स तो शिक्षा के महत्व को वो जान नहीं पाते, उनको उस वैल्यू का पता ही नहीं होता है, क्या करेगा पढ़ के, या बच्ची है क्या करेगी पढ़ के, तो उस वैल्यू को अगर नहीं जान पाते हैं तो इसके कारण से भी बच्चों को बाल श्रम में झोंकते हैं। और साथ साथ में सबसे बड़ा एक रीजन होता है सस्ता श्रम, यानी कि कारखानों, दुकान के मालिक या अन्य जो जगह के लोग हैं वो अधिक मुनाफा कमाने के लिए बच्चों को कम मजदूरी पर काम पर रखते हैं या उन पर काम पे रखने के लिए प्रेरित कर देते हैं, और यही कारण है कि बच्चों को इन कामों में झोंक दिया जाता है। इसलिए आज का जो ये दिन है, आज के दिन इसीलिए ही ये मनाया जा रहा है कि 5 से 17 वर्ष के उम्र के बच्चों की जो नेचुरल लाइफ है उसे बरकरार रखा जा सके। फिर से हम यही अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये बात जरूर रखना चाहेंगे कि अगर हमें अपने आसपास कोई भी ऐसा बच्चा दिखाई देता है जो कि इस तरह के काम में लगा हुआ है, तो हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम उसे मुख्य धारा में लेकर आएं और कोशिश करें कि वो भी पढ़ लिख कर समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। फिलहाल गीत संगीत की दुनिया की ओर अब बढ़ते हैं, उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

तो श्रोताओं, ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। और युववाणी कार्यक्रम में आज हमने बात की है, सबसे बड़ी बात तो हमारे जो डेली रूटीन है उसके बारे में। और आशा करते हैं कि हमारा डेली रूटीन जल्द ही सुधरेगा, और अगर सुधरा हुआ है तो बेहतर है कि उसको हम लगातार बनाएंगे। इसके साथ हमने चर्चा की बाल श्रम के बारे में, जो कि अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे को मुख्यधारा में लाने की कोशिश करें। फिलहाल आज का ये कार्यक्रम अब यहीं तक, दीजिए इजाजत। अपने रेडियो दोस्त लक्ष्मीकांत ओझा को नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं से थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा शाम 6:05 पर। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। 6:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार। शाम 6:30 पर आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे समय रहेगा कार्यक्रम खेती और गृहस्थी का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9 बजे समय रहेगा News@9 का। कार्यक्रम बातें ही चाले आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आपके ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे। और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। तो ये तो थे आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा। और कल यानी कि 13 जून को हमारे जो प्रातःकालीन सभा में कार्यक्रम प्रसारित होंगे उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। प्रातःकालीन सभा हिंदी में समाचारों के साथ आरंभ होगी और उसके बाद 6:05 पर कार्यक्रम विवरण, 6:10 पर सुनेंगे आप चिंतन। विषय रहेगा मिली हुई मदद को कभी भूलें नहीं। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समय रहेगा सुबह 6:15 पर। 6:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। चर्चा होगी पुस्तके एक अच्छा उपहार। सुबह 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे आप समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का समय रहेगा सुबह 8:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरसंगम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। 9 बजे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। देश गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य सुगंध। कल के इस कार्यक्रम में वार्ता होगी पातल और पीतल की विवेचना। वार्ताकार होंगे रामजीलाल कल्याणी। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल से दिल तक। फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा। और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं होता। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण के आधारशिला बताया है। आज देश भर में महिला नेतृत्व वाले विकास के सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियाँ महिलाओं को सम्मान देने और सशक्तिकरण के लिए है। इससे महिलाएं आज विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और नवाचार के क्षेत्रों में नई उड़ान भर रही हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में भी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं।
0: प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में हुई इस कार्यशाला में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने किसानों से कहा कि वे रसायन मुक्त अनाज तैयार करें, इस प्रकार के अनाज से कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती के कारण आज देश भर में खेतों की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन निचले स्तर पर पहुंचना चिंताजनक है। उन्होंने सूक्ष्म जीव और मित्र कीट द्वारा मिट्टी को मुलायम करने और उर्वरकता बढ़ाने की पद्धति पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों ने पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग जैसे प्राकृतिक खेती के तरीकों से मानव और मिट्टी दोनों की सेहत का ध्यान रखा है, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती माता को जहरीले रसायन और कीटनाशकों से नुकसान होता है।
2: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी, वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें ई डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छाट करके उस पर डाल देते थे, चार दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से या हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
0: बूंदी जिले की केशवराय पाटन, तालेड़ा और हिंदोली पंचायत समितियों में कामकाज में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बीडीओ सहित 11 कामकाज अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह व्यापक कार्रवाई की गई। इन ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि श्री दिलावर ने हाल ही में इन पंचायतों का औचक निरीक्षण किया था। नीट यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा की अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यह बदलाव करते हुए बताया कि अब परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा। इधर राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 का आयोजन इस साल 6 सितंबर को किया जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से यह परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 14 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि इस बार यह परीक्षा 35 विषयों में आयोजित होगी। इसमें राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, फारसी और उर्दू 5 नए विषय शामिल किए गए हैं। प्रदेश में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। इनके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगम तरीके से दिया जाएगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों के माध्यम से मौके पर ही विभिन्न विभागों से जुड़े काम किए जाएंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया और लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बैरवा आज जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना क्रियान्विति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रोत्साहन राशि के साथ आवश्यक उपकरण भी देने को कहा। डॉ. बैरवा ने लोगों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों की नियमित फिटनेस जांच करवाने और चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर भी जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने युवा पीढ़ी से हर तरह के नशे से दूर रहने की अपील की है। श्री अठावले आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नशे से समाज के हर तबके को नुकसान होता है। उन्होंने समारोह में सभी लोगों से अपने आसपास मौजूद नशा करने वालों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। जातिगत जनगणना को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
3: माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। तब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, SC ST को, OBC को फायदा मिला है और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: आज बाल श्रम निषेध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। देश में भी कृषि, होटल उद्योग, ईंट भट्टों, पटाखा निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाखों बच्चे काम कर रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक समस्या और सामाजिक विषमता को जिम्मेदार बताया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर करौली में बैक टू स्कूल अभियान की शुरूआत हुई। इस अभियान में 12 जुलाई तक सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां होगी। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने और बाल विवाह की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। उधर पाली के सुमेरपुर में एक बच्ची को बालश्रम से मुक्त करवाया गया। और अब मौसम संबंधी जानकारी। राज्य में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली और हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में आज ओले भी गिरे। उधर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हीटवेव चली और गर्म रात्रि रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आंधी बारिश की गतिविधियों में आज से बढ़ोतरी के आसार है। बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभागों के कुछ भाग में गरज के साथ मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंधी बारिश की गतिविधियां 16 जून तक जारी रह सकती हैं।
4: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले एक दो दिन पश्चिमी राजस्थान में एक वेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: राजधानी जयपुर में किराए पर वाहन उपलब्ध करवाने वाली रेंट कैब और बाइक रेंटल सेवाओं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों के लिए किराए के वाहनों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ये सख्ती की गई है। उन्होंने बताया कि कई व्यक्तियों और फर्मों की बगैर पंजीकरण के ही वाहन किराए पर देने की शिकायतें सामने आई हैं। श्री पचार ने बताया कि किराए पर वाहन देने के लिए परिवहन विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी रेंटल फर्मों को अपने कार्मिकों का पुलिस सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, वहीं पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। सीकर अपनी हवेलियों, बाटिक कला और धार्मिक स्थलों के साथ साथ शौर्य के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। इसी पहचान के साथ जिले की चिट्ठी की शुरुआत करते हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं और बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों से अपने सैन्य और नागरिक दस्तावेजों की जांच कराने का आग्रह किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल बिजेंद्र सिंह महला ने बताया कि नाम, नाम की वर्तनी, जन्म तिथि तथा पारिवारिक विवरण में अंतर होने के कारण पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शैक्षणिक सुविधाओं और अन्य देय लाभों में कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जन आधार, राशन कार्ड तथा अन्य अभिलेखों का मिलान करने और आवश्यकता होने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर संशोधन करवाने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल पीड़ित दिवस के अवसर पर सीकर के राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाल श्रम, मानव तस्करी और शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में किशोरों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीवन जीने, तथा भविष्य में अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे स्टेशन, बड़ा तालाब, मारू पार्क सहित कई स्थानों पर लोगों को तंबाकू और नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। स्काउट गाइड के सदस्यों ने नृत्य, नाटिका, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर फतेहपुर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महावारी स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रबंधन और एनीमिया की रोकथाम की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि महावारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इससे जुड़े भ्रम तथा सामाजिक वर्जनाओं को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित भोजन लेने और आयरन युक्त आहार अपनाने की सलाह दी गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में शहरी निकायों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से उड़ान 10 समर कैंप में महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। कैंप में हस्तकला, कंप्यूटर शिक्षा,

0: पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आमजन से कपड़े और जूट के थैलों का उपयोग करने की अपील की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत नगर परिषद द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। जयपुर रोड से बाईपास तक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए। नगर परिषद ने व्यापारियों और संस्थानों से सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने तथा नियमों की पालना करने का आग्रह किया है। सीकर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, सरकार लारला 12 साल माए महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बधावो देवन सारू जयपुर माए राज्य स्तरीय कार्यशाला राखी जी। राज्य सरकार सड़का माथे हिफाजत न जन आंदोलन बनावन सारू भेड़ी जिम्मेदारी सागे काम करन री अपील कीनी। और प्रदेश रा उगनी हल्का माए गरज चमक सागे बरसात, आतुनी हल्का माए लू रो कोप। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि केंद्र सरकार लारला 12 साल माए देश बनावन रा काम माए महिलावारी पूरा बूता सागे भागीदारी रो एहसास करावन बाबत अनुकूल वातावरण तैयार किन्नो है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो के हर हल्का माए महिलावारी मौजूदगी नजर आ रही है। पेश है समाचार कक्षों सालेहा गाजीरी रपट।
2: प्रधानमंत्री संस्कृत श्लोक रो जिक्र करता थका महिलावा ने देश बनावन री नींव बताई। आज देश भर माए महिलावा री अगुवाई माए विकास रा बेहतर नतीजा साफ निजर आ रहा है। स्वयं सहायता समूह रे जरिए गावाई हल्का री महिलावा ने ई माली तौरू खुदरे पाण उबी करी जा रही है। अर केंद्र सरकार री नीतियां महिलावा रो मान बधावन अर वा ने मजबूत बनावन सारू है। इणु महिलावा विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और नवाचारा रा हल्का माए खूब आगे बढ़ रही है। केंद्र माए एनडीए रा राजरा 12 साल पूरा वेवन रा सिलसिला माए राज्य माई 3 दिन ताई प्रदर्शनियां लगाई जा रही है।
1: केंद्र सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निवेश प्लेटफॉर्म रो प्रचार करता था का बतावन वाला वीडियो ने फर्जी बतायो है। पत्र सूचना कार्यालय रिफैक्ट चेक इकाई वीडियो ने गलत बताता था का कहो का इन माए 22,000 रुपया रा निवेश मा था, रोजीना 80,000 और हर महीना 24,00,000 रुपया मिलन रो दावो करीचियो है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई रे मुजब ओ वीडियो एआई यू बनाईचियो है। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बधावो देवन सारू आज जयपुर माए प्रदेश स्तर री प्राकृतिक खेती कार्यशाला और मल्लखंब प्रदर्शन राखीचियो। इनमाए राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानाओं कीड़ा मारण री रासायनिक दवाइयां कम काम लेवन और प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। श्री बागड़े किसानाओं रसायन काम लिया बगैर अनाज उपजार जनता ने बीमारियां बचावन माए मदद करण री अरज कीनी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो का किसान पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग सरीखा प्राकृतिक खेती रा तरीकाओं इंसान और मिट्टी दोनों री सेहत रो ध्यान रखे है। मुख्यमंत्री कहो के मौजूदा दौर माए रासायनिक खाद मोटी तादाद माए काम लेवाणु मिट्टी रो स्वास्थ्य खराब भी है।
3: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी है। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें ई डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके उस पर डाल देते थे, 4 दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।

0: ऐं ॿाड़पणा माए ब्याह न रोकण माथे ज़ोर थियो चियो। ज़िला रा 30 गांव रा सर्वे माए करीब 650 टाबरियां रे स्कूल छोड़बा ऐं 600 टाबरियां रो ॿाड़पणा माए ब्याह वेवण री शंकारी ठापड़ी। पाली ज़िला रा सुमेरपुर माए एक बच्ची ने मजूरियों आज़ाद कराई ची। रब मौसम राज्य रा उगनी हल्का माए लारला 24 घंटा माए बादलों री गाज और बीजलियां री चमक सागे जोरदार बायरो बाजो और बिरखा फी। श्री गंगानगर माए आज ओला पड़िया। दूजी कानी आतुणी हल्का माए कठा कठा लू बाजी और रात री बगत तेज गर्मी रही। प्रदेश माए घनखर ठोड़ा पारो 40-43 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो चाटियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में 16 जून ताई कठे कठे बादलों री गाज सागर तेज बारिश रा आसार है।
1: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 1-2 दिन पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: एशियाई खेलों में सोना रो तमगो जीतने वाला दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा देवलोक फेंकिया है। 49 साल रा राणा भारत रा निशानेबाजा ने पिस्तौल चलावन री सिखावन देवन माय लाग्योड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता निशानेबाज जसपाल राणा रा देवलोक फेवन पर गहरो शोक जतायो है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा ने चैंपियन एथलीट बताता था का कहो कि हमारा योगदान ने हमेशा याद रखियो जावेला। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार लारला 12 साल माए महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू जयपुर माए राज्य स्तर री कार्यशाला रखी जी। राज्य सरकार सड़कां माथे हिफाजत ने जन आंदोलन मनावन सारू भेली जिम्मेदारी सागे काम करन री अपील कीनी। और प्रदेश रा उगनी हलका माए गरज चमक सागे बरसात, आतुणी हलका माए लू रो कोप। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवेरे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। कार्यक्रम है खेती और गृहस्थी, सुनना रहे सगड़े किसान भाया ने गोपाल भाई का निशु
3: और भाई अर्जुन का निशु मोकड़ा मोकड़ा
2: राम राम
3: राम राम गोपाल भाई राम राम।
2: तो अर्जुन भाई दिन के तो यहाँ लागो के भाई पसीनो है जो मगरामा की सीधो ही जाओ खरड़ खरड़
3: जोर को।

0: जोर को जा।
1: पने अब देखो के मौसम जो है ने वो भी आपका अनेक प्रकार का जो रूप है ने वह दिखावे
0: दिखावे सा।
1: एर अब बारिश की है जी गड्ढा टोप यहाँ हो रही है के बरसात है जी कदी आ जा
0: कदी आ जा सा।
1: तो एक तो आपने असावधानी रखनी है के अब धीरे धीरे करके मानसूनी जी की बिरखा है वह नजदीक आन लाग रही
0: है। हाँ।
1: तो वो जो टेम है वो भी तो देखो के बहुत सा ऐसा काम है जिसका आपान देखो के ई टेम का मैं आपा करा करा और करना भी चाहिए।
0: हाँ।
1: पर जो अमृत के समान पानी है ने इन्हें आपने भेड़ो करना जो काम है वो आंदिना में जरूर करना चाहिए क्योंकि गर्मिया का पानी जो है वो ज्यादा लागे
0: ज्यादा लागे।
1: तो खेता में जगह कुंडा वह भी देखो पानी बंगे पिंदे में गयो और घराम जगह कुंडा तो बह में भी देखो के पानी है जो पिंदे में गयो है। तो ये खातर आंदिना में जी विशेष सावधानी अपन जल संरक्षण की बरतनी है बा आ के घराम जी का आपा कुंड बना रखे ही।
0: हाँ।
1: तो बी के लिए आपने जी की घरा की छात है ने।
0: हाँ।
1: बिन एकदम साफ सुथरी रखनी है
0: बहुत जरूरी है
1: क्योंकि अर्जुन भाई आपा देखा आंदिना का आंधी उड़ा इंज का बहुत आवे
0: बहुत आवे।
1: हाँ। रात ने काल जो रेतलो रफो जो खेता को है।
0: हाँ।
1: वो बहुत आयो
0: बहुत आयो सा
1: और बहुत सा ऐसा घर जगह देखा कि भाई एक एक मन छात इंच की बुहारी को नहीं
0: और
1: कूटड़ा का लाग जाए बाका ऊपर ढिग
0: ढिग है
1: हैं। तो ई खातरे हिसाब तो ओ बने के जिया आप आंगणे की सफाई दिन का मां कितनी बारी करा हैं दो तीन बारी झाड़ू लगावे लुगाई पताई इंच की पोचो भी लगावे तो बी छात जगी है ना अपनी बाबी हमेशा देखो के एकदम साफ सुथरी रखनी चाहिए। दो तीन बार की जरूरी कोनी दिन के जगी ठंडा ठंडा है और आपनी जितनी भी बड़ी छात हो चाहे एक कमरा हो चाहे पचास कमरा हो पूरी छात ने एकदम साफ सुथरी रखो कड़े कोई पत्ता बींट कूटलो रेतलो नहीं होना
0: चाहिए
1: क्यों के बिरखा है जगी कद भी आपड़े दर्द दर्द तो वो पानी के सागे मिल के वो जो कूटलो है वो नाला मांगी देखो कुंड में जाको
0: कुंड में जावे। हाँ।
1: अब कुंड में मान लो आधो कुंड पानी मीठे पानी को एकदम साफ सुथरो और वो कचरो है जो माइन उड़ गयो अब माइन जाड़ो देखो कि पूरे पानी को सत्यानाश हो गयो है।
0: हाँ।
1: तो ई खातर नियमित रूप में अपनी जी छात है वह साफ होनी चाहिए नाला जगह इन्हें बंक आगे आजकल लगाने की जालिया में मोटी मोटी तो बीमा की कोई जानवर जो है वो कौन जा सके कोई पत्ता एक और क्यों चीज या छोटा टाबर हो भी देखो के छोटी मोटी कोई खाने पीने की चीजा वे खा के छात पर यही फेंक दी
0: है।
1: हाँ। अब वो प्लास्टिक ओढ़ो या कोथरी देखो नाला में पज जाए कई बार डांट आ जा है। तो ई खातर जी आप रोज की छात ने बुआरांगा एकदम साफ रखांगा तो आपनो जो पानी है ना वो घर स्टोर हो जागो और खेत में कुंडे तो खेत में हो जागो
0: खेत में जागो
1: और पानी का जितना भी ठाम है छोटी मोटी खड़ी टूट फूट है या कुआड़ियों खराब हो गयो कोई को कब्जो खराब हो गयो कोई को किलो निकल गयो कोई को कनाड़ो निकल गयो तो बाने भी आपान ठीक करके और सौखी तरिया जो पानी ने संग्रह करने की जगह व्यवस्था है भी पर आपने विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि जल है तो
0: जीवन है
1: और जल है तो कल है,
0: कल है।
1: पानी बिना अर्जुन भाई जीवन का मां क्यों ही को नहीं।
0: और एक साथ आप भी देखो जिया बात थी बहुत बढ़िया बात बताई ठावड़ी बताई कि आभार को जो मौसम है।
1: हाँ।
0: आपने घरा की कुंड है छात।
1: हाँ।
0: की साफ सफाई है वही अगर आपने खेत का माए जी भी कुंड बनाई है भी को अगर पायतन है जहाँ मान लो बात बात बताई के रात ने अंदर डायो पड़ो।
1: हाँ।
0: तो भी अगर आपने खेत की कुंड है बांको पायतन साफ करा भी कमान बांक आगे नाला का कोई माटी है कोई ढीरो उड़ गया है कोई सनी हो बांसो है बने नाके करा। दूसरी बात आप ये बात को ध्यान रखा कि जो भी आपने खेत में कुंड बनेड़ो है भी को पायतन की शौक है पायतन में कौन से ना कह मैंने पानी जा रही है कौन से कुंड जा रही हो त्रेड़ चल रही है बी की मरम्मत के एकदम से बढ़िया करा। दूसरी बात देखो भी कुंड है ना अपनो भी को ढक्कन है अब आते जी हमारे बात करी के कुंटी पाता लगावा
1: कुंवाड़ी
0: ने जरूरी देखना है क्योंकि वो आपने एक यहाँ को ढक्कन है जो खेत में कुंड बनाई है तो आप पानी काट के बिना बंद कर दिया जी हमारे लोग कोई भी कारण में से अगर कोई टूट गयो या गल गयो तो आप भी ने चेंज कर लेवा भी कमान आपने मोकड़ो फायदा यो जा के कोई भी जानवर हो अब जी हमारे खेता में तो बहुत जानवर हो तो बस बचने खातर आपा जकी भी कुंड के चार मेरे पायते ने बाम दाड़ी बढ़िया दाड़ी रखा या दाड़ी मोटी रख लिया तो भी कोई पतली दाड़ी भी लगा रखा व्यवस्था ऊपर कुंड बना रखी है तो कुंड के ऊपर ढकनो है ना वो भी एकदम बढ़िया।

0: होती है कभी कमाई की कोई भी जान माने नहीं पड़े
1: भाई। अब देखो के किसान को तो अर्जुन भाई काम इसी हो है के 365 दिन ही खेत में जानो पड़े
0: है?
1: हाँ। पानी और जो को काम है वो इसी है के चे सर्दी हो चे गर्मी हो चे किसी भी मौसम हो पानी तो देखो चाहिए। पीण खातर भी चाहिए, कुरला करने खातर भी चाहिए, जे आप भोजन पानी करा कलेओ करा चाह पानी बनावा तो पानी चाहिए।
0: पानी चाहिए।
1: अब पानी की शुद्धता जकी है ना बात जरूरी है। अब क्यों हुए के खेतांग माज का जहरीला जीव है वह बिलांग मा बढ़ेड़ा रहे तो बीम शिवकली भी हो सके गीचड़ गाओ बीचियो है कंसुल हो गयो सांपला हो गया गोयरा हो गया पाटड़ा गो होगी सियार होगी तो ए ई प्रकार का जीव हो के नालो खुलो हुए में जब ए यहाँ देखे के कोई सुरंग बनेड़ी है
0: हाँ। आपको अब भाई
1: थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा दिए में के मामलो
0: के मामलो है हाँ।
1: अब कया ने आगे नाल में बच गए नीचे देखे हैं जब पानी के मामा फोटो दिखे है जो फोटो दिखे है जब यहाँ विचार करें कि मड़ो एक
0: अपा हाँ दूसरा और कटवाया है
1: और दूसरा जो आंख काट है अपने का नहीं
0: वह
1: कोया फेर के देखे न जब पानी के मां कोया फेरे भी दिखे का अच्छा वो अपने का नहीं कोया फेरे वह सर के आगन पड़े
0: कूद के पड़े
1: हाँ। अब दुबा की कूदे वह सीधा आगे कुंड का मां पानी के मां जाके पड़े
0: आगे पड़े
1: अब की है जी आप दो दिन कुन गया पांच दिन कुन गया खेत में कुंड को कुआड़ियों खोल के आप संभालियो को नहीं तो ए जहरीला जीव का ही ए पानी के मां सड़ जा और बाके शरीर में जितो ही जहर है वो पानी के मां मिल गयो और मान लियो आपने घर कोई जरूरी काम और आप 10 दिन में कुंड ने खोल के संभाली को नहीं अब वो पानी तो खराब हो गयो। अब आप पानी लाने गया और बाल्टी में देखो का बांध के जेवड़ो और पानी काट के गड़म गाल के डेरा ले गया और पी लियो तो भी उनके कई बार बहुत बड़ो नुकसान हो जाए। अब वे जीव बन तो बेरो को नहीं तो ई खातर नाला जगह होने बांके आगे पतली जाली जकी है ना बस जरूर लगानी चाहिए ताकि ऐ प्रकार का कीड़ा कांटा जगह ही जहरीला जीव जगह ही ऐ पानी के मां पड़ के पूरे पानी ने खराब नहीं करे। अच्छा कुंड के कुआड़ियों ही खातर जरूरी है के इके अलावा देखो के अब देखो जंगल जुको है तो रात भी रात देखो के रोजड़ा जगह ही या रोज का बच्चिया ही
0: है
1: खरगोशिया घनाई हो रही है अपने हिरण घनाई हो रही अरे लूकड़ी कुत्ता बिलार बोट बिल्ली थे जानो के
0: घने जानवर है
1: अनेक प्रकार का जीव जगह है रात ने भी के खेतांग मा इन्हें भी ने विचरण करता फिरे। अब मान लो अंधेरो है कुंड को कुआ टूटेड़ो है या ढकेड़ो को नीर कोई एक दूसरे के गैल भाजतो है अर मान लियो कुंड का मां पड़ गयो तो वो तो गयो
0: काल से
1: तो मरना ही पड़सी। अब बीस यूं क्यों हो गया आपने जो कुंड भरेड़ो मीठा पानी का वो देखो खराब हो गयो। अब कद हो जू बिन साफ करांगा कद में आओगे जब जाके और आपने बा
0: तैयार हो गया
1: पानी और काम है वो फेरू जच्चे।
0: तो
1: ई खातर ई टेम की ऐ छोटी छोटी सावधानी वे आपां राखनी पशुधन के राखे बिना अर्जुन भाई आपनो जो को किसान हो ने भी को काम है जो को चले को नहीं। पशु पालन का ही टेम कमा इशा काम है तरीका करना नो चाहिए के भी रोज के देखो के 2 रुपये की प्राप्ति
0: हो जाए नगदा
1: होती रहे। आपा भी आई चावा सरकार जकी वे भी आ चावा कि भाई किसान जो को है भी के किने न किनो 2 रुपये की प्राप्ति जकी है बा होती रहे तो भी के जीवन में ही उदासी जिकी है ने बा नहीं आवे भी के मन में वो विचार नहीं आवे के तड़के छोरा की फीस जमा करानी है स्कूल खुलेंगी और पिछड़ा कठोल्या से आ गए
0: हाँ।
1: भाई वो भी तो इंसान है
0: सही बात है
1: और आज को टेम जो है वो आर्थिक युग है पूरे दिन पिसा चाहिए कदे क्या का तो पशुपालन जे आपा कर सिया तो सबसे बड़ो फायदो तो वो है कि आपने परिवार में जितना ही मानस है वाको स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया रहे। क्यों के बान छान दही घी चीकनो जो है पूरा सारो टेम टेम पर मिलसी।
0: और दूसरी बात अगर कोई अगर दिनो है
1: हाँ।
0: अगर वो अगर आपा घर का मन रखा तो बिगी गोपाल भाई ओड को नहीं हुआ
1: कोनी होवे
0: क्योंकि आपा ने बेरो रे आपनो पशु है आपा इन के गालियो है के कोनी गालियो
1: हाँ।
0: कौन सी नस्ल को है कौन सी कोनी बीमार हो कोनी हो बिको आपा ने सामने रहवे
1: ठीक बात
0: भी आपा अगर कोई दूसरे से लावा तो आपा नहीं कोनी बेरो पटे के वो पशु किसी है बीमार हो कोनी हो एक कोई टीको लागेड़ो है कोनी सगड़ी चीज अगर आपा कोई बाई चांस अगर अपन कोई कह भी दे कोई दे दियो के भाई दूध में बढ़िया को नहीं आयो तो वो ये आई बात कैसी कह देखो के ताजा बैडी है या तो कैसी या फिर कैसी का मेथी दे रही आ को कह के मारो पशु बीमार हो रहे तो सबसे मोकड़ो फायदा वही हो जा आपनो अगर घर को पशु स्वस्थ है तो आपा भी सागे स्वस्थ आ गए
1: भाई बात तो देखो थारी सियाणी है एक आप भी अर्जुन भाई देखने का मावे के जुको बढ़िया पशु हो सी बिन बेचनो कम चावे
0: कम चावे
1: हैं
0: हाँ।
1: कोई न कोई पशु को मां खोट हो सी ने
0: जल्दी बेचनो सी
1: भी पशु नहीं किसान है जो बेचे वो बेचे को जदे बी की तारीफ करेगो
0: तारीफ करेगो
1: हैं
0: हाँ।
1: अब वो आगलो ले गयो और बी के सामने तरह तरह की समस्या आवेंगी वो तो दूध कम दे है वो तो लात मारे है वो तो उछले है वो तो बछड़िया चुंगावे को नहीं वो तो दूध ने चढ़ा जाए तरह तरह का प्रश्न होवे
0: हाँ।
1: अब वो पहलो किसान जद भी मिले जब वो कहेगो भैया एक बार जगह बदली हुई है
0: हाँ। खुंटो है
1: पशु जो है ने वो अनसन्नापना करे
0: करे
1: ई खातर थे मने दो मने भी ने थारे खुंटे पर वो जद हिल जी सी ने तो भी के बाद में एज की थारी समस्या थी बताई ने एक कोनिया पने जको पशु बेचे को किसान चाहे गाय हुए भैंस हुए बकरी हुए वो भी में कोई प्रकार को खोट है ने
0: बतावा
1: तो वो बतावे
0: बतावा नहीं।
1: अब जे आपने पशु अपारा कार चाहे कोई सी नस्ल को पशु हुए और बिन जद आप पिचास राखी अर बी की नस्ल जिकी है आगू आ गए कि आप बढ़ाता जा बोगरा ने तो सबसे बड़ो फायदो वो ये आपने पशु खरीदनो कौन पड़े है अब आज को टेम इश्यू अर्जुन भाई का थेपड़ी जकी बे भी मोल बिके
0: मोल बिके है बिके
1: छाना जकाई बे मोल बिके आगे सियाड़ो आवेगो तो भी सगड़ान सी है
0: हैं
1: हाँ। अब छा भी के लागी दही भी के लागो घी एज को देखो के
0: मिले ही को नहीं
1: हाँ। मिले तो महंगो मिले हैं नयो पशुधन जो आपने घर तैयार हुआ कदे कोई आंट अट भी है दो पिसाई की जरूरत होगी पशु जिया ज्यादा हो गया तो बा मुझे आप दो पशु बेच दिया तो एक तो पशु हल्का हो गया ज्यादा नहीं समझते एर पिस्सा जगाई में आत्मा आ गया
0: कोई काम हो काम
1: कोई अड़ी हुए तो वो आपने देखो कि बाड़ी निकल गया है बिक के अलावा अब किसान है जो खेती बाड़ी को काम करे अब खेती बाड़ी के लिए आप देखो कि मोगड़ी खाद चाहिए
0: खाद
1: जब घर आप डांग डोराक से या डेयरी को कोई काम कर सिया तो अपन खाद खातरी ने मिने भजनो को
0: पड़े
1: और साल के मां दो बारी गाड़ा भर भर गेर मोकड़ी जगह किसान खेतांग मां खाद टेक गए तो पा खेतांग ये रंगत जकी है वह न्यारी रहे
0: हैं? और इसे दूसरो फायदो ओ जा मोकड़ो फायदो जैसे कि आपने जिया मान लो कोई डेयरी कर रखे आपा बोले पशु राख रह गया तो जितनी आपा ने खाद सी ने बीती आपा राख लिया बी के बाद में अगर आपा खाद ने बेचा तो बी को भी देखो आमदनी हो जा क्योंकि आपा हर प्रकार के तरीके से भी ने बेचेगा आपा जैविक खाद बना के बेचेगा या बार थे बात करिए के थेपड़ी बेच दिया छाना सुखा के बेच दिया हर चीज का मायने अगर नया नया उत्पाद करा कोई भी चीज को या दूध का नया उत्पाद करा तो इका बहुत व्यंजन बने तो बंग अलग अलग अलग आपने रुपये मिल सके
1: हाँ।
0: जी आपने खाद हुई तो खाद भी देखो जैविक खाद करा लिया एक तो और एक भी सीधी खाद करा इन तीन प्रकार बांट देवा तो तीनों प्रकार का अलग अलग रुपये मिले आई कोई जरूरी को नहीं कि आई रुपया मिले बी के बाद में जो भी आप पशुधन रख रहा कि तो बी की नस्ल है आपने ई बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपनो क्षेत्र है आपने जलवायु है एक मायने कौन सी नस्ल का पशु आपने ज्यादा लाभकारी है कौन सा को नहीं हुआ तो आई बात को भी आप ध्यान रखना बहुत जरूरी है
1: भाई ध्यान रखा अरबी के साके साके देखो कि आजकल गांव में भी पशुओं का ओस डाले जगाई ने
0: हाँ
1: वे भी मोकड़ा खुल रहे और पशुओं का डॉक्टर जगाई वे बटे देखो के रम
0: हाँ
1: तो बाकी राय लेके भी आपने पशुओं संबंधित कोई भी बात हो ने
0: बा
1: पूछ के अरबी के बाद में आपन काम है जो करना चाहिए क्यों कया करने ने के सूझे ना हूं
0: बुझो
1: ठीक रहे खुद ने डॉक्टर जो है वो नहीं बनना चाहिए
0: हाँ,
1: हैं
0: हाँ,
1: अब जक्का रेवड़ रखे गांव में
0: हाँ,
1: अब बकरी जी आएगा साल में दो बार भी आवे,
0: दो बार भी आवे,
1: दो दो तीन दिन बच्चिया ले आवे हैं। अब बाकी एक तो देखो के जगह बाल है भाई बिके
0: बिके
1: हैं, बकरिया को जो घर जी रखा बाज या सिरोही नस्ल की जी बड़े कद काठी की बकरिया आवे तो बाकी दूध भी चोखो है,
0: दूध भी।

0: बकरी को दूध जो है वो एक तो जगह नाना टाबड़िया ही बह एक बुजुर्ग जगह
1: माइत है
0: वहां के लिए बहुत जोर की दवाई को काम करे
1: दवाई को नहीं रामबाण को काम करे
0: हाँ फोसरो है
1: फोसरो है अड़को है
0: गुणिया हुए और डॉक्टर जगह भी बतावे कि भाई जी हाँ छोटा टाबरा ने बुजुर्ग जगह हुए वह ने जी हाँ बकरी को दूध खाने वास्ते मिले ने तो वहां को स्वास्थ्य जो है बहुत बढ़िया रहे
1: बढ़िया रहे
0: बच्चिया जगह आए तो भाई देख लियो ते मने दो महीने भी बड़ा हो जाए
1: बड़ा हो जा
0: जे बेचा तो आजकल देखो कि पिसा मोकड़ा है
1: मोकड़ा मिले था
0: अब एक बकरी साल में दो बारी ब्यावे और दो दो बच्चिया भी लिया तो चार हो गया
1: चार हो गया
0: अब जे बम बकरी है जो तो बिने तैयार कर लियो
1: तैयार नहीं ना
0: बड़ी हो जी सी है
1: हाँ।
0: बकरी है तो बान बेच दियो बिया पिसा बढ़ जा
1: बिया पिसा बढ़ जा
0: तो कुल मिला के जो पशुपालन जो करना रो काम है ने वो फायदे ही फायदे को काम है
1: फायदे फायदे
0: हाँ, अब कोई नुकसान की किन्ने कोई गुंजाइश ही
1: गुंजाइश को नहीं
0: हाँ।
1: दूसरी बात जहाँ बार बात कही थी कि बकरी है भी एक चार चार किसान छह यहाँ मान लो 20-25 बकरी हो जाए
0: हाँ।
1: तो वो रेवड़े रेवड़े टाइप हो जाए
0: हाँ।
1: अगर आप यहाँ मान लो कि रेवड़े के टाइप हो जाए तो अगर आप बाकी मींगनी बेचा तो बढ़िया रुपया उठे क्योंकि जबकि बकरी की मींगनी आना है
0: हाँ।
1: बा खेत ने 3 साल तक लगातार उतरण को दे
0: कोने उतरण दे
1: क्योंकि एक मानी है एकदम से बा एकदम से पिछड़ो है यहाँ मान लो तो भी कमान जब पहली साल गिरेगा तो भी कमाने थोड़ो गुण आओगा दूसरी बार तीसरी साल बाद एकदम गलकी पूरी हो जाएगी
0: भाई कई किसान है जगह तो अर्जुन भाई जगह गर्मियों टाइम में जगह दूर रेवड़ा ने
1: हाँ
0: बन चला के बहके भाई हमारे खेत में पक्को तो आसरो बने हुए कुंड जिकी है वहां मीठे पानी की भरी पड़ी है एर लकड़िया का लाग रहे मिर्डा अरणिया छाणा जगह पे सारे पड़े
1: पड़े
0: चूल्हा का लेड़ा ही आटो मैं थान देते
1: आटो नहीं रोटी सब्जी
0: अटे रोट बनाओ खाओ और थारो रेवड़ जो है वो 5-7-10 दिन हमारे खेत का वहां बैठाओ
1: बैठाओ
0: अब जेब वो रेवड़ जो 150-200 भी मजिया लरड़ी होवे बेड बकरी होवे और बे 10 दिन भी जी रेवड़ भी खेत कमा रहेगी उन्हें तो पूरा खेत कमा देखो बे मींगनी मींगनी हो जाएगी
1: कालो कालो दिखना
0: हाँ कालो अब बे विकी आप बांध कर आशा तो बे सारी सारी जी की मींगनी बे अपने खेत की मृदा कमा मिल जी सी और बा खाद जी की है बा 3-4 साल तक अपने खेत कमा बहुत काम कर
1: सी काम करे
0: हैं चाहे आप खरीफ की फसल बावा चाहे रबी की बावा चाहे जायद की बावा बा मींगनी की खाद है भी कोई मुकाबलो
1: कोई मुकाबलो नहीं
0: तो ये खातर है पशुपालन का तो अर्जुन भाई फायदा ही
1: फायदा है
0: हैं और मोकलो जे दूध दे डांगर डोर
1: तो भी फायदा रहे
0: और माओ काटी की जगह पेड़ा बना लिया कम चीनी का तो थारो यहाँ जी कुन करेगा खान खातर
1: ये बात करो मैं पानी आ गयो
0: ने
1: हाँ।
0: तो बे पेड़ा भी देखो के दूध का ही बने
1: दूध का ही बने
0: ठाटा ठाटा बना के बीच में करके खाडो और इलायची का दाना कूट के फोड़ के रिबिंग वहां थोड़ा सा घेर के गुंठक दे दिया जोर है अब कोई टापर को काम कराना हुआ है या और कोई काम कराना हुआ है तो भाई पेड़ी जगह थाली में गाल के दिखा दियो क्या भाई अभी तो ताता है तू फलानो काम कर यार आता ही देखो 5 पेड़ा
1: पक्का
0: जाऊंगा
1: हाँ।
0: वो दड़ाई छंट जैसी गाड़ी की तरिया
1: हाँ।
0: और वो काम फटाफट क्यों भी ना पेड़ा दिखे
1: है
0: तो पशुपालन का तो देखो के फायदा ही फायदा है जीवन को वही आनंद है क्योंकि ए मूक प्राणी तो ए आपा देखो के कदे बोल के तो देखो कहीं को
1: नहीं
0: है हाँ। पण आपा पशुआ ने कहे जीता राजी रखांगा और जीता निरोगा रखांगा ने भी तो ही पशु जो है वो रखे कोनी जी आप प्रकृति है जी कोनी रखे ने बाकी उनको बढ़ा के दे पशुधन जगह मूक प्राणी बोलने को नहीं पण ए भी आप आगी जितनी खेचल करा खाने पीने की जितनी व्यवस्था करा बिना देखो क्यों ज्यादा ही आपने दे और दूध जो है भी का देखो कितना प्रकार का व्यंजन बने जगह आपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही देखो उपयोगी हुए तो एक खातर बात तो जितनी पशुआंगी आप करांगा बीती
1: थोड़ी है
0: पण एक लोक रचना देखो के श्याम बाबा की भवनलाल सोलंकी की आवाज में किसान भाया ने सुना दिया
1: देखो सुना एक लोक रचना
2: ये सखी खाटू के वो सखी

0: अर्जुन भाई, अभी आपां भंवरलाल सोलंकी और साथियों की आवाज रमाए लोक रचना किसान भाई सुनाई श्याम बाबा की। और अब देखो के कार्यक्रम के शुरुआत माते भी आपां थोड़ी चर्चा करी के असल हम देखने का मावे के मौसम जो है वो धीरे धीरे बदल रही है
1: हैं?
0: और बदलने को कारण भी देखो के मानसी है
1: मानसिक कारण,
0: क्योंकि अपा घर में भी अक्सर कई बार बातें कह करा के ज्यादा पढ़िया लिखिया कई बार बावड़ा हुए
1: है
0: क्योंकि वे ज्यादा सियाणप दिखावे और बीहू की है के खेलो है जो को खराब हो जा
1: हो रही है।
0: अब सन बेरु है के जिकी धरती है एक ऊपर 33% वन जगाही या घना जंगल जगाही वह होना जरूरी है प्रकृति के संतुलन के लिए, चाहे वह पर्यावरण की दृष्टियों देख लियो, चाहे इंसाना की सूक्ष्म हृदय की दृष्टियों देख लियो, चाहे जैव विविधता को जो को चक्र है भी की दृष्टियों देख लियो, के जितनी भी धरती है भी को 33% हिस्से पर है और पेड़ पौधा होना जरूरी है। अब अपन सन बेरु है के शहरीकरण धीरे धीरे बढ़ रही है भाई, जनसंख्या जिया बढ़ रही है तो भी मकाना की भी जरूरत पड़े है। रेलगाड़ी पहली एक ही लाइन होती है, अब दो तीन तीन लाइन
1: हो रही है।
0: सड़क पहली की है के एक ही होती, पतली सी लीकटी सी गाड़े की लीक हुए बिसी
1: होती है।
0: अब आप इन्हें मैंने जवा देखा कब सड़क जगह चार चार छह छह लेन की हो रही है, जगह साधन जुकाए वो भी आ गए देखो से दौड़ सी मचरी है अब ऐसे बने, चाहे रेल हुए चाहे सड़क हुए चाहे मकान आप बनावा, अब भी की सीध में जगह पुराना दरख्त जगह 20-30 साल पुराना है और बन काटना पड़े भी की एवज में एक बार नाके किए गए कोतली हम ले आके आप वर्षा हुए भी दौरान है एर मादर कतान लगा के जाल लगा मेरे फोटो खिंचा के अखबार में छपा दे भी के बाद में जय श्री आराम
1: संभाले ही बने।
0: अब थे जानो के जको दरखत 20 साल गैर बिना पा मशीन आधी घंटा को मां ढा दियो
1: आधी घंटा लगे ही को नहीं।
0: अब बताओ के वो जो को काम है वो कहीं चले को है तो ई खातर के आपने इस चीज पर विचार करना चाहिए के भाई जका पेड़ पौधा लागेड़ा इन्हें बन तो अपन काटना को नहीं, और जगह पौधा ही बन अपन लगाने को जो काम है वो अपन करना चाहिए, क्योंकि पौधा जगह ही अपन ऑक्सीजन गैस की है वह मिले है, छाया भी मिले, लूंग लकड़ी भी मिले है, फल जगह वह भी आऊ मिले है। तो अब थे जानो के जगके चाहे वो साधारण पौधो हुए चाहे फलदार वृक्ष हुए, बिन तैयार करने में बड़ो करने में कीती किसान की मेहनत लागे और बिन आप 5 मिनट में ही सोच विचार करे बिना ही लटका दिया, देखो बहुत गलत बात है।
1: देखो ये गोपाल भाई है कि जहाँ थोड़ा थोड़ा अगर आप सुधार चाहवा तो जी मान लियो आपा कोई मकान बनायो आपने मकान का के कोई पेड़ है तो आपा ये देखा के भी पेड़ से 5-10 फुट आगे पीछे के लिया, अगर वो एक तो वो तरीको है इन आपा बचा लेवा। दूसरा तरीको ओ है के जी भी आप भी पेड़ काटा भी से पहली साल 2 साल में पहली यह योजना बना लियो के वो पेड़ तैयार हो गो के साल को 2 साल को तैयार हो गयो अब वो कट्ठी को जावे तो भी पेड़ न काटो। ओ तरीको अपना जी मान लियो के जगह रोड पर चल रहा है सड़क पर चल रहा जगह पेड़ आ बन काटे तो अब मान लियो के जखन जिम्मेवार आदमी छोड़ो के भाई ओ तुम 20 पेड़ काटे तो ए 20 पेड़ ई रोड के ऊपर अत्ता होना बहुत जरूरी है, जिम्मेवार दे दे के भाई तेरो क्षेत्र है तू तैयार करेगो
0: सही बात।
1: तो वो मोकड़ो फायदा आपने सागे हो जाए क्यों पी के बाद यहाँ देख लिया के भी चलो आपने मकान बनाना है जगह अपने थोड़ी कम है तो चलो पेड़ काटना पड़ गया मजबूरी में, तो आपने जो खेत है जो कोई बाड़ो है दूसरो नोर है भी कमाई नहीं बगैर आप पेड़ लगा सक आज जरूरी को नहीं कहा आपने जगह फल का नहीं लगा था आप दूसरे लगा नीम है टाली और क्यों लगा लिया, लेकिन जट्ठे भी आप पेड़ काटा भी के एक पेड़ के जगह अगर कम से कम 2 पेड़ तो आप लगावा ही लगावा भी कमाई ना आपनो ओ जा के आपने स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़े आपने प्रकृति भी पड़े पशुधना पर भी पड़े। अब कई बार जावा शहरा में जावा दो चार दिन जावा कोई कहीं घूमने के रह के आवा
0: हाँ,
1: तो छात पर सो जावा तो दिन के उठा तो देखो के मुंडो कालो हो जा क्योंकि बठे यहाँ को धुआं हो रहा है झुको कोई पेड़ पौधे के ऊपर कौन चिपे बहुत सीधो आवा।

0: क्यों, बट पेड़ पौधा है ही कौन।
1: गोट बंदरी है,
0: हाँ
1: गोट बंदरी है प्रदूषण के कारण है। प्रदूषण जो को है इन खत्म पेड़ पौधा करें, हैं जट्ठे ज्यादा हरियाली होसी तो बटे एक तो क्या लोगों को स्वास्थ्य बढ़िया रहसी, क्योंकि बटे के वातावरण में ऑक्सीजन गैस है भी की मात्रा ज्यादा रहसी,
0: ज्यादा रहे।
1: अब ऑक्सीजन जितनी शुद्ध मिलसी आपने शरीर ने बीती देखो के आपने स्वास्थ्य बढ़िया रहसी है। हरियाली जड़े ज्यादा होसी बड़े बिरखा ज्यादा
0: होसी,
1: बिरखा होसी पीने पानी मिलसी आपने खेती बाड़ी का काम जगह बढ़िया होसी, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया रहसी। तो ई खातर पेड़ का हरियाली का तो फायदा ही फायदा है,
0: फायदा
1: गयो भी गयो है। हाँ। अर्जुन भाई के धरती के उपहार पेड़ हैं,
0: हाँ।
1: धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। पेड़ पौधा देखो अपन विनम्रता की जो को पाठ है ना वो भी पढ़ावे के जीवन में जो को आदमी झुक के चलेगो, विनम्र होके चलेगो, सगड़ा का सागर रल मिल के चलेगो, भी को जीवन जो को है वो एकदम आनंदमय तरीको गुजरेगो, और जो को एकदम बांसड़े तरिया रहेगो विनम्र नहीं बनेगो तो तूफान आवे जो अर्जुन भाई जंगल के मां पहली पोत बह रूख ही पड़े है, और जे काटने की बात आवे ने तो पहली पोत जो एकदम सीधो खड़े हो रूख हो ने
0: भी नहीं काटे,
1: कुआड़ा भी कहीं मारे बांकर आडो टेड हो भी कोई कुन मारे,
0: कोई कुन मारे
1: है। तो ये खातर आ बाता सु आपा ने जीवन के मां सीख जकी है बा लेवनी चाहिए।
0: और एक सागा भी देखो गोपाल भाई जहां आपने पुराना गांव आ भी कोई ढाणी बसाई है कोई गांव बसाया है, तो भी कमाए ने सस्ते तकड़ो या देखो भी कमाने पिपल और नीम जरूर मिलो था, क्योंकि हर चौराहे पर पिपल है हर चौराहे पर नीम, दो जगह दरखत जगह ऑक्सीजन आप देवे
1: बहुत दे
0: बहुत जोर। अगर आप मान लो के कोई आ है के कई बार आप देख लिया के भाई गांव का मान तो पुराना पिपल है 100 साल 150 साल कोई लिखित का पेड़ है जगह मतलब 100 150 साल जाको नहीं
1: भाई है, तो ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री है अर्जुन भाई है। रात दिन देखो लाग्या रहे
0: हैं
1: आपनो जो को जीवन है ने बिन बचाने का वहाँ पेड़ पौधा बहुत बड़ा योगदान है,
0: बड़ा योगदान है।
1: अब ऑक्सीजन नहीं आवे शहर का वहाँ देखो के कई बार जी हाँ वो धूंधार गरिमा मापा देखा सियाड़े में भी देखा मोटर गाड़ी ज्यादा हो जाए तो बट्ठे यहाँ दम घुटन लाग जा
0: दम घुटन लाग जा
1: नाशांग वहां काले धुएं का डुजा
0: हाँ,
1: हाँ। और जटे वातावरण एकदम शुद्ध हो सी जटे आप बाग बगीचा में घूमने जावा तो आख्या से देखता है देखोगे कि यहाँ नई ऊर्जा जगी मिले
0: नई ऊर्जा शरीर में महक आवे
1: और मन के माँ देखो के सुकून मिले, दिमाग जो है वो एकदम यहाँ शीतलता जगी है वह महसूस करे
0: हाँ।
1: तो जीता आप प्रकृति के संपर्क में रह के पेड़ पौधा लगावांगा आकी रक्षा करांगा धरती देखो हरी भरी बना के रखांगा धरती को आप श्रृंगार करके रखांगा बीतो ही देखो कह आपने जो को जीवन है ओ सुखी तरिया चलेगो और एक सागे सागे देखो कह जगह किसान है बने भी आ एक सलाह देनी चाहूंगा के मौसम जो को है ने वो धीरे धीरे करके अब बदल रही है तो मौसम को जो की मिजाज है ने भी को भी आपा ध्यान रख के और खेती बाड़ी का जगह काम है वे करना चाहिए। हालांकि किसान भाई जगह ही वे मौसम के मिजाज के हिसाब देखो के नवाचार जगह ही वे खूब कर रहे हैं और अपने इलाके में नवाचार जगह कर रहे हैं तो वे देखो के बंक सफल भी हो रहे हैं अर्जुन भाई मानु स्वभाव है के नयो कोई भी काम आपा चे घरा करांगा नयो काम तेवड़ांगा ने तो मन के माँ के तरह तरह का ख्याल आऊंगा प्रश्न आऊंगा हो जाएगो बिया हो जाएगो जीते वो भय नहीं निकलेगो भाई हबुआरी सी बात है
0: हाँ।
1: दादो जी कहा आपने बापू जी डराता बोले छोरा बदमाशी करेंगे तो अबू खा जाओ है अब बापू जी जगह आप डराया बोले बदमाशी कराया बोले भी साल का माँ अबू है लिया रहा
0: पकड़ के
1: अरे का कान में गाल दे अब देखियो कोई को नहीं
0: कोई को नहीं
1: पर भी अबू को डर जो को भय है ना वो आज भी कायम है। अब आप जगह छोटिया टाबर में बांध रहा वहाँ बदमाशी करे बिना ना जाये अबू खा जाओ अभी के बाहू तो वो अबू जो है वो कितो बड्डो है कालो है

0: पीलो है मोटो ताजो किए कि नहीं बेरो को
1: नहीं कोनी बेरो
0: पर वो भय
1: भय
0: तो ई खातर नयोजित आपा काम करा जे मानुष स्वभाव है तरह तरह का जगह ख्याल प्रश्न जगाई बे आवे पर जद वो काम आपा कर लेंगा ने जद बे शंका दूर हो जाएंगी तो भी आपा के एक आगे जल्दी बढ़ांगा
1: बढ़ा दिया और एक साथ अब भी देखो गोपाल भाई के जिया कोई भी काम थे उड़ियो आज कल मौसम का आधार है यहाँ को हो रही है आपने दिखाई हुई कृषि विशेषज्ञ वहां से अगर आप राय ले लिया भी के अबार के इस टाइम के मौसम रहेगो इतना मना में रहेगो तो वे अपन लगभग आइडिया बता दे के भी आ वो मौसम हट तक यहाँ रहोगो हर प्रकार भी का आधार पर अगर आप जो कोई भी खेती बाड़ी है वाह करा जहाँ कई बार आप यहाँ देखा अबार के मौसम का आधार शुरू में आप बात करी डेयरी की बात करी तो भी यहाँ भी पशुधन को भी कोई काम करा तो भी मौसम के आधार पर करा जी हमारे आपने गाय है भैंस है बकरी है अबार बरसात हो रही है तो बगैर आप बने मायने नहीं बात आप देखो नुकसान हो सके
0: अर्जुन भाई ते हैप करोगा के मोबाइल के माए एड़ा एड़ा ऐप आ गया मौसम जुड़ेड़ा है तो वे हट तक बतावे लगा के फलाने गांव में कितना बज के इतना मिनट इतना सेकंड पर छांट इंच की पड़नी चालू हो जाएगी
1: जाएगी हाँ, हाँ।
0: बताओ कितनी जोर की बात है
1: जोर
0: है पहली जो मशीन को नी जदा बताओ बेरो कुन लागतो आंधी चूड़ा आवेगा ओड़ा आवेगा मोबाइल पर मैसेज आ जाए पहली
1: आ जाए
0: हैं कि भाया चेतो कर लियो कठे कोई डक्का डुमो बाकी है खेत में कोई इशो नुकसान होना रो काम बाकी है तो वो अपन टेम पर पूरा कर लिया
1: हैं
0: हाँ तो ई खातर देखो के अब ई तरह का उपकरण भी आ गया तो पीछे की है के किसान का सुबी तो मोकलो हो गयो है और आंको देखो के फायदो जो है वो भी किसाना ने उठानो चाहिए
1: उठा रहे भी है
0: हाँ तो बातचीत तो अर्जुन भाई आपा और भी करांगा
1: हाँ।
0: अपना जगह किसान भाई बे के थक्या आ रहा इतारा आवे तो बान देखो के मनोरंजन जो है
1: बहुत जरूरी है
0: बहुत जरूरी है तो अन सुनावा आपा पप्पू मस्ताना की आवाज रमाए एक लोक रचना
1: सुनावा सा।

0: बीरा महारा राम देवरे बाई ने एकर लेवना पप्पू मस्ताना और साथियों की आवाज रमाई या लो कृष्णा अपा किसान भाई ने सुनाई। और अर्जुन भाई देखो के जे बाजरी की बात नहीं कराने तो अपा असली किसान को नहीं
1: कौन नहीं है? बात खरगरी हो अगर कोई चीज अपा ने देखी जरूरत पड़े ने
0: हाँ।
1: अगर अपा थोड़ी सी चला के कोई बात कर लेवा ने तो वो बात में के थोड़ा सा मोटापन आ जा।
0: भाई बाजरी जो अनाज है इसमें ताकत ज्यादा हुआ
1: ज्यादा हुआ
0: और किसान का काम है जगह सारा मेहनत आ रहा है
1: मेहनत आ रहा
0: है तो इस खातिर पहली तो छठ बारह में नहीं बाजरी खाया करता
1: बाजरी खाया करता
0: है पर धीरे धीरे धीरे धीरे करके किएगा बाजरी खानी कम कर दी और गाँव में तो अब शहरा की तो बात ही छोटो गाँव में ज्यादातर घर जगह सियाले में तो कोई मने डेढ़ मने जे बाजरी की रोटी बनावे या मिसी रोटी बनावे तो बात दूसरी है नहीं सगला गेहूं का गैल पड़ गया जूती खोल गई।
1: देखो इमें गोपाल भाई होगी के से आजकल है रे यहाँ मान लियो के गैस के कानी चल गया और देखा चूल्हा पुराना बना था कि अरबो गैस रख दियो तो गैस के ऊपर वो बाजरी रोटी पूरी सिक्का भी कोई स्वाद को लगे।
0: भाई शहर में आ बात कह जाए तो की अर्जुन भाई जत
1: जावे
0: अब गाँव में किसाना के खेतों में जाट मोकड़ा ही
1: घड़ाई है
0: छंगावा तो मिर्डा जगाई में खेत में लग रही है लकड़ घड़ाई आडा टेडा कोई डालिया सुकेड़ा जगाई में लठ कटा गिर घराजिया पाड़ गिर रख लियो है पशु दिन रखे तो थेपड़ी छणा आरिया छणा जगी खेतों चुके लिया में घड़ाई घर घर का मां बटोड़ा लाग रही है अब चूल्हो जगा गिर बिकुपुर जिया सब्जी है या रोटी जगी आप अग्नि पर तैयार करांगा ने बीको अर्जुन भाई कोई मुकाबला
1: बहुत जोर
0: हाँ बीको आनंद न्यारो है और गैस पर जो भोजन तैयार हुआ को ने भी मैं वो दम है जो रह को नहीं
1: रहे को नहीं
0: है तो ये खातर है गर्मिया गमा जी आप खट्टा राबड़ी खावा
1: हाँ।
0: जिस दिन में दो तीन बारी आप राबड़ी जी खा ले तो डील है जो
1: ठंडो रहसी
0: लोग को लागे नींद सही आवे हाजमो जो है वो सही रहसी ज्यादा नहीं जचे तो कम खा लियो भाई बाजरी की रोटी चार खानी जरूर थोड़ी एक खा लियो बाकी की वही खा लियो
1: हाँ।
0: या फिर यहाँ कर लियो मिसो आटो मिला के गिया को और बाजरी को बी की रोटी बना के बा खा लियो पने कहने मतलब वो है के थोड़ी बहुत बाजरी जी की है बा चाहे कोई रूप में जा पेट का मां जानी चाहिए बीस यू कह गए शरीर में ताकत आवे शरीर है जो निरोग हो रहे और छठ बारह मना जी आप कणक ही कणक खावाने तो कणक की तासीर ठंडी हो अब आप जने जने बुझा कभी शुगर होगी तो इम देखो के कणक को भी योगदान है
1: योगदान है
0: क्यों के कणक की जगह फसल है भी कमा रसायनों को इस्तेमाल हुआ मोकड़ो है दवाई टेके उत्पादन बढ़ाने के लिए पर बाजरी का माँ जगह अड़गा इन्हें बहुत कम हुआ है तो शुद्ध चीज है।
1: एक मान गोपाल भाई यहाँ देखो के कोई देखा का कई बार आपा यहाँ देखा का भाई आपा ने मन ने भी दिन जहाँ मान लो गर्मी की बात करी कोई कहे के भाई गर्मियों का मैंने बाजरो गर्म करे अगर आपा रोटी नहीं बनावा ने तो भी की कुटा राबड़ी बना लियो बहुत स्वाद लगे इस टाइम
0: सही बात है
1: तो भी मका लियो आपा राबड़ी बना लियो अगर आपा नहीं देखे कभी आपा ओ क्यों तो भी

0: थोड़ा बहुत कोई व्यंजन अलग टाइप बना लो, पर खाना जरूर चाहिए। पहले आप बुढ़िया कहता के मोटो खाओ और मोटो पहनो, आ है के मोटो धान खाचो ने तो थाने देखो मोटो कपड़ो पहनो पड़ती, क्योंकि शरीर में ताकत आसी, शरीर में ध्यान आसी। आजकल तो के देखो सुबह भी फलका शाम के भी फलका, और कई बार कुआवत भी कहते हैं मुंडो भी फलको सही हो रहे, क्योंकि ताकत है ना।
1: खाना वो विषय हो गया अर्जुन भाई, तो देखो गेहूं में इतनी जान को नहीं हुआ,
0: जान को नहीं
1: हुआ, पर ठीक है गर्मी के टाइम में जहाँ गर्मी तासीर हुआ है बाजरी की, तो गर्मी में गेहूं खा लियो कोई आंट को नहीं,
0: कोई आंट को नहीं।
1: पर जी यही किया के वर्षा की टाइम चालू हुआ है, धीरे धीरे ठंड चालू हुआ है, तो पांच दिन का वहां पर देखो के जी बाजरी है वा खानी चाहिए, कोई कोई रूप में खाओ, जो गोगरी बना के खा लियो
0: ये दिक्कत है,
1: राबड़ी बना के खाओ, मिस्सी रोटी खाओ, एगली रोटी बना के खाओ, पिंडिया बना लियो, मुठड़ी बना लियो, चूरमा बना लियो, खुरमला बना लियो, हलवो बना लियो, बिस्कुट बना लियो, थे जानो का आज केरो कितने प्रकार का व्यंजन जगह बाजरी का बने लगा अलग अलग रूप में, कि भाई कोई की लालचू खा ले, कोई की लालचू खा ले। तो आपने तो एक कहना है भाई देखो बाजरी को कोई मुकाबलो को नहीं,
0: मुकाबलो को
1: नहीं, बाजरी जो खासी वो आदमी निरोगो रहसी,
0: निरोगो रहसी,
1: बीका शुगर को नहीं होवे, और जक के डील में जान रहसी ने बीको देखो के जीवन को आनंद जो है ने वो न्यारो रहसी,
0: न्यारो रहसी
1: है। और नहीं देखो के आजकल तिवाड़ा आवे हर कड़े चक्कर खा के पड़ जाए,
0: वेरी
1: गुण पड़े, वेरी
0: गुण पड़े,
1: दूसरा इन जगह भूखियो पकड़िए ठावे है, क्योंकि शरीर जगह कमजोर हो गया,
0: कमजोर हो गया।
1: तो एक खातर अपा तो आई कहंगा के ज्यादा ज्यादा अपने जीवन के मा अपनो जो को आहार है पिग मा बाजरी जी के एबी को थोड़ो बहुत जो को इशो है वो होना जरूरी है, और बातचीत अपनी जारी पने किसान भाइयों को मनोरंजन थोड़ो और करा दिया और बान सुनावा सुजान सिंह खींची और साथी की आवाज में या लोक रचना
0: सुनो सा।

0: सुजान सिंह खींची और साथियों की आवाज रमाए अभी आप या लोक रचना किसान भाई ने सुनाई। और देखो के आपने जो कार्यक्रम है खेती और गृहस्थी वो 28 तक है ओजू मिलने तक गोपाल भाई ने
1: और भाई अर्जुन ने
0: देव सीख करा राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आकाशवाणी के चूरू केंद्र से सुन रहे हैं। और चूरू की अगर बात करें तो इस समय मौसम आंधी वाला हो रहा है, आंधी बारिश तेज हवा हो रही है और मन में एक ही प्रश्न आ रहा है, एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, बावरी सी तू यूं फिरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और पहला गीत बेमिसाल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

फेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, बेमिसाल फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। और जब बात हवाओं की हो, आंधी की हो, तो हिंदी फिल्मों में बहुत से गीत इस पल के लिए बने हुए हैं। और आज तो मौसम भी ऐसा बन पड़ा है हमारे आकाशवाणी के चूरू केंद्र में, यानी कि चूरू जिले में, और बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनने को अभी मिल रही है। तो जब बादलों की गड़गड़ाहट हो, तो इसके लिए भी एक गीत हमने अपनी लाइब्रेरी से खोज निकाला है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति की ओर। जान की कसम फिल्म का यह गीत अब आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की युगल आवाजों में।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अरे ना ना ना ना ना ना ना ना। श्रोताओं, फिल्म संगीत की प्रस्तुति इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चुरू केंद्र से। नमक हलाल फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति गुलदस्ता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। इस बार हमने लिया है ये गाना आशा भोसले और अमित कुमार की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम अफसाना प्यार का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। गुलदस्ता कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं और जब ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, इस बीच में मौसम के हमने बहुत से रंग देखे हैं। पहले आंधी बारिश और उसके बाद बिजली बादल का गरजना, बहुत से रंग हमने देखे हैं और अब जो है वो पानी का हमें रंग देखने को मिला है, यानी कि एक अच्छी बारिश। और अच्छी बारिश के बाद मौसम का एक अलग ही मिजाज, मौसम का एक अलग ही रंग हमें देखने को मिला। फिलहाल फिल्म संगीत में अब अगली प्रस्तुति की ओर लेकर आपको बढ़ते हैं। अगला गीत हमने लिया है विकी डॉनर फिल्म से, आयुष्मान खुराना की आवाज में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

श्रोतम फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गुलदस्ता में अलग अलग प्रकार के गीत आपके लिए पेश कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति।

तो श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार। तब तक बने रहिए आकाशवाणी के चूरू केंद्र के साथ।

0: और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का।
1: टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।

पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में

0: श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, CCTV और आधुनिक निगरानी

0: प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। PV सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू

0: यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate

0: सगळे हेताळवाने भाई किसने कनशू
1: और भाई दुलाराम कने शू
0: मोकला मोकला
1: राम राम।
0: तो दुलाराम भाई देखो के आज की जे आप बात करा तो आज तो मौसम को मिजाज बहुत ही जोर को रहे
1: भी भगत आप मान लो के आथन का सवा 9 बजे बैठा रात के का और चूरू का मां बैठा
0: चूरू में
1: है तो घंटा खंड पहली को जब को सुनटो फंपड़ो फिर में ओ वातावरण है नी ओ कह रहे नी मानसून पहली की जबकि बिरखा है बिरखा को है और ये बिरखा ने देख गे शहर तो देखो कादे में बरीजे बरीजे पने जका खेत है नी बे बहुत राजी हुआ है
0: खेत राजी हुआ है पने बात देखो खेत की तो जोर की खेत देखो आपने भी या तो ई मौसम में आंधी तूफान बिरख्या ए सामान्य बात पर आज अड़ो जो को तूफान हो मन यहाँ लगे कई सालों को रिकॉर्ड टूटे
1: भाई एक मानने चाहिए अटावर जो को पोंदगा जगह फटका रहे नहीं बे एकला चले नहीं जो तो आदि मारो है छांटांगे सागे चले जब दूनी मारो दूनी मारो है और खास करे किसना भाई जका दरखत और पंखेरु है नी बंग मरनो है ने और बंग भी कोनी कई कई बरा हो जाके आपा खुले महा या साहब वहां के टेन है छपरा है और है खुले मोहना है बंग बंग जे उड़ान चल रहे है अरे कुंड से ऊपर आ गया पड़ जा के बेरो पड़े
0: भाई देखो ये स्थिति में तो दुलाराम भाई एक बात आपा कैस का जो तूफान आ गयो और आपा जे घर में ओटे में हार फिर आपा सोचांगा आपनो फलानो सामान वो बारे रह गयो बिन लियावा इन उठावा इन पटका अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा जोर की चीज नहीं है तो बी के चक्रा का मायने शरीर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपा कोई छोटी सी चीज है बिने मायने मिलने के चक्र में बाहर निकल जाए अचानक कौन सो कहीं वो सामान है जो आके सिर के ऊपर पड़ जा कोई टैन है कोई लट है और फिर देखो मिन

0: को भेरवन
1: पड़े। ठीक बात
0: है। सावधानी जिकी है देखो के पहली से राखनी बहुत जरूरी है।
1: भाई आपनो इलाको है नहीं, आपनो इलाको एक दृष्टियों तो ठीक है, देश दुनिया की आप खबर सुना बतलावन सुना जदिया लग है कि आपनो इलाको प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टियों सगलो सुरक्षित
0: सुरक्षित है
1: ने? भी ने तो अठे भूकंप इतना ज्यादा धरती दूजनो जो को सोदो है बहुत माड़ो है दर दर खा गया सगड़ा मकान और सगड़ी पड़ जा किन केक बे आप देखा आजकल ने। दूसरो बाढ़ है भाई आपा मान लिया के पांच दस आंगल में होता है शहर के माज की नाला है बे गली है बे नाला बन जाए है मानस को घर लिकड़नो दूर हो जावे नी। और आजकल तो शहर क्यों गांव भी के कमरे गली है जिकी आपा सगली पक्की कर ली आपने जगह गिनाणी की नहीं जोड़ा बाना पा सगड़ा पक्का कर लिया, तो बा पक्का करने में वही के आधो पानी जो को गलिया में सुस्तो आधो पानी जो को बाखड़ में सुखतो बाड़ी बा बाड़ा तानी की नहीं पानी जानतो बेटे भींत होगी चौकी बाखड़ी बह सगली पक्की होगी बार लिगड़ियो पानी गली सगली खुरा मना मना गया आप पक्की कर दी फिर वो पानी गांव में निवाण में किनी उगाड़ में बीच में जोड़ी होती बैठी जानतो बट जानते जो पांच आंगल दस आंगल पहले मे होते और फिर पांच चार दिन वो बीच में गैप दे दिन तो दो तीन आंगल तो को पानी तो जो सुस जानते जमीन में बो को नहीं रहे हो गुआड में जकी जकी कुइया होती क्योंकि पानी कुइया में काटता आधो पानी है जो कबो बा कुइया मुड़ जाऊ तो है नी भूमिगत जल में मिल जान तो अब हालत रही के कोई मुंदी जगी बाढ़ की जगह आप भिंता कर ली झूंपड़ा छान जका जका बांगे जगह आप छात कर ली तो पक्की छात उतरे वो पानी बो नहीं तो बाढ़ का नहीं चल लगो और नहीं वो बकड़ का नहीं चल लगो और गली में सुसको को नहीं। पहली तो आ स्थिति के आप देखता के घरों पानी चाल गए बारणों बार निकल जाए तो बकड़ पार कर जा तो जद जद घर का कहता है दसे कांगल तो मैं होना चाहिए कि बार करोगे ने यार आज दस आंगल में गए मां उगाड़ जकी गिनाणिया जकी भर जा रही लागे के डूबांगा
0: निकलने
1: सारे सारे का घर है जकांगे तो गोडे गोडे से तो पानी आ खड़े हो रहे तो वो संकट हरे गांव हो है। और बिंगो जो गेला नहीं जका आप खुद मुंदे पने फिर भी आप देखा नहीं तो बाढ़ आवे जा बताओ नदियां जका रेला का रेला चाल है भी मैं के बचाओ है की बचाओ कोने नहीं ब्यांगो तो जनरेटर लगा गए और कर गए आप नाला की नहीं मना गए बारह पानी काट गए किन की गेलो तो काट लिया सावचेत जो गांव है जो पने बाढ़ आ रहा को के उपाय हुए अच्छा आए वर्ष बाढ़ आवे आए वर्ष भूकंप आवे कोने के तो तूफान की स्थिति है तो लगे टके हर ज्यादा इलाका में तूफान की स्थिति रहे तो वह प्राकृतिक आपदाओं आप बचा हुआ अपने और साल में एक दो इशू अवसर हुए या दो तीन साल में कोई एक दो इशू अवसर है कि यहाँ लगे कि हाँ ओला पड़िया या तूफान की शीत माया दुख देव चीज है जीव जिना और दरकट टूटेड़ा देखा जाए अपन जिधर हो तो नुकसान चाहे भलाएं बड़ो छोटो प्राकृतिक आपदा भलाएं छोटी हो बड़ी हो एक तो आ चीज रखनी चाहिए कि आंगो नमेड़ हिम्मत है ने शाना आदमी जका है जका बोलिया है बाने समझावे कि यहाँ कोनी करे करे और दूसरों के तुरंत प्राकृतिक आपदा के बाद में संभालना चाहिए कि किनी नुकसान हो कोनी हो के स्थिति हुई आजकल बैटरी संचालित सगड़ी चीज होगी गांव में किनी रेडियो को दत्तू रेडियो को बंदोबस्त भी हो है। तो जठे जठे किनी पानी बरेडो है जठे जठे दरखत टूट के पड़ेड़ा है बैठे बैठे बैठ के ग्रह मुनादी करा दे भाई देखो बिल्ली साइड गए मां खतरो है तो असावचेत कर सक देखो बिजली का तारा की स्थितियां हुए कई कई बार हुए कभी सावचेत लाइट नहीं कटेगी तो संकट आ जाए तार टूट जाए सो बात है तो हर बांध का जगह बंदोबस्त है जगह आपने करना पड़े दिन में पहले आप खेत जावा खेता गमा जगह टूटेड़ा दरखत है और है बिंगी टंडवाली आप करा जागरूकता तो देखो अपन रखनी पड़ेगी
0: भाई आई है के कोई भी चीज जकी नुकसान आई हुए खास तौर से तो देखो के जकी बिजली है ने एक तारा ने देखो के आंधी तूफान के दौरान मान लियो या बिरख्या वे भी दौरान देखो आंख सागे छेड़कानी नहीं करनी शांत रहना चाहिए जे मान लियो बिजली चली भी गई कई बार किए गए भाई शाना मेरे कहीं तार नहीं ना छेड़ा छाड़ी करना आ जाए आप लिखा चली गई तार टूट गई बोए तो जब तक मौसम शांत नहीं हुआ जब तक आ चीजा ने छेड़नी नहीं सौ पहली काम मिनख ने आपके बचाव को करना आपा अपना टाबरे आपनो पशुधन जगह घरा है वो क्या सुरक्षित बच सके। कई बार जहां मान लो के भाई अधिकतर पशुआ खातर है टीन सेट लगावे कई कई कच्चा छपरा लगावे, तो अगर मान लो के टीन सेट यहाँ को लगाए बैंक मायने कोई खतरे की स्थिति दिखे तो पशुआ ने भी आपा इन्हें भी ने नाके बांध सका तो बचाव हो जा। और बाकी मिनक ने तो देखो यहाँ के मौसम का मायने बाहर निकलनो खतरा खाली नहीं है भाई, आपने चाहे कितो ही जोर को काम हो लेकिन आपके जीवन से बड़ो काम क्यों बने
1: भाई, संघर्ष जीवन को है नहीं
0: हाँ।
1: जो तो जीवन की रिस्क ले जा सके है नहीं, पर संघर्ष संसाधन को है नहीं
0: हाँ।
1: जब बचनो चाहिए
0: बचनो चाहिए
1: भाई, आज जो को काम है अब नहीं करा पा तड़के करा तो सर जा, तो फिर भी काम ने तड़के पर ही करना चाहिए
0: हाँ।
1: पर कई कई बार ऐसी स्थिति हो जाए हरी बीमारी हुई मरीज हुई जापायत हुई हजार बात हो तो वो लिखण भी पड़े बिंग लिए अपन जी बे सगली बात सावचेती की करी नहीं के फूंक फूंक के पाउंडो में लड़ना रही जकी बात है बा स्थिति होगी। और शहर की बात करानी आप शहर में तो एक और ज्यादा मोटो संकट है, पहली तो गली रे सड़क सीधी कापन बेरो के बेटी के पानी तो भरेडो है पग घिस घिस के पानी ने पार कर सके हाँ। अब हालत होगी कि भाई मैं नाला है ड्रेनेज आ रहा कठे चैम्बर कठे फुटेड बेरोगोनी, तो आप भी शीत मांद अपनी जान में चल रहा आगे भी चैम्बर को जब वो ढक्कन खुल रहा है तभी माँ आप जानता बार कौन लगा, तो शहर तो बहुत खतरे को काम हो खतरे को काम हो गया।
0: तो जिया मान लो के बारे अगर मान लो आप हाँ बारे निकल गया भाई अब आप घर पहुंचने की स्थिति में गोनी जी तूफान आ तो भी स्थिति के मायने भी देखो, एक तो जिया पेड़ को ऑटो लेनो गलत है क्योंकि आज को जो को तूफान हो या तूफान में पेड़ को
1: सगड़ों पहले झटको दरखत के लागे
0: और फिर जे कोई मान लो भवन है बिक जे सारा आपा खड़ा हुआ तो बिग स्थिति आप देखनी चाहिए, कोई पुराना भवन है कोई जर्जर है तो बिको ऑटो लेनो भी देखो गलत है। आपन थोड़ी ध्यान रखो कि भाई आपा खड़ा घटा कोई बिजली को पिलर है बैंक सारे मान लो ऑटो में खड़ा हो गया तार टूट सके तो सौ पेरी खड़े होने की अपनी जगह जगह है भले ही आपन थोड़ा टाइम लाग जा फिर देख के और बिके बाद में आपन खड़े होना चाहिए, जगह नुकसान वाली कोई भी चीज नहीं कोई आकी भी पड़ जा आपा खुले में खड़े भी देखना चाहिए भाई इन उड़ के आपने सामने किया आज के सावचेत रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो देखोगे जे मान लो कोई मिनट के जे अचानक के सिर में आकी की लाग गयो तो भट्ठे भी टाइम कोई सुनियो भी कौन ला दे तो हो सके भी हाथ से कमाए चाहे लागी थोड़ी हो लेकिन जो संभालनी नहीं है तो कई बार के हाथ से मौत भी हो सके, तो आ चीजा को देखो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कई बार के जहाँ कई लोग बाग है देखो झूठी अफवाह भी कर दे अफवाह से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मान लो कोई मिनको आपा सुनी तो आपने भी तहकीकात करके एक दो आदमी और पूछ के और फिर भी को जायजो लेनो चाहिए, कई बार अफवाह के चक्कर में भागदौड़ मार जा और नहीं नुकसान हो तो दिखे तो नुकसान हो जाए, तो ऐसी सारी चीजों को भी देखो ध्यान रखना चाहिए।
1: और खास कर देखो ध्यान है जो कह रहे नहीं सगड़ी जवाबदेही छानोड़े पर आवे है काम गो जिम्मेवारी बिंग ऊपर आवे नफे घाटे को सगड़ी जिम्मेवारी बिंग ऊपर आवे प्राकृतिक जगह संकट है बंग बीबी बाबिंग आवे के वो सगले सिस्टम ने संभाले शानु बो है तो आस पास को जो वातावरण है बिने भी शानु मनावे। और किसना भाई एक आप बैठे आप बात कर रहे हैं आप अपने शहर की अपने जिठे इलाके की बात कर रहे हैं आपने कने सुननिया कने ताने जरूरी को नहीं कहो सुनटो पुग्यो है या ओ में पुग्यो है नहीं वो भगत है नहीं वो भगत सावचेती को चेतावनी हुआ है बार बार मौसम विभाग आजकल मोबाइल पर मैसेज आने लग गया बार बार मौसम विभाग है जो चेतावे पहली और ये भगत मा भी है के और साल आगे तुलना में साल मान दिया जो को प्रकोप है वो भी ज्यादा है नहीं
0: है।
1: तो सुननी गिननी ना पाए कहा के ते मानना चाहिए के तकड़ो जो को सुनटो है जो को आ सके और भी बचाव को जो को बंदोबस्त है वो कर सके। और खास करे जका छान झोंपड़ा टैन जके अपने संघर्ष का साथी हैं बंग लिया है के इशो बंदोबस्त जरूर करे के भाई उड़े नहीं और उड़ने की स्थिति हुए इसी का भैया के इलाज है उड़े ही को यानी संघर्ष हुए तो पर वो उड़ने की इसी स्थिति में तो हुए के उड़ गए कि नहीं नुकसान करने आगे ताणी चालन आ स्थिति में तो नहीं आवे।
0: हाँ जे मान लो और रीत कोई रस्ता गाल की जे कोई बोझ बार बांधेड़ो हुए
1: हाँ,
0: तो दूर तो कौन
1: दूर तो कौन जा बो भी अब एक का बताओ एक टेंट चाल लेडी
0: अभी को
1: केंद केंद केंदा जब वो

0: 50 घर में दूर जाके जके नाड बाट जा
1: आने
0: तो इशो बंदोबस्त है वो आपा वो करके रखा के आपनो नुकसान तो होनो है जो को होनो है इलाज क्यों नहीं आपा संघर्ष में पर कोई दूसरा भाई के बिना कारण नुकसान नहीं होवे और चेष्टा करा के आपा अपना नुकसान भी बचा और जीवन में देखो संघर्ष लाभ है सगला तो बराबर गुलाब बराबर चालना है भाई सुनता आंधी में है तो ओड़ा पड़े तो ई भगत का पड़े तो स्वाभाविक है कि बाजरी भी चोखी बीजेगी बाइंता भी चोखा बीजेगा नहीं नाज भी चोखा होगा सगली चीज है। और देखो बातें तो किसना भाई करता रहेगा पर पहले आप एक लोक रचना सुनांगा और फिर देखो भगत भगत की बात करनी बताऊंगा।
1: हाँ तो सुनायो शांत रहो लोक गीत।

0: अब भी आप देखो डगला राम और साथियों की आवाज के मैंने शांतिशी लोक रचना सुनी और देखो लोक रचना के बाद में तो आपन आगे बढ़ना पड़ो
1: भगत भगत की बात
0: बिल्कुल बड़ा भगत भगत की बात
1: फिर,

0: बद गया भगत भगत की बात में, तो कृष्णा भाई आप गया
1: बद गया के बार लागे कारो तो देखो थे देश वास
0: लो बात मैं तो थाने हर बार बैठो नहीं जब कई करो नहीं कई भगत में तो सकल सोरो काम है ओंकारो देनो
1: अच्छा
0: कौन गए
1: कह दो देखो दोरो भी लागे जा
0: दोरो तो देखो झूठी बात के ऊपर तो देनो सगड़ा नहीं लगे कहिया ने के लगे भाई मजबूरी हुए मन मार के दे जज नाक के बात है कोनी के
1: तो देखो कोई
0: यार फर्क भी पड़े
1: भाई
0: अब मान लो देखो झूठी बात को तो देख तो हूँ अरे का हाँ भाई किसना भाई ठीक
1: तो है भाई कहानी की सांग मैंने थोड़ी बहुत झूठी में हम रानी पड़ जाए
0: बे तो लो के नहीं गप कथा बहुत जोर की आपने
1: सही है
0: झूठगी थे बात करी नहीं गप कथा बहुत जोर की है के भाई एक बोलियो के मेरे दादा के ने इतना इतना लंबा खेत आके पूछो ना थे हैं अठू चाले दिन गए थे ढेर आथन छिप जार फिर दो जून दिन गए चले था इड्डा इड्डा खेत आ बोलियो एक रे ही है के बोलियो हार है मेरे दादा के ने भोजोर का बोले भाई मेरे लो दादो ईश्वर तो कोनी हो खेत खा तो कोनी आ बोले तो पर मेरे दादो हो बड़ो करामा थे खेता ना मेरे दादा के लहर लहर फिरता बोले क्या बेले खेत ही कोनी हो फिर इड इडा खेत बोले तेरे दादे पर का कोनी तेरे दादा दूना खेत राखता नहीं बे भी लहर लहर फिरता बोले इया बोले यार अपने इलाके में तो मेरे दादे का नहीं खेत पहुंचता इतना इतना सुने को बोले अपने इलाके में तो तेरे दादे का ना अपन लोग फिरता देश दुनिया का लहर है बोले क्या बोले क्या गे मेरे दादे कने गेडी हो इतो लंबो इतो लंबो के पूछना बात बोले इतो कितो लंबो गो बोले इतो लंबो के दादो जे चक्के ऊंचो कर दे तो नहीं बादला गड़ जान तो बादल झटका गए मैं करवा दे तो बोले नहीं रे बहुत फेंकी बोले फेंकने की बात है गेडियो गेडियो दादा कहने हो लंबो ही तो बोले मान ली बात गेडियो पर इतो गेडियो दर तो किन्ने बोले तेरे दादा रे खेत में
1: सही है
0: कोनी गए तो गप को कोई नमेड़ थोड़ी है किसना भाई पर आ गप सुनावे नहीं कभी आप कह देंगे देखो सुनो आज एक गप था ने बात सुना तो गप की बात सुना जब भी तो पहली तैयारी हुए नहीं बैठे हूँ कारो दिन तो जिदो रोग नहीं हुए भी गप के आगे तो देजे पर झूठ के आगे तो दोरो देजे किसी ने भाई की कोचे नहीं तो देखा तार ली झूठी एक साची आन दो
1: देखो अब देखो परखनी पड़ेगी
0: हाँ बिल्कुल
1: तो एक गांव और रामपुर नाम को गांव और बी के मायने एक रामदास नाम को किसान मिनक
0: अच्छा
1: और बी के घराली कल्याणी दोनों आपका ठाटू रहता पर दुलाराम भाई वहां के एक लड़को तो लड़के का मायने देखो के ज्यादा कोई गुंजाइश को नहीं अरियो भी को नाम हो बिग मायने बुद्धि की थोड़ी कमी
0: अच्छा
1: तो दोनों बिगा माँ बाप आज का थोड़ा चिंतित भी
0: और
1: क्यों तो बिगी बुद्धि में थोड़ो वो पैदल और क्यों थोड़ो वो कामचोर भी हो कोई काम इन जबरदस्ती कह देता तो कर ले तो और नहीं तो वो आपको खाटली पर पड़े रहते और खाट तोड़ दो तो काम भी कौन कर दो अब जब मान लो टाबर काम धाम नहीं करे फिर माँ बाप के तो चिंता वही नहीं
0: वही है
1: क्योंकि भाई जब तक अपना आण चल रहे जब तक तो कोई बात को नहीं काल ना आप बुढ़ा भी हो सह आगे भी जा सह तो टाबर को क्यों माँ बाप ने देखो आगे की चिंता
0: ज्यादा हुए
1: हाँ
0: करनी भी चाहिए
1: करनी भी चाहिए कि भाई आपने रहता रहता जो आपको काम संभाल ले तो आप सुख शांति में मर जाओ चिंता को
0: ठीक बात है
1: तो एक दिन जो रामदास अभी के घराली आई भी आखिर बोली के देखो जी

0: आपनो टाबरे लगभग 25 साल को गयो।
1: अच्छा,
0: उस तक काम यो क्यों करेगा नी और बुद्धि के मैंने कोई याद को नी, तो क्यों क्यों आप के बारे में भी सोचा। तो बोलेगा भाई तू बता के सोचा के बारे में। बोले सोचने की तो देखो यहाँ है के अब बुद्धि तो देखो गाली तो जाको नी, या तो कोई बहिशाने मिनक कंजा
1: अक्कल मांगे तो ले जाको नी।
0: हाँ, तो कोई जो ज्ञान की कोई बात बता दे पल्ले पड़ जा तो। पर मैं तो यहाँ देखू के एक पापा ब्यावड़ो कर दिया।
1: अच्छा,
0: और एक हाथर की कोई लड़की है बा कोई बुद्धिमान सी ठीक ठाक सी ढूंढ लिया तेज तरार, तो एक घर बस जा तो बाकी इन भी डबा ले।
1: भी एक क्षण ऐसा के दूसरो घोड़ो है जको नाको पीजे जी, जोन है जकी नहीं बजाओ।
0: दे दोनों जना बतला की बोले बात तो तेरली भी ठीक है, वे आप रहता रहता है को जे घर बस आ दिया तो केवरो के आपने चिंता थोड़ी कम हो जाए। तो बोले वो काम करी लो। बोले तो ठीक है, मैं खातिर कोई लड़की की तलाश करूं।
1: अच्छा,
0: फिर इन्हें फेरा फाटा कर जाए। तो रामदास इन्हें बिने रिश्तेदारी के मायने घुमा फिरी करी, तो कोई डंकी से एक छोरी धक्के चढ़ी।
1: अच्छा,
0: और ठाट बाटू ब्यावड़ो कर दी। अब पहली देखो के डंकी जगह सगाई पुता एक रीज को माल भी चोखो ले छोरी, और ठाट बाटू ब्याह शादी हो। अब ये कई दिन तक तो भाई माल था लैड हो जाते कोई जोर को नहीं है आपके घर गृहस्थी चोखी चाली। पर भाई आपन बेरो के बरेड़ा तो कुआ ही भी निमट जा। धीरे धीरे स्थिति डावाडोल लोटी होने लगी। अब घराली देखी गई वो तो घर ही पड़े रहे, काम तो क्यों करे ही क्यों नहीं। आपन एक सागे ब्याह दी एर वो तो बैठो खाए घर का थोड़ा बहुत काम धाम करे, आपनी जिंदगी क्या चाल सी। एक दो बार भी मैंने कहो भी भाई थे क्यों काम धाम करा करो या क्या काम चल रहा हो भाई। नहीं नहीं जो तो कहो नहीं, बाद में थोड़ा टाइम निकले उस बात कहने भी लगी थोड़ा तो काम धाम करा करो, पर भाई बी की कुड़ सुनाई करो। अब परेशान हो कि रे दिन बा आपकी सुसरे कन गई के देखो जी के मैं थारसा के बोलू को नहीं, लेकिन आज मजबूरी का मायने
1: परिस्थिति इसी है
0: बोलनो पड़ रहे के बोल भू के बात है। बोले देखो के मेरो ब्यावड़ो तो थे कर दियो, अब मैंने तो देखो बेरो भी को नहीं हो थारो बेटो है न तो क्यों कमावे दमावे, आर इमें कोई बुद्धि भी मन लागे को नहीं, तो आपने गृहस्थियां क्या चलेगी इको कोई कोई समाधान तो बैठाओ थी। तो बोले बहु देख तन आ तो नहीं कहने चाहिए तेरे बैड है कम से कम। बोले बैड तो है लेकिन वो क्यों अक्कल हो जित तो मान लो भी की तारीफ करे झूठी तारीफ भी कहें करी जा। तो बोले तू समझा भाई तन्ने श्याणी दे की इच्छा के ब्याह करे थोड़ी तू समझाई ना गेले लिया। बोले गए सुसर जी मैं तो देखो प्रयास कर लियो, मैं तो इन कई बार कह चुकी लेकिन मेरी बात तो माखी को नूट गए। तो बोले क्यों थे समझा गई देखो जे क्यों पल्ले पड़े। तो जब बोलो ठीक है कर श्या प्रयास कर श्या। अब दूसरे दिन है जो हरियन बुलायो, अरे बोले हरिया उरा
1: यहाँ पार क्या बड़े लड़ी ब्याह दियो था दियो कमाओ दमाओ खाओ
0: तने ब्याह दियो था दियो और राली बोलो तेरू चिंतित है। बोले बिन के चिंता है
1: अड़को को नहीं बड़े है।
0: बोले चिंता को नहीं तू कमाओ हाथ को नहीं जागली मान लो घर क्या बसेगी। बोलोगे बापू तुरते तो थालो माल पड़े है वो बिके जब तक कोई दिक्कत को नहीं है तो बोले सगलो बेच की मानोगे। तो क्या करा बोले यार यहाँ देख काम चल रहे को नहीं घर यहाँ कौन बस जाग रहे काल ना मान लो के लुगाई यहाँ भी छोड़ के चल जाएगी और फिर वो एक लो।
1: बोले भाग्य के निर्भाग्य कमाओ चिंता क्यों करो।
0: तो बोले तू एक काम कर के कोई फलानी जगह एक कोई चोखो साधु बतावे।
1: अच्छा,
0: तू थोड़े दिन ये साधु गन चल जाए भी इनको दो चार पांच ज्ञान की बात सीख के आ जाए केवरो तेरे क्यों पल्ले ही पड़ जा। तो बोले बापू वो तो बड़ो दूर है। तो बड़ो दूर चल जाए बोले तन के जो रहा है बोले पिसा लाग सी बोले पिसा देशा देने। तो बी टाइम में देखो कह वे सोने का पिसा चलिया करता एक एक पिसा 50-60 सोने का सिक्का जगह भी नहीं दिया। बोले ले जा जितना तेरा खर्चो बिता कर दिए और बाकी देख लिए तू टाइम जी तो लागे भी तू लाग जाए इतना मैं संभालू चाल पड़ो। अब बोले बापू पिसा तो दिया ही चालना दिखा देखा चाल तो बीठ और पूछो जठे एक साधु इसको बैठे जा।

0: ताई हाथ जोड़ के बोले के मैं थारी तलाश में बहुत दूर से आयो। बोले मेरी तलाश में आयो क्या? बोले साहब देखो के मन घर का कह गए तेरे बुद्धि को नहीं तो मन ने कोई थे ज्ञान की बात बताओ तो केवरो में घर बस जागे और मारे घराली कह के बोले यहाँ काम चले को नहीं। तो बोले भाई देख ज्ञान फ्री में कोई मिले
1: अच्छा?
0: में ज्ञान कोई मिले तो ज्ञान का लागे पिसा
1: अच्छा तक्का लागे ज्ञान का
0: तक्का लागे तो पिसा ले आएगी। तो बोले के गुरु जी कितना पिसा लागे? बोले पिसा की दुनिया है के भाई तू जितना पिसा देसी भी तू ज्ञान देसिया। तो बोलो के मेरे को तो है चार सिक्का बन जाए। बोले भाई चार सिक्का बन जाए चार सिक्का मैंने चार ही ज्ञान की बात मिल सके थे इससे ज्यादा
1: एक, हाँ। एक एक की एक
0: एक की एक बोले यहाँ
1: बोले ऑफर कोनी कोई
0: ऑफर कोनी कोई हाँ। तो बोले गुरु जी चार बातों में मेरे काम चल जाओगे। बोले भैया देख
1: बोली चाहिए तो भैया बोलो लिया पीसा
0: बोली चाहिए तो बोला पीसा चाहिए। अब बोले तो गुरुजी मैं जाऊं घटे मेरे को इतना ही बन चाहिए
1: बताओ लो चलो चार तो बताओ।
0: बोले थे तू चार ज्ञान की बात तो सुन और आऊं तेरो काम चल रहा तो ठीक है नहीं मारे तो दुकान खुली है
1: कते आ जाए माल तैयार पड़े है।
0: जब बोलो तो ठीक है जब बोलो तो थे मन बताओ जब बोलो देख एक ज्ञान की बात तो आ है क्या मान लो कोई पांच आदमी खड़े
1: अच्छा
0: और वे अगर कोई बात कहें तो आ मान लेने चाहे पांच आदमी सहमत ही तो भी बात का मायने दम हुआ भी बात ने साची मान लेनी
1: चाहिए मान लेनी चाहिए
0: या नहीं कि जिद बहस करने लग जाए ना थे झूठा को मान लो समझदार पांच आदमी कह रहे हैं तो आ मान लेने चाहिए भाई झूठी कौन कैसे एक दो तो झूठ बोल जा तो पांच आदमियों को अगर मान लो गए भाई पांच परमेश्वर मान्या करते बोलोगे एक तो आ बात बोलो गुरु जी ठीक है। दूसरी दूसरी बोलो बात आएगा ज्या मान लो गए तन्ने खटू बोला सारा पिसा टक्का मिल जा तो मिन को देखो के एक स्वभाव हो के बोला पिसा मिल जाए तो वो सहने नाच गाय कह लग जाओ मेरे को इतना पिसा फलानी जगह में आ गया
1: ऊपर नमो हो जाए
0: ऊपर नमो हो जा। तो धन अगर कन आ गयो तो वो देखो गुप्त हो बस की बात है बस सगले नहीं बतानी गुप्त रखनी चाहिए आप तक सीमित रखनी चाहिए। अच्छा बोले दो बात और तीसरी बात आ है के देखो के गृहस्थी का मायने आपा मान लो आपने घरा लिए बिन सगली बात बता पर कुछ बात ऐसी हैं जिनकी मिनख ने गुप्त भी रखनी आपके घरा लिन सारी बात नहीं बतानी चाहिए भाई जहां मान लो कमाई की दमाई की है कट्ठे गयो कट्ठे आयो कुछ बात आपकी गुप्त रखनी चाहिए नहीं घर में कलम आ जाए। बोली यह बात है और चौथी बोले चौथी बात है कि आपको जो को स्वामी है या राजा मान लो जो को गांव को मुख्य है बीक सामने कभी झूठ नहीं बोली आपकी है जबकि साची बात बोलो गुरु जी ठीक है। तो बोले तू चार बात यान तो पर की देख
1: आगे
0: देखा बोलो ठीक है तो गुरु जी अब मैं जाऊं। बोले हाँ अब जा तो चल पड़ो अब यहाँ करता करता वो कह गए ऑटो घर पहुंचो तो मैंने पांच दस दिन लाग गया
1: अच्छा
0: पहुंचता है घराली देख के राजी हुई कहो आ गया आता है बात बोली गए थे ज्ञान सीखने गया मनी बताओ के किसी क्या जब सीधो बोलोगे देख ज्ञान ही कौन मिला मुफ्त कौन मिला ज्ञान का लागे पिसा। बोले अच्छा तो बोले मेरे को नहीं पिसा ले बोले मैं अगले पिसा दे के आयो तो बोले ज्ञान का तो
1: ठीक बात है ठीक बात
0: है कोनी पर
1: खरीद की लाइटी चीज है
0: खरीद की लाइटी चीज है। बोले चलो कोई बात कोई मन तो ले कोई जरूरत कोई थारो ज्ञान थे थार कन राखो जब बोलो ठीक है। अब बीच का मायने के हो दुला राम भाई मैं थोड़ो सो चूक गयो वो जो जान लाग गयो रस्ते का मायने के हो के एक कोई भिखारी हो बीकी मौत होगी और बुई की लाश पड़ी पांच चार आदमी बैठे खड़े अब वो सारे के निकल लागे जब वो भी बैठे चले गए आ जाके बोलो के ओ कुण मर गयो बोले कोई भिखारी हो चुको मर गयो तो बोले थे यार चार पांच आदमी खड़े हो बापड़े
1: दस संस्कार कर करो
0: जद बम एक जनो बोले भाई मैं क्या कर दिया बोले क्यों क्या दिक्कत बोलो मारो क्यों लाग गए ने कोई जानने कोई पहचानने इं क्या कर दिया जो दूसरा बोलिया गया तो मैं भी कौन करा तो भाई चार पांच आदमी बोला कि भाई वो काम है तो देख कौन कर सका गुरुजी की भी याद आई कि भाई चार पांच आदमी जाइया कह दें तो भी बात न मान लेनी चाहिए।

भी देखियो यार के अठे बिचारो एकली को शरीर पड़े है तो चलो कोने करे आपा कर दिया अठे बियावान जंगल पड़े अठे लकड़िया किरगिरी को संस्कार तो कर दिया वो भी कुएं के ऊपर चक्यो और ले जाए कि जंगल के सारे जिठे कोई लकड़ी पड़ी।

0: नगा सिक्का टक टक टक टक बढ़िया पड़न लग गया। वो अचानक देखियो ऊ किए तो भिखारी के देखो गए वो भीख भीख मांग के खाते और 5 रुपया बीघा खस्त होता को नहीं और सोने का भी टाइम सिक्का देता लोग तो बिगन बूढ़ा सारा सिक्का वो गया सगला सिक्का आपका बेड़ा कर लिया। देखे भाई आपने तो मत ही कमाई होगी मौज होगी और बिगो दाह संस्कार कर दिया और वो आपको थैले के मैंने भरकी भर पीसा जगह घरा ली घरा घराली पूछो तो वो सीधो जवाब दे दिए भाई पिस्सा तो देख ही आएगा भाई ज्ञान का तो पिस्सा लागे तो ज्ञान मिलेगा नहीं और मैं तो ज्ञान लेके आऊ मैं मेरे देख छू। अब वो घरा गयो बिगने 5 रुपया वो साधन हो गयो जुगाड़ हो गयो आपको घरा चोखा घर ने जचा लियो और अब की है गई इनने भी निरतारी कर तो फिर काम तो अभी भी करेगो नहीं पर थोड़ो बहुत काम कर लागे धन पशु को है खेत खात में आनो जानो है थोड़ो थोड़ो काम करने लाग गयो वो क्यों थोड़ो क्या
1: ठीक बात है।
0: अब भी वो घर बार थोड़ो ठीक जच गयो और यहाँ अड़ोसी पड़ोसी भी देखेंगे भाई अंतर आवाज बेरो तो पड़े
1: बेरो पड़े छानो थोड़ी रह गए
0: क्या यार मकान मुकुम भी थोड़ा ठीक ठाक कर लिया यार आज के लिए तो
1: बात को नहीं अड़ंगो किने किनो आयो है
0: ये चक्कर है जब दोनों मियाँ बीवी एक दिन बात करें बोले हाँ वो आपा सगला इन क्या करता है तो पागल है मूर्ख है इन तो क्या कोई बेरो को नीर अब देखो गो खटू की कमाई करके लाए आंदे नाम देखो
1: घणो गए को नहीं 5-10 दिन बाद में गए
0: छोकरी बदल गयो गए तो बोलो के मन तो यहाँ लागे के थाने भी इन पूछनो चाहिए वो के काम दाम करे
1: ईशो कोई गेल दो तो आपने ढूंढो नहीं
0: थे ढूंढो बोले बावली और ये गए आगले किस्मत दी आगलो क्यों करतो हो गयो वो आपकी किस्मत ले यार पागल ने बोले मैं की पूछूंगा इन क्या को ज्ञान
1: है बुझ बुझ के मैं लाइन ढूंढूंगा
0: ओ मन पूछत जचे बोले तो मानो तो कोई ज्ञात को नहीं थे तो जिद्दी हो आगलो घर बार जचे मत ही तो कौन जचे थे तो गढ़ाई ज्ञानी हो थे तो हाथ झटक झटाई बैठे हो तो बोलो के देखो थे जाओ तो ठीक है नहीं मैं जाके आसू एक दिन पूछताछ करके आसू बोले देखे काम मेरू तो होंगे नहीं और तू जा तो चाहे जा जे एक दिन यहाँ करती करती पड़ोसी के घर चली गई और जो रियो भी घराली गन गई सीधी सीधी बोले भाण के आजकल अरियो की काम धाम कर लागो बोले क्या को काम धाम करे है गई इन्हें चल जाए इन्हें बैठ जाए इन्हें उठ जाए खेत बाड़ी में चल जाए तुरते कोई ज्यादा काम धाम तो करने लग गया तो बोले कि पिस्सा कटवाया बोले पिस्सा तो आ तो मैं पूछो बोले बावली ये के तेरो आदमी है अरे वो के कमाई करे खटू पिस्सा हुए तू पूछ ही बोली पूछना चाहे
1: जानकारी होनी चाहिए
0: बोले क्यों बोले काल ने मान ले कोई गलत रस्तो पकड़ ले तो चोरी छुपारी करने ला जाए और कोई धंधो करने ला जाए फिर काल ने आवेगी जब किपर आवेगी बोले बात भी सही है पूछनी तो चाहिए मन बोली बावली पूछ तो शुरू यहाँ करी कान भर गिर बा अब घराली के देखोगे बात तो
1: सच्ची बात है
0: सच्ची बात है आप तो पूछ ही नहीं बार अरे वो आयो आता है घराली बोली हाँ वो एक बात तो थे मैंने बताई को नहीं बोले कौन सी थे कमाई करो थार पिस्सा कटवा जब बोलोगे तन्ने मतलब है तन्ने कोई चीज की जरूरत है क्या बता भाई तेरे कोई परेशानी है तन्ने कोई चीज की जरूरत है अगर तू भिस्से नहीं तो बा बता तन ले आगे दे दिशा बाकी तन्ने पूछने से क्या मतलब है बोले रे यहाँ के यहाँ बोले कि मैं थारे घर की मालकिन को नहीं है बोले हाँ मालकिन तो है तो बोले मेरे पूछ रहा हूँ कि हक को नहीं बोले हक तो है तो बोले तो थे मन बताओ तो शुरू को भाई थारी केक में काल न मान लो कोई चोरी
1: और
0: जे पकड़ में आ गया तो इज्जत की जागी कहीं ने समझाया ही को नहीं घरा कोई जो धरिए का चिंता हुई कह यार बात डी तेन बतानी भी पड़ सी कई गुड बात कर राम ने गुरु जी मना भी करो कि घर वाली सारी साची बात नहीं बतानी चाहिए जे न बताया तो आज तो गड़बड़ तो भी अचानक कोई दिमाग में एक बात आई बोले देख मैं तेन बता तो देसू पर तू और कोई ना बता दिए बोले ना मैं और कोई ज्ञान बताऊ
1: घर की बात बारे जाए करेगा
0: जाए को नहीं बोलो मैं के करो के मन ने गुरु जी यहाँ कहो के तू 1 किलो दुकान ले बढ़िया देसी घी और भी देसी घी ने रात ने 12 बजे और एक सांस पी जाए और पीगी सो जाए और फेरा मान ले गए तेरा पोवारा 25 नहीं धनी धन है बोले हैं बोले मैं तो कौन सुनी गई घी पीने से कोई पिसा हो जा तो सुनी बोले यहाँ सगला सुनेडी होती तो फिर सही

0: हमेशा बाबा जी थोड़े मिले गान तक्का ले आयो
1: तो आ बात तो बोले मैं सुनी तन्ने पहली बार होतो तो बोले कोई कोन बता मत दी आ ध्यान रखी बोलो ठीक है अब आप बता मत दिए तो फिर पचे क्या
0: वागो वागे तो वही है।
1: अब वो पड़ोसन दूसरे दिन आई कहे पूछो गेरिये ने कह पूछो तो कह तू बता मा नहीं बता
0: बताने भी नटे
1: कब बताने खाते तो नटे कह तो बावली मन ने बता
0: तेरी मेरी गणमांटी
1: आप तो देख सराद दिन
0: पड़ोसन
1: बात तो बोलो थारी सही है लेकिन बात आगे चल जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी
0: मतलब ही को नहीं जाने को
1: तेरे यार मेरु आगे तो जाएगी
0: नहीं थे ते कई रे में गिटी
1: हां बोलो को मैं तो थाने को थारे कहानी पड़नी चाहिए आगे भेरो नहीं पड़नो नहीं तो मेरे देख लो घर दिक्कत हो जाएगी
0: की को नहीं कैंगी सौ के ले लेते जाई को नहीं
1: बोलो मन तो देखो यहाँ कहो कह मैं तो एक किलो देसी ले घी बड़ी और रात ने 12 बजे के बाद के मैंने एक सांस बिने पी गयो और पी के बाद ने बोले मेरे तो
0: दिन उठे संधि बरसी
1: पीसा ही पीसा मैं तो कोई काम जाऊ बोले पीसा कदे बोले किल्लती को नहीं आ बात है तो बोल देसी गेहूं पिसा को की मिल है भाई
0: बोले मुहूर्त भी है नहीं आती रात को
1: भाई ओ देखो मन पे वो नहीं मन तो जी बताई बात है
0: हां एक सागे आधी रात को मुहूर्त
1: से बोले ठीक है गई घरा जाते ही बोले है वो खेइया करो आपने एक किलो देसी घी ले आओ बोले तो क्या बोले तो मेरी बात सुन लो मैं कौन जा करो थे तो एक तो जवाब बहुत करो गए बीच का महीने
0: की बात कहते हो आगे सवाल कर बो करो
1: सवाल कर बो करो तो बोले तू बताऊंगी भी तो बोलोगे देखो हरिये को राज पूछ के आई हूँ मैं हाँ बोलो के राज है बोलोगे एक किलो देसी घी लाओ और बिन रात ने और एक सांस पी जाओ 12 बजे के बाद और फिर बोलोगे पीसा ही पीसा बोलो है ही करेगी बावड़ी हो रही है तू मराऊंगी कोई नहीं बोले देखो मेरी बात थे कदी गुन मानी अब तो के मानोगा आगलो थाने दिखन लाग रहे पड़ोस का मैंने इंगन कदी क्यों हो गए बोले ना हो तो कोनी तो बोले अब क्या हो गयो आगले क्यों तो करी है अब थे मानो तो ठीक है न मानो तो ठीक है मेरे तो कदी मानी थी आते तो बोले बावली एक किलो घी पीड़ो तुम मन मारेंगी
0: बोले घी
1: बोले वो जीव तो फिर लाग रही होगी बोले ठीक है तू कैसे कर ली छे वो एक किलो घी लिए आपको अब देगा मान्यता आज को
0: ठीक बात है
1: पीणो पड़सी तो पड़ी सी रात ना आपका बैठ गया दोनों कद 12 बजे 12 बजे इंतजार करने लग गया अब रात ने जे सुयो 12 पर आयो आते हैं बोलोगे अब थे टका
0: एक एक सांस में
1: पीणो है सांस में पी जाओगे
0: बिचाले जे किने बिजोक पड़ियो तो फिर वो
1: गड़बड़
0: हो जाएगी गड़बड़ हो
1: जाएगी बात खुजेगी आपने जब बोलो तो ठीक है वो आपको टकाटक चढ़ चढ़ पी गयो अब पी तो गयो अपने दुलाराम भाई थान बेरो देसी घी
0: बिल्कुल
1: अब वो थोड़ी देर बाद में देखो तो बीके दस्त उल्टी शोर मुंह लाइ अरे बोलो गमारिया अरे वो तो आपको चार पाई पकड़ ली वो तो सो गए बोले मेरे तो उठने की हालत को नहीं कहीं हुई थे बोले थे दिन के तो इंतजार तो करोगे अब तो
0: में तो
1: पियो है दिन के तक देखो पीसा पीसा हो जी अब वो दिन के पकड़े क्या वो तो बहुत रात ने की बुढ़ो शरीर और वो घी पी गयो ज्यादा दस्त उल्टी होगी तो वो तो दिन के उगो कौन जा पलिया तंत वो स्वर्ग सिधारी आर भी मन में सोती अरे तेरी आ गई हुई गई आपन तो तजवीज बताई आपने सागर दुख हो गयी तो अब भाई घरों तो गयो अपने के काम अब्बा के दूसरे दिन आपकी और भट्ठे को चुको वो राजो बिगन चली गई काम ने सागे धोखो है अरे धोखो को तो आप किन की
0: जानबूझ
1: जागीर बोली के महाराज देखो के मेरो पति है जो स्वर्ग सुधार गयो तो बावली तेरो के सुधार गयो से कोई जाए टाइम आया तो जाई है बोले नहीं या बात को नहीं तो हाँ बात है के बोले मारे पड़ोस का मायने बोरी है मेरे घराली ने देखो राजपूत के आई तो भी मन या बतायो कि रात ने 12 बजे देसी घी 1 किलो पिज्जा तो बोले पिसा पिसा हो जा मैं मारे घराली ने प्या दी अब प्या दियो तो भाई तो दिन की खत्म हो गया तो बोले बावली तेरे में भी थोड़ी बहुत
0: अक्ल होती होगी यहाँ 1 किलो घी पी करे
1: पिया करे गए तन्ने थोड़ा बहुत दिमाग को नहीं आयोग भाई घी पीने से कोई
0: यहाँ
1: आवेगे बोले तो वो धनवान क्या हो गई थे भी ने पूछोगे जो बोलोगे बुला के लाओ हरियन अब हरियन बुलाये जो हरियो दौड़ोगे राजा गन पूछता है राजा बोलोगे बोल भाई हरिया के बात हुई जब वो देखो राजा स्वामी के सामने गलत बोलो तो
0: हाँ बात सोते तक कर सकी।

0: तो हमें साफ साफ बात बताई थी कि महाराज देखो मैंने गुरु जी वरदान दियो और मैं तो देखो घराली सागर थोड़ा झूठ बोलो, लेकिन मैंने आप बात कही कि भाई कई गुड बात की देखो उसने घराली ने
1: बताने नहीं चाहिए,
0: पर मैं बिना भी गई तो तू दूसरे ने ना बताई, लेकिन घराली ने बता दी। बोलो कि भाई यो तो भोड़ो है, तू राजा देखो भाई दिमाग कौन काम करे, लेकिन ये अपन साची साची बात बता दी ई खातिर गुरुजी अभी ने तो थोड़ा माफ करो। और बिन कहो बावली हर कोई क्यों कह दे भाई कुएं का मायने पिसा पिसा निकलेंगा तो आप माइन
1: थोड़ी
0: खुदे थोड़ जाए, तो ध्यान खुद ने भी रखनी चाहिए। और अक्ल है देखो क्या हमेशा कोई बांटने से कौन मिले,
1: ठीक बात है,
0: खुद में अक्ल भी होनी चाहिए।
1: हाँ होनी चाहिए।
0: और एक मूर्ख मिनखो की भी देखो क्या मैं आपकी थोड़ी बहुत बुद्धि ने आगे बढ़ाई एक ही मानता की बात। तो दुलाराम भाई देखो या तो ही कहानी और कहानी में देखो क्या बात है, बात भीरो ही कौन पड़े और
1: टेम ही हो गया लगे
0: हमको टेम भी पूरा हो गया ई खातरे ओजुमिनते किसने भाई ने
1: दुलाराम भाई ने
0: देखो सीख करा
1: राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें ही चाले। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं आपके ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद। कार्यक्रम गोरबंद सुनन हरा सगला हितालवा ने मोकड़ा मोकड़ा राम राम लक्ष्मीकांत ओझा का निशियों।

आज रे कार्यक्रम की आप शुरुआत करा लोक रचना आप सुन रहे हैं और आ आवाज आप जद भी सुना हा तो आपने बरबस ही याद आवे है मरु कोकिला मांड गायिका गौरी देवी जिकाने की गौरी बाई भी आप कवा हा बाकी याद आपने बरबस ही आवे। जोधपुर रियासत रमाय ने जिका को जन्म हुयो 1920 कमाय ने एर आका माता पिता हा जिका की बीकानेर दरबार कमाय ने कलाकार हा। राजस्थान की आज के कार्यक्रम का जो आप शुरू कर रहे हैं गोरबंद वह मैं आप याद कर रहे हैं राजस्थान की मरु कोकिला गौरी बाई ने। कम उम्र के मायने ही आके पति की मृत्यु होगी और आंखी जी की पूरी दुनिया ही पर धीरे धीरे संगीत के मायने ही रमगी। एके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का मायने ये सुर बिखेरे आपका राजस्थानी जी का लोकगीत था पर लोकगीत कई जगह गाया और राजस्थान राजस्थान के सागर सागर पूरे भारत को है जी को ये नाम चारू मेर करियो। एर आंकी जी की मांड गायकी ही आंके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सागर सागर 2013 माने राजस्थान सरकार जी को है जी की कला और संस्कृति है भी में योगदान करने के लिए राजस्थान रत्न भी आने दियो। 98 साल की उम्र में यानी कि काल 11 जून 2026 ने ब्रह्मलीन हो गया। मांड गायिका गौरी बाई ने पूरा आकाशवाणी परिवार चूरू कानी से आकी ही आज की लोक रचना है एक माध्यम से स्वरांजलि देवा हाँ।

गौरी बायरी गाइडी या लोकरचना घूघरी और एक बाद अब शुरू करा आज को कार्यक्रम गोरबंद की और पहली जी की मेल है अब बिना आपा आज के कार्यक्रम में शामिल करा और या जी की मेल आई है लोकरचना लिखकर भेजा है सादुल शहर गंगानगर शु आप लिख रहे हो।

रामकुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड। ओढ़ चुनर मैं तो गई रे सत्संग में। सागे सागे मेल मारकन आयो है माँ नर्मदा श्रोता परिवार शिव कोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से। राकेश पप्पू सेन श्रीमती निशा सेन ओम सेन कुमारी सपना सेन धर्मेंद्र सेन मुकेश सेन आकी मम्मी द्वारका भाई सेन और मनीषा भाई चौधरी को। एक और मेल आयो है वार्ड नंबर 3 चूरू से दामोदर लाल नागवान शकुंतला देवी उमेश जगदीप मोनिका प्रवीण पद्मा गणेश और हर्ष नागवान माने लिखकर भेजा है। और वार्ड नंबर 47 शीतला चौक वाल्मीकि बस्ती चूरू से आप लिख रहे हो बंशीधर पंवार गोवर्धन पंवार गुनगुन पंवार लक्ष्मी नारायण पंवार हेमंत मनीष बेबी दिनेश प्रवीण संजू सुमन और नानी देवी। पंचमुखी बालाजी मंदिर का कन्ना से लिख रहा है बिलाल खिलजी और पवन कुमार शर्मा। आप हाउ जी को लोक रचना कार्यक्रम रामायण सुननी चाहिए हो तो शुरू करा कार्यक्रम गोरबंद में आ पहली फरमाइश।

तो हेतालु कार्यक्रम गोर बंदवार थे सुन रहे हो और कालूराम प्रजापत और साथियों री आवाज में गाइडिया लोकरचना अवार थे सुन रहे हो। अभी लोकरचना के साथ कुछ मेल आपा शामिल कर लिया। जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानू भी मुलानी, बादशाह मुलानी और मुलानी परिवार का सगला हेतालु माने लिखकर भेज रहे हैं। सगला सदस्य है ये मुकाम पोस्ट फूल तिंचोली तालुका पंढरपुर सोलापुर से कृष्ण कुमार।

डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा तंवर, विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी। ए लिख रहे गांव टुकिया, तहसील सुंदरी, जिला बलोतरा, राजस्थान से। और बालोतरा राजस्थान के बाद में यो मेल आयो है, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल को। पोटिया कला दुर्ग से लिख रहे हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। और शिवाजी चौकटनी से लिख रहे हैं अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप वर्मा। दिलीप वर्मा के बाद में लिख रहे हैं संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन, रजक, सोनू, सोना, लालू, मोना, हनी, यश और आंका मम्मी पापा। और जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं उदयभान पाल सिंह, जय हिंद पाल और दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और बघेल परिवार का सगले सदस्य है ये। मेल आयो है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून को। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जिव्यम जैन। पानीपत हरियाणा से लिख रहे हैं अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोदरा और श्राव्या। मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से मेल लिख रहे हैं विकास बंसोड़े, रेखा आदित्य और वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया और गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से लिख रहे हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। मेल माने भेजो है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम के बाद में मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हौदा। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से लिख रहे हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार चिंडालिया और नरेंद्र कुमार चिंडालिया। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। फाजिलका पंजाब से लिख रहे हैं खेड़ा परिवार का सदस्य है ये, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा और शालिनी। सरगुजा से लिख रहे हैं प्रभा डोमीन, प्रमिला, आशा, निशा और डोमीन परिवार का सगड़ा सदस्य है। तखतपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा और मिश्री देवी साहू। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से लिखा है। और जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोडाना। और सुदामा नगर खंडवा से लिख रहे हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। एक मेल और आए हुए अनिल गौरव, कविता मानसी अरोड़ा और ये परिवार का जिसका सदस्य है ये लिख रहा है मिनिस्ट्री रोड करमपुरा नई दिल्ली वेस्ट से। और गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, राम राम लिखे है, थानवी राम राम। और मेल थाराबाद में एक और आयो है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से, लिखन आ रहा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अनारकली बाजार जगराव से लिखना रहा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा और सुचा सिंह पाठक। ऐसी की मेल आई ही कार्यक्रम का मैंने पहली लोक रचना में आपा शामिल करी है। अब अगली लोक रचना करनी आपा चाल से और सीमा मिश्रा और सतीश देहरा की आवाज में थे सुनना चाहिए हो यो भजन है घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। लिखन आ रहा जी का हेतालु है माने मेल लिखकर भेजो है लिखे भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमीरी कला झुंझुनू से, महेश जानू भद्रवा झुंझुनू से लिख रहा है, सुखजिंदर बुगालिया चिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बीदा सर झुंझुनू से। और मेल आयो है राजा नंदवाणी, रजत, रोहित, केशव, मुकुल, मनीष, सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी, ये लिख रहे हैं नई सड़क चुरू से। जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल गुदड़ी बाजार चुरू से, राकेश कुमार दुधुआ मीठा चुरू से, अरविंद खारड़िया लादड़िया चुरू से और निशांत फुंडे, ओम प्रकाश, मानसी, चेतन गौदिया, ए लिख रहे हैं महाराष्ट्र से। दतरेगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोकेलाल वर्मा भी माने मेल लिखकर भेजा है। तो आओ सुना कार्यक्रम का मायने या अगली लोक रचना।

फिर जाग। अल्लु कृष्णा की फरमाइश कार्यक्रम गोरबंद कमाई नमारकन आई। और अब हेतालु है जिका कि मैंने मेल लिखकर भेजा है कि भाई कोई भी लोकृष्णा का मायन है या लोकगीत का मायन मारो यो जिको मेल है वो शामिल करियो। तो अब हेतालुआ का आप मेल जरूर पढ़ा। धनुरी तेलीवाला उत्तराखंड से लिखना रहे, निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आली और अयान बाबू, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और आका परिवार का सगला सदस्य, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज घोरवाल और गीतिका घोरवाल, भानु प्रकाश आका सागर लिखा है, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से लिखना रहे, रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवाणी और माखीजा कुटुंब का सगला सदस्य है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से लिखना रहे, संतोष खड़से और विनोद खड़से, आदर्श नगर मलोट पंजाब से लिख रहे हैं, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और मेंडी शर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुवी हानेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, और सुनो चावे है शीतलागेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, मोहम्मद सुजैन खींची, नूर फातमा, मोहम्मद आजम खींची, अकमल हुसैन भियानी और एम शफी मिस्त्री, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वसरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव और आका दोस्त है लीलाधर स्वामी, वह माने लिखकर भेजा है। यूमेल मार्कन आयो है फाजिलका पंजाब से, खेड़ा परिवार का सगला सदस्य है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा और आका परिवार का सगला सदस्य है विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा और टिवांशी खेड़ा, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से लिख रहे हैं जगदीश धाकड़, नायमा रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, तन्वी बोट और आका परिवार का सगला सदस्य माने लिखकर भेजा है, सगा सगा बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू लिख रहे हैं, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सरिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से लिखकर भेज रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय, गांव फ्रांसी हिसार से लिख रहे हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। मेल आयो है कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी को, बठिंडा रोड मंडी डबौली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तान्या, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता, गांव खोखरा वाली गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल विकास, रोशनी और शगुन, रघुनाथपुरा जिला गंगानगर से लिख रहे हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिख रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज। ये मार्कर मेल आया है जिका कि लोक भजन का मायना बार शामिल करे हाँ। और अगली जी की फरमाइश आई है सीमा मिश्रा की आवाज में घूमर सुनना चाहे हो, लेखन आ रहा हो ग्राम पंचायत सिरसला फवारा चौक जिला चूरू राजस्थान से, संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल, कार्तिक, सचिन चौहान, रामसरा वाले और सोनगरा परिवार का सगला जी का सदस्य है वह माने लिखकर भेजा है। तो आओ सुना कार्यक्रम का मायने या अगली फरमाइश।

कार्यक्रम गोरबंद का मायने सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में आभार थे सुन रहे हो या लोक रचना घूमर और कई मेल और भी है जिका की ई प्रसागा आपा शामिल करा लोक रचना का सागर वडिंग खेड़ा पंजाब से लिख रहे हैं मिंटू टोमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से आप लिख रहे हो नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊसा मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार पदमपुर जिला गंगानगर से राजस्थान से लिख रहे हैं मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका मोरटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता है जगन्नाथ पटेल कमला पटेल अंतिम पटेल ज्योति शुभम देवकिशन भावना मनमानस और कनिका पटेल केंद्रा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्टा नीलम निहारिका और वंश भट्टा एस एम जावेद शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से लिख रहे हैं लिख रहे हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र रेखा और धनेश्वरी और नेपानगर

मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह है, पल्लवी शाह है, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह है। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और आपार ढींगिया। दादा बाबू रोड गेडी है, झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज और बाबू अहद चाहत एमाने ओमेल लिखकर भेजा है। सागर सागर जी को मार्ग ने मेल आयो है, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से लिखन आ रहा है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक, सचिन और नंदिनी शर्मा।

ये मेल और आईडा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित बयाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली सानवी, कल्पना और राजे जाधव देशमुख और बयाल परिवार का सगला सदस्य जिका की माने मेल लिखकर भेजो है। और असुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद है जिका की माने मेल लिखकर भेजो है। और आके सागे सागे जिका मेल माने लिखा है, यह ग्राम पजोनिया से लिखा है पूरा ई मेल। और सगला हितालुआ ने कहना चाहे कि जिका जिका अबार कार्यक्रम से जुड़िया है, नया है, बना कैसे कि भी हर शुक्रवार ने रात में 10 बजे लेर में हाजिर हुआ यो कार्यक्रम जिको नाम है गोरबंद। ईमेल थे माने भेजो हो, थारी पसंद की जिकी लोक रचना है बा मैं थाने सुनावा हाँ, थे भी माने मेल भेज सको हो। मारो ईमेल एड्रेस है गोरबंद GORBANDH गोरबंद चूरू @gmail.com ओ मारो ईमेल एड्रेस है। और ई ईमेल एड्रेस पे थे थारी पसंद की लोक रचना लिखकर भेज सको हो। और एक अलावा कोई भी लोक रचना का मायने थारा नाम है जिका लिखकर भेज सको हो। आज को यह कार्यक्रम अब अठे तक, देव सीख करा राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोरबंद, या आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 102.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत, और शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन, राग है मारवाड़।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आपने सुना पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार, और उसके बाद रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना